कितना सुंदर संदेश है सुबह की पहली किरण में, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला अपना रास्ता बना ही लेता है। उसी तरह जीवन में निराशा, असफलता या कठिन समय हमेशा नहीं रहता, समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती है।

0: Good morning.
1: Good morning.
2: बेटा.
0: Yes, papa.
2: बरखोरदार.
0: Yes, daddy.
2: अपनी भाषा में बोलो.
0: अरे हाँ हाँ.

0: नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते।
1: और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि अंधेरों से घबराकर सफर छोड़ा नहीं करते, उम्मीदों के दिए जलाकर रास्ते खोजा करते हैं। हर सुबह यही पैगाम लेकर आती है, जो बीत गया उसे भूलो, नई शुरुआत तुम्हें बुलाती है। जल्द मुलाकात होगी, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 15 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। 7:10 का समय रहेगा प्रोग्राम नवरात्र के अवसर पर विशेष कार्यक्रम शक्ति आराधना का। उसके बाद आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात।

8:45 का समय रहेगा प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली का। 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी। 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स का। ग्यारह पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तस्वीर। दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम घर आंगन का।

1:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। 2:30 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम संगीत.com। 3:10 का समय रहेगा प्रोग्राम मन भावन का। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित भी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरूआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। या देवी सर्वभूतेषु मां रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती जी का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, ऐसे में माता रानी का आशीर्वाद हासिल करते हुए इन नवरात्रों में देवी माँ के 9 रूपों की आराधना करते हुए माँ के आशीर्वाद हेतु आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से अर्पण की, एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। मिलकर कहते हैं जय माता दी।

जय माता दी। आज है शारदीय नवरात्र का पांचवा दिन। इस दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है या फिर ये कहा जाए, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि स्कंद माता की साधना करने से जीवन में इच्छा शक्ति, ज्ञान और कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जय माता दी।

क्या बात है, जय माता दी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माता के चरण में। दिव्य है माँ की आंखों का नूर, करती है तमाम तरह के संकटों को दूर। माँ की छवि है वाकई में निराली, और नवरात्र में घर घर आई है खुशहाली। मिलकर कहते हैं ना, जय माता दी।

माता रानी को नमन करते हुए एक एक दिन माँ दुर्गा की आराधना, माँ दुर्गा के जो नौ स्वरूप हैं उनकी पूजा करते हुए तमाम भक्त जो हैं अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन करते हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा भई आपके द्वार पर आई है ढेर सारी खुशियां लेकर, अपरंपार प्यार लेकर, आपके सपने को साकार करने के लिए, जीवन को सुखों से भरने के लिए या खुशियों की बहार फैलाने के लिए। आप सभी को शुभ शारदीय नवरात्र यानी ढेर सारी शुभकामनाएं इन नवरात्रों।

क्या बात है। नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं ना, बेहद खास होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। सभी जानते हैं कि माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और ऐसे में अगर हम कहें तो भाई, इन 9 दिनों में जो है शरीर और मन की शुद्धि, उपवास और सकारात्मक ऊर्जा पाने का लोग इसे श्रेष्ठ वक्त मानते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इन दिनों न सिर्फ आराधना की जाती है, बल्कि जगह जगह हर्षोल्लास के साथ गरबा, डांडिया, रामलीला और दुर्गा पूजा का भी भव्य आयोजन होता है, जिसमें सारे बच्चे, सारे

बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो भाई त्योहारों की धूम है, माता रानी के दिन है, ऐसे में माता रानी अगर घर में हमारे आई हैं तो उनकी न सिर्फ हम आराधना कर रहे हैं बल्कि उनके आगमन पर हमारे घर में हमारी कुटिया में तो रौनक ही लग गई है ना। तो इस बात का जश्न मनाते हैं माता रानी के नवरात्र की खुशी में प्यार भरे

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, और आज अर्पण में आपका साथ दे रही हूं मैं सुरति। माता रानी के नवरात्र का जैसे ही आगमन हुआ, तब से लेकर अब तक जो है माता रानी के जयकारे लग रहे हैं, और माता रानी की वह प्यारी प्यारी सी लाल चुनरी सोच सोच कर ही नन्नी नन्नी कन्याओं का ख्याल आता है। और ऐसे में ये कहने का दिल करता है कि लाल चुनरिया जो है माँ की है प्यारी। जी हाँ, लाल चुनरिया माँ की प्यारी, जगमग करती दुनिया सारी, जयकारों से गूंजे संसार, माँ करती है सबका बेड़ा पार। जय माता दी। आइए माता स्कंद माता की आराधना करें।

योगा आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, यही प्रार्थना है हमारी। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है श्री रामचरित मानस का। अर्पण में फिलहाल बस इतना ही, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर यानी कि 100.1 MHz पर श्री रामचरित मानस का अगला भाग। अब

चित्रकूट में माताओं से श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत, शत्रुघ्न, मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है, अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

0: हम शक्ति आराधना जिसमें आज हम जानेंगे मां स्कंद माता के बारे में और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन लद्दाख राज्ये प्रायः 50-300-3000 कोटि रूप्यकाणां 5 प्रमुख विकास परियोजनानां उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं विधास्यति। एतासां परियोजनानां उद्देश्यं संपर्क व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, ऊर्जा संबद्ध आधारित संरचनायाः परिष्करणं, सांस्कृतिक वैभवस्य संरक्षणं तथा क्षेत्रे जल सुरक्षायाः संवर्धनं चास्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री एकां जनसभां अपि संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां अस्मिन् वर्षे आयोजितासु एशिया क्रीडायाः भारतीय क्रीडक दलस्य सदस्यैः सह संवादं विधास्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूहम् अपि संबोधयिष्यति। अवधेयं यत् जापान देशस्य आइची नागोया नगरे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत्। भारतेन आहत्य 85 पदकानि प्राप्तानि, येषु 21 स्वर्णपदकानि, 27 रजतपदकानि तथा 37 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्सपटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। टीवी शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः श्रृण्वन्तु।
1: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 40,000+11,00,000 रेल कर्मचारिभ्यः 78 दिवसानां वेतन समतुल्यं PLB इति उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन धनम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः वार्ताहरान् संसूचितवान् यत् अस्य धनस्य वितरणाय प्रशासनेन 90,000,000,000 रूप्यतोप्यधिका राशि आवंटिता अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अस्माद् वर्षादारभ्य 5 वर्षपर्यन्तं राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य निरन्तरतायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। अस्य कार्यक्रमस्य कृते 28,000,453,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययः निर्धारितः अस्ति। अस्य राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य नाम परिवर्त्य प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना इति कृतमस्ति। श्री वैष्णवः दिव्यांग पेंशन योजना इत्येताम् आलक्ष्य अवदत् यत्
3: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: कृषि कृषक कल्याण विभागः अद्य नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य महिला कृषक दिवसस्य राष्ट्रिय स्तरीयं कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यति। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं भारतीय कृषि क्षेत्रे महिलानां योगदानस्य सम्मानः अस्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी चेत्येतेषु स्थलेषु अतिवृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा नारंग वर्ण परा संचेतना प्रकाशिता। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ हैदराबादे आयोजितायां चतुर्थायां विंशति प्रतिविंशति अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं चतुर्विंशति

सभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। ठीक 7:10 पर सुनना न भूलिएगा। नवरात्र के इस पावन अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम

0: विंशति धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जाँच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री कोविंद लखनऊ में आयोजित एक समारोह में अपनी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा मेरा जीवन मेरा संघर्ष के हिंदी संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। श्रृंखला का अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation five major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. The Prime Minister will inaugurate the new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of 640 crore rupees. The Prime Minister will dedicate to the nation the 298-kilometre long Nimu Padum Darcha Road constructed by the Border Roads Organisation BRO. Mr. Modi will also inaugurate the 9-megawatt Hanu Small Hydroelectric Project and the 66-kV double circuit Da Hanu Khalsti Transmission Line. The projects will strengthen power evacuation infrastructure and improve the reliability of Ladakh's electricity network. Mr. Modi will inaugurate India's first Petroglyph Conservation Park at Sindhu Ghat, Leh, and 40 water bodies developed across 40 villages under Project Him Sarovar. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the Disability Pension Scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
5: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
4: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in the existing form. The Union Minister said the government has also given nod to the strategic restructuring of IDBI Bank. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. India finished fourth in the medals tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. The Delhi government has announced a payment of 1,370 rupees to students of Municipal Corporation of Delhi, MCD schools through Direct Benefit Transfer, DBT. In this regard, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that over 70 crore rupees was released yesterday through DBT for uniforms and school bags for more than 5 lakh MCD school students. On this occasion, she also inaugurated educational facilities such as 10 AI and robotics labs, 1,500 printers, science on wheels and 60 Chromebooks. The Department of Agriculture and Farmers Welfare will celebrate the national level celebration of the Mahila Kisan Diwas 2026 in New Delhi today to recognize the women's contribution to Indian agriculture. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that women, being an integral part of India's agricultural system, play several pivotal roles from sowing, transplanting and harvesting to livestock management, seed conservation and natural resource management. Indian Embassy in Riyadh has urged all internationals to continue to follow local authorities' instructions, stay indoors in case of aerial attack, and refrain from circulating videos or news related to ongoing events in view of the current situation in Saudi Arabia. In men's cricket, West Indies defeated India by 24 runs in the 4th T20 International in Hyderabad last night. Chasing a target of 248 runs set by West Indies, India scored 223 for 9 in 19.3 overs. Sanju Samson was the top scorer with 56 runs. And that is the end of this news bulletin.

0: अभी आपने देवी भगवती के पावन रूप माँ स्कंद माता के बारे में जाना। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज मिश्रा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती।
1: आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
3: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मेरे यानी सुरती के साथ वक्त हो गया है प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात का। तो शुरू करते हैं गोल्ड सुप्रभात एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। पहचान फिल्म का एक प्यारा सा गीत मुझे याद आ रहा है, तो सोचा क्यों नहीं आपको भी वो प्यारा सा गाना सुनाया जाए।

0: ये गंगा राम की समझ।
1: गोवर सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का, और ठीक 8:45 पर म्यूजिकल दिल्लगी में करूंगी आपके साथ ढेर सारी बातें। फिलहाल थोड़ी देर के लिए सुरति को दीजिए इजाजत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज सवेरे।
2: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि त्योहारों के मौसम में सुबह कितनी अलग होती है। कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज, कहीं पूजा की तैयारी और हर घर में एक अलग सी रौनक। आज शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज मां स्कंद माता की आराधना का दिन है। मान्यता है कि मां अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को गोद में लिए सिंह पर विराजमान रहती है। ये रूप हमें दो बातें सिखाता है। पहली, ममता में कितनी बड़ी ताकत होती है, क्योंकि एक मां का स्नेह और संस्कार ही एक बच्चे को साहसी और सक्षम बनाता है। वहीं दूसरी कि कोमलता और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यही बात हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी लागू होती है। जो हमारे पास है, चाहे वो प्यार हो, समय हो या अपनापन, उसे बांटने से वे घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है। एक मुस्कान, किसी के लिए थोड़ा सा वक्त या बस एक अच्छा शब्द, ये छोटी चीजें किसी का पूरा दिन बदल सकती हैं। इसी अपनेपन और उमंग के साथ आज से मेरे कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। हेलो सरबजीत।
1: हेलो वैष्णवी, एंड एज यू राइटली सेड दैट द नवरात्रि फेस्टिवल इज ऑन, एंड सो वी कैन से दैट स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी, एंथुसियाज्म इज ऑल अराउंड। सो लिसनर्स, पार्टिसिपेट, एंजॉय एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड ऑफ कोर्स इंडीड वंस अगेन अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम to all our listeners tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. Listeners, we are back again with your daily favorite news magazine program Aaj Savere, and the next 30 minutes, Vaishnavi, are indeed going to be packed with news, international, national news, metro updates, and of course, together at the end of the program, we shall flip the pages of history to see what makes 15th of October so memorable. So Vaishnavi, without much ado, let's begin the program with the news headlines.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डहा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधुघाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: The government has constituted a committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures for addressing their concerns. Former member of Niti Aayog, Professor Ramesh Chand, will chair the committee, which included Agriculture Commissioner, Joint Secretary Sugar, Department of Food and Public Distribution, and Joint Secretary Legal Metrology, Department of Consumer Affairs as members. More details on this from our correspondent.
3: The committee will examine the demand for an increase in remunerative returns to sugarcane farmers, taking into account cultivation cost and other relevant factors. It will also examine the demand for revision of the ex-mill minimum selling price of sugar in the context of sugar production costs, market realizations and the financial viability of sugar mills. Other key areas of examination will include existing mechanisms for testing and reporting sugar recovery and prevailing sugarcane maintain wait men practices at sugar mills. The committee will also examine prevailing practices relating to deductions from the weight of mechanically harvested sugarcane and assess the extent of actual losses, if any, arising from mechanized harvesting. It will evaluate the financial impact of the present practices on the cane price payable to farmers and may consider any other related matters deemed necessary. With Anand Kumar, Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
1: Puducherry's Le Saint-François International de Puducherry, one of the oldest French schools outside France still in operation, is celebrating its bicentenary today, marking two centuries of educational and cultural history in the Union Territory. Founded in the year 1826 as the College Royal de Puducherry by French Governor Eugène Despréhédy, the institution has evolved through successive political and social changes, retaining its place in Puducherry's educational heritage and its links with both French and Indian communities. We bring you more details on this from our correspondent.
4: The week-long bicentenary celebrations feature exhibitions, cultural performances, historical presentations and alumni reunions. More than 400 former students, many travelling from France, are participating in the celebrations, while over 1,000 guests are expected to attend the official ceremony today evening. French Ambassador to India, Thierry Matou, Director General of the Agency for French Educational Abroad, Alexandre Maurice, Puducherry Lieutenant Governor K. Kailash Nathan and Chief Minister N. Rengasamy will also participate in the bicentenary celebrations. Established at a time when colonial society was marked by racial and caste divisions, the school was initially reserved for white boys. Access gradually expanded over the following decades. Its educational activities also evolved with the introduction of Indian languages, including Tamil, Telugu, Malayalam and Bengali, alongside specialized courses and opportunities for higher studies in France. Today, the Lycée Français International de Pondicherry has more than 400 students from kindergarten to the final year of secondary education. It is part of the Agency for French Educational Abroad Network, which comprises 640 schools in 140 countries. And has an international alumni network of nearly 7,000 former students. Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
1: As Panchami sets the stage for the main festivities, Bengal is ready to welcome Goddess Durga with devotion, grandeur and the unmistakable spirit of togetherness. Here is a report from our Kolkata correspondent.
5: West Bengal is gearing up for Durga Puja as Panchami brings the festive excitement to a peak. Across Kolkata and other parts of the state, beautifully decorated pandals, dazzling lights and artistic idols of Goddess Durga are giving the streets a festive look. Around 57,500 Durga Pujas are being organized across West Bengal this year, including more than 3,300 in Kolkata alone. From grand theme-based pandals to traditional community and household worship, the celebrations showcase Bengal's rich cultural heritage and artistic creativity. Thousands of people have already begun visiting pandals, while crowds are expected to grow further over the coming days. Police and civic authorities have stepped up security, traffic management and crowd control arrangements to ensure safe and smooth celebrations. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: And now let's take a peep into the world of sports. In men's cricket, West Indies defeated India by 24 runs in the fourth T20 International in Hyderabad last night. Chasing a target of 248 runs set by West Indies, India scored 223 for 9 in 19.3 overs. Sanju Samson was top scorer with 56 runs. Tilak Verma scored 43 runs. Arshdeep Singh retired hurt with 5 runs. For West Indies, Kemo Paul scalped 5 wickets. Earlier put into bat, West Indies posted 247 runs for the loss of 3 wickets in stipulated 20 overs. West Indies captain Shai Hope scored unbeaten 102 runs off 50 balls. Hope was adjudged the player of the match. The 5-match series is now levelled at 2-2. The last match of the series will be played on 17th of this month at M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru.
0: Stop. श्रोताओं, अब अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों को की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसे शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की।
1: And now let's take our listeners to get them know what is the news from Bengaluru. Well, Bengaluru's footpath clearance drive has come to a halt as civic officials and staff have been deployed for the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls. Launched on July 1st, the drive was cleared around 1,358 kilometers of footpaths by removing unauthorized stalls, push carts and signboards to improve pedestrian mobility. However, only about 90 kilometers of the cleared footpaths have been restored for public use. With enforcement taking a back seat, vendors are gradually returning to the cleared spaces, forcing pedestrians to walk on roads and raising concerns over their safety. Residents have called for sustained enforcement and a comprehensive rehabilitation plan for evicted vendors to ensure that footpaths remain accessible to pedestrians. And Bengaluru police have arrested 4 people for allegedly forcing 13 children to beg at traffic signals across the city. The Central Crime Branch Women Protection Wing, along with Social Welfare Department officials, conducted a joint operation near Kogilu Cross under Yelahanka police station limits following a tip-off. The rescued children were produced before the Child Welfare Committee for further action, including tracing their biological parents. Further legal action is underway.
0: और सरबजीत, बेंगलुरु से चलते हैं अब महाराष्ट्र की ओर।
1: जी,
0: राज्य सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के 2,14,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2,000 रुपए देने की घोषणा की है। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत 1,08,627 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 1,05,470 सहायिकाओं के लिए 42,81,00,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। और अगली खबर की ओर रुख करें तो महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड महारेल ने पनवल निगर निगम क्षेत्र में यातायात की भीड़ कम करने और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाली देरी से राहत दिलाने के लिए 6 रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये ओवरब्रिज खारगर, कलम्बोली, कांदा कॉलोनी, कलुंद्रे, अडवली और रोहिंजन में प्रस्तावित है। तो सरबजीत, ये तो मुंबई की खबरें, और आगे आपके पास क्या है?
1: जी, द तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैज वन 4 क्वालिटी रिकॉग्निशंस। दे वर प्रेजेंटेड इन हैदराबाद यस्टरडे ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जितेश वी पाटिल रिसीव देम फ्रॉम तेलंगाना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड एनर्जी मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का। द रिकॉग्निशंस वर फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फॉर स्टोर management and the quality mark for service excellence. ISO 9001 recognizes good quality practices across offices and departments, including record keeping, internal controls and continuous improvement. It covers IT networks, data protection, access control and cyber security risks. The 5S method developed in Japan promotes cleanliness, order and discipline in storing materials and equipment, and it ensures easy identification of materials, accurate inventory and timely supply.
0: और कोलकाता की ओर रुख करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के स्वर्ण जयंती संस्करण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वर्ष मेले की थीम भारत रखी गई है। इस बार मेले में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ कई विशेष विषयों को भी प्रमुखता दी जाएगी। इनमें रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक रक्तकरबी के 100 वर्ष पूरे होने और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी शामिल है। और अब रुख करते हैं मौसम का, क्योंकि मौसम का मिजाज भी हमारे दिन की शुरुआत को खास बना देता है। सबसे पहले बात दिल्ली की। राजधानी में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। बात करें तापमान की तो यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है, यहां हीट वेव यानी लू को लेकर चेतावनी दी गई है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता की बात करें तो यहां आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। शहर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
1: Well, Chennai is likely to witness partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 24 degrees, maximum of around 33 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Minimum temperature around 20 degrees, maximum may go up to 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see generally cloudy sky with light rain or drizzle, temperatures around 23 degrees to a maximum of 34 degrees Celsius.
0: और श्रोताओं, अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है।
1: In 1676, on this day, King of England permitted the East India Company to mint the rupee and paisa coins at Bombay. 1888, 15th October, Gopal Ganesh Agarkar started daily newspaper Sudharak. And 1932, on this day, first Indian commercial airline service Tata Sons or the Tata Airlines started.
0: और 1949 में आज ही के दिन पूर्वोत्तर भारत की एक पुरानी रियासत त्रिपुरा औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बनी। वहीं बात करें 1990 की तो 1990 में आज ही के दिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई। और 2008 में आज ही के दिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया।
1: 1949, on this day, the process of the integration of the Indian state was completed when the last three states, Tripura, Manipur and Banaras were merged. And 1990, Bharat Ratna, that is India's highest award, was given to Dr. Nelson Mandela, the South African black nationalist leader who arrived in India on a five-day visit. He is the first non-Asian to get this honor. 1994, on this day, the SROS C2 Indian Remote Sensing Satellite IRSP-2, which carried remote sensing payload, was placed in orbit. And on this day in the year 2000, Sachin Tendulkar became the highest run getter in one-day internationals during his innings of 69 in the final of the ICC cricket tournament against New Zealand.
0: तो ये तो थी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके बारे में हमने जिक्र किया। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में। श्रोताओं, आज विश्व विद्यार्थी दिवस है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती का भी अवसर है। आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता पायल शर्मा की रिपोर्ट।
6: सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये विचार हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है। आखिर एक सपना किसी विद्यार्थी की जिंदगी को कितना बदल सकता है? क्या एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण बालक असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है? क्या सीमित संसाधनों के बावजूद कोई अपने विचारों से पूरे देश का भविष्य बदल सकता है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन इन सवालों का प्रेरणादायक उत्तर है। 15 अक्टूबर यानी आज उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें शिक्षा की शक्ति और विद्यार्थियों की असीम संभावनाओं की याद दिलाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से अपनी यात्रा शुरू करने वाले डॉक्टर कलाम ने अखबार बेचने से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर तय किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति बनना नहीं थी, उनकी असली पहचान थी युवाओं के सपनों पर उनका अटूट विश्वास। वे विद्यार्थियों में केवल भविष्य के नागरिक नहीं बल्कि वर्तमान के परिवर्तन

0: सकता है।
1: डॉक्टर कलाम कहा करते थे, एक्सीलेंस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट, अर्थात उत्कृष्टता कोई संयोग नहीं बल्कि निरंतर प्रयासों का परिणाम है। याद रखिए, किसी परीक्षा में कम अंक आना आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं है, किसी प्रतियोगिता में असफल होना आपके सपनों का अंत नहीं है, और दूसरों की सफलता आपसे आपकी संभावनाएं नहीं छीन लेती, क्योंकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा वो होती है जिसमें हमें प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है, बल्कि वो होती है जिसमें हमें चुनौतियों के बीच अपने आत्मविश्वास, धैर्य और ईमानदारी को बनाए रखना होता है। डॉक्टर कलाम को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके सपनों को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों में जीवित रखें। इस विद्यार्थी दिवस पर संकल्प लें कि हम सवाल पूछने से नहीं डरेंगे, असफलताओं से हार नहीं मानेंगे और अपनी सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखेंगे।
2: कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा।
3: So indeed, listeners, lots and lots of words of encouragement, of forward-looking approach and the determination to achieve your dreams.
4: बिल्कुल सरबजीत, और APJ अब्दुल कलाम की अगर बात कर ही रहे हैं तो वो हमेशा सपने देखने के लिए कहा करते थे
3: जी,
4: और अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी उनकी एक बहुत खूबसूरत बात थी कि वो कहते थे कि हमेशा अपने अंदर के विद्यार्थी को जगाए रखिए।
3: Absolutely, always be a learner.
4: बिल्कुल, और श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, बात है एक ऐसी छोटी सी आदत की जो हमें कई बीमारियों से बचाने में बड़ी भूमिका निभाती है। ये आदत है साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोना। हर साल आज ही के दिन वैश्विक हाथ धुलाई दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। जरा सोचिए, हम दिन भर कितनी चीजों को छूते हैं, जैसे मोबाइल फोन, दरवाजों के हैंडल, सार्वजनिक परिवहन में लगी रैलिंग और ना जाने कितनी दूसरी सतहें। इन पर मौजूद कीटाणु हमारे हाथों के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं, खासकर जब हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं या अपने चेहरों को छूते हैं। क्यों सर
3: जी? वैष्णवी, एंड इंडीड द हैबिट इज स्मॉल बट जस्ट दोज फ्यू सेकंड्स यू नो टेकन आउट ऑन अ डेली बेसिस एंड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम इन आवर डेली स्केड्यूल कैन ब्रिंग अस सो मच ऑफ बेटर हेल्थ। सो एज हैज बीन सेड दैट दिस सिंपल एक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्स लेस देन अ मिनट एंड ऑफ कोर्स can make the big difference between life and death. It's unfortunate that billions of people around the world still don't have access to basic hand washing facilities at home, at school or in their local health clinic. Or sometimes the facilities are there but the knowledge or the will to do the small act is missing.
4: Jee.
3: So of course the evidence is clear. Good hand hygiene through hand washing with soap or alcohol based hand rub can dramatically reduce the transmission of diseases that claim millions of lives each year. So Vaishnavi, let's from today itself take a pledge that all of us will do the needful as far as proper hand washing is concerned.
4: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही छोटी छोटी आदतों से ही हम बड़े बदलाव ला सकते हैं
3: जी।
4: तो श्रोताओं आज से जरूर कम से कम 20 सेकंड निकालिए और अच्छे से जरूर हाथ धोइए। और अब आगे बढ़ते हैं, अब उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। सबसे पहले बात दुर्गावती देवी की। आजादी की लड़ाई में कुछ नाम ऐसे भी थे जो इतिहास के पन्नों में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की तुलना में कम चर्चित रहे, लेकिन उनका योगदान बेहद अहम था। ऐसी ही एक साहसी क्रांतिकारी थी दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या के बाद जब भगत सिंह अंग्रेजों से बचकर निकलना चाहते थे तब दुर्गा भाभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की। लेकिन दुर्गा भाभी की भूमिका केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहीं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में स्वयं भी आगे आईं। दुर्गा भाभी ने चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलोसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने में सहायता की। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाएं केवल पर्दे के पीछे सहयोग नहीं कर रही थी बल्कि जोखिम उठाकर इतिहास भी रच रही थी। और सरबजीत, अब अगले शख्सियत के अब रुख करते हैं
3: जी।
4: जागो फिर एक बार, सूरज उगा किरणों का संसार, हृदय में भर लो उजियारा, उठो चलो नया सवेरा, सपनों का पीछा करो ना डरो कभी हारा। हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता केवल जागने का आह्वान नहीं है बल्कि चेतना, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का

0: संदेश भी देती है। निराला हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे साहित्यकार के रूप में भी है जिन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक असमानता, मानवीय संवेदना और रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और वो तोड़ थी पत्थर शामिल है। जहां राम की शक्ति पूजा संघर्ष और आत्मबल को अभिव्यक्त करती है, वहीं सरोज स्मृति में अपनी पुत्री को खोने का उनका व्यक्तिगत दुख कविता के रूप में सामने आता है। वह तोड़ती पत्थर में उन्होंने मेहनत कश महिला की जीवन और संघर्ष को अपनी कविता का विषय बनाया और निराला ने हिंदी कविता को परंपरागत ढर्रे से बाहर निकालकर उसे नई भाषा, नए शिल्प और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की शक्ति भी दी।
1: एंड वैष्णवी, 15th अक्टूबर वी मस्ट टॉक अबाउट द ग्रेट रिचर्ड लिन कार्पेंटर, एन अमेरिकन म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हु फॉर्म्ड हाफ ऑफ द सिबलिंग ड्यू द कार्पेंटर्स अलोंगसाइड हिज यंगर सिस्टर करन। ही हैड न्यूमरस रोल्स इन द कार्पेंटर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, अरेंजर, pianist, keyboardist and songwriter, as well as joining with Karen on harmony vocals. Richard composed many of the Carpenters' hits such as Goodbye to Love, Top of the World.
0: और अब हिंदी फिल्म संगीत के उस दौर को याद करते हैं जब गीतों की धुनें फिल्मों की पहचान बन जाती थी। उस दौर की बेहद लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर सिंह रघुवंशी का जन्म आज ही के दिन 1922 को हुआ था। शंकर और जयकिशन ने बरसात, आवारा, श्री 420, अनाड़ी और संगम जैसी फिल्मों में यादगार संगीत दिया। उनके संगीत की खासियत थी भव्य ऑर्केस्ट्रेशन और भारतीय धुनों के साथ नए प्रयोग। आइए आपको हम सुनाते हैं उन जोड़ी के द्वारा बनाए गए कुछ खूबसूरत गीत।

0: इस जोड़ी ने कई बार फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता और वर्ष 1968 में पद्मश्री से सम्मानित हुई.
1: And of course, although primarily active in the Hindi film industry as a composer duo, this combination of Shankar and Jaikishan strongly influenced the next generation of Indian music directors. And listeners, of course, we are also remembering today Sir P.G. Wodehouse, English writer and one of the most widely read humorists of the 20th century. His creations include the feather-brained Bertie Wooster and his sagacious valet Jeeves, the Immaculate and Lord's Emmis and the Blandings Castle set. And Vaishnavi, almost time to wind up our show.
0: जी बिल्कुल सरबजीत, और श्रोताओं इसी के साथ आज सवेरे में आज की हमारी मुलाकात यहीं पूरी होती है. उम्मीद है आज की बातें आपके लिए जानकारी के साथ साथ कुछ अच्छे विचार और मुस्कुराने की वजह भी लेकर आई होगी.
1: Listeners, thank you very much for tuning in. Have a superb day.
0: नमस्कार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी. सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की. हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना. और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है. वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे.
3: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे. लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा. श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे. अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा.
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है. पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा.
4: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया. ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं. करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है.
2: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है.
4: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
2: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में

0: वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जाँच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
2: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
3: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
2: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
4: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
2: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
5: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में

0: नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
3: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ACPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च 5 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 3,350 करोड़ रुपीस इन लद्दाख टुडे। Union Cabinet approves productivity link bonus of 78 days for over 11 lakh railway employees. Government forms committee to examine

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी काबीना ने रेलवे के 11 लाख से ज्यादा मुलाजमीन के लिए पैदावार से मुंसलिक 78 दिन के बोनस को

0: मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो गन्ना किसानों की जानिब से उठाए गए मामलात का जायजा लेगी और मुनासिब इकदामात की सिफारिश करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और मर्दों की क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 मैच में भारत को 24 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते में कनेक्टिविटी को मुस्तहकम बनाना, तवानाई के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, सकाफती विरासत को महफूज रखना और पानी की दस्तियाबी में इजाफा करना है। जनाब मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म लेह में कुशोक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नई मुसाफिर टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे जो 640 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है। यह 23,800 मुरब्बा मीटर से ज्यादा के इलाके में फैली हुई है। जदीद तर्ज के इस टर्मिनल से सालाना 35 लाख मुसाफिरों की आमद रफ्त में सहूलत होगी। जनाब मोदी 298 किलोमीटर तवील निमो पदम दारचा रोड को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे जिसे सरहदी सड़क तंजीम ने तामीर किया है। दूर दराज की जंस्कार वादी के रास्ते लेह में निम्मो को हिमाचल प्रदेश में दारचा से जोड़ने वाले इस सड़क रास्ते से लद्दाख के लिए मुतबादल कनेक्टिविटी कॉरिडोर फराहम होगा। वजीर आजम 9 मेगावाट के हनु छोटे पन बिजली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी लेह में सिंधु घाट के मकाम पर भारत के पहले पेट्रोलिक कंजर्वेशन पार्क का इफ्तिताह भी करेंगे। जनाब मोदी प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में 40 आबी जखीरों का आगाज भी करेंगे। मिशन अमृत सरोवर के मकासद के ऐन मुताबिक पानी की बचत के जरिए लद्दाख के मुनफरिद जोग्राफियाई और आबो हवा के चैलेंजों से निमटने के मकसद से ये पहल शुरू की गई है। लेह लद्दाख से फुनसोक वांगमो की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में उन भारतीय खिलाड़ियों से गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने 2026 के नागोया एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था। वज़ीर आज़म इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: जापान में हालिया एशियाई खेलों में भारत मजबूती तौर पर 85 तमगे जीत कर चौथे मकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। इस तरह भारत लगातार दूसरी मरतबा एशियाई खेलों में चोटी के 5 मुल्कों में शामिल रहा। इससे मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में भारत की बढ़ती हुई मसाबिकत की अक्कासी होती है। भारत ने इन खेलों में कई काबिल कदर कामयाबियां हासिल की। इनमें रिकर्व तीरंदाजी में तारीखी कारकर्दगी, मर्दों और खवातीन की हॉकी दोनों में सोने के तमगे, नीज, सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार तमगे जीतना शामिल है। दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकजी काबीना ने रेलवे के 11,40,000 से ज्यादा मुलाजमीन के लिए पैदावार से मुंसलिक बोनस को मंजूरी दे दी है जो 78 दिन की उजरत के बराबर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रूपये से ज्यादा मुख्तस किए हैं।
3: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: हर अहल मुलाजिम के लिए 78 दिन के ज्यादा से ज्यादा बोनस की रकम 17,951 रुपए होगी। ग्रुप सी के रेलवे अहलकार इसके दायरे में आएंगे। इनमें ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट्स, ट्रेन मैनेजर्स, गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीकी अहलकार और पॉइंट्समैन शामिल हैं। काबीना ने समाजी इमदाद के कौमी प्रोग्राम को मजीद 5 साल जारी रखने की भी मंजूरी दी है। इसकी मुद्दत साल 2030-31 तक होगी। इसके लिए 53,428 करोड़ रुपए का मजमूई बजट रखा गया है। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने IDBI बैंक की क्लीदी तंजीमनों को भी मंजूरी दी है। ये फैसला किया गया है कि IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी एक क्लीदी खरीदार

0: को फरोख्त की जाएगी। सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो गन्ना किसानों की जानिब से उठाए गए मामलात का जायजा लेगी और उनकी तशवीश के ताल्लुक से मुनासिब इकदामात की सिफारिश करेगी। नीति आयोग के साबिक मेंबर प्रोफेसर रमेश चंद इस कमेटी की सदारत करेंगे। ज़रात और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर, नीज सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा महकमे के मरकजी वजीर के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के नुमाइंदों की मीटिंग के दौरान किए गए फैसलों के तनाजुर में ये कमेटी तश्कील दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये कमेटी खेती पर आने वाली लागत और दीगर मुतालिका पहलुओं को मलहूज़े खातिर रखते हुए गन्ना किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतें बढ़ाने की मांग का जायजा लेगी। इसके अलावा ये कमेटी शकर की पैदावार की लागत, मार्केट की सूरत हाल और शकर मिलों के माली इस्तेहकाम के जिमन में शकर की कम अज कम कीमत फरोख्त पर नजर सानी के मुतालबे का भी जायजा लेगी। ये कमेटी किसानों को अदा की जाने वाली गन्ने की कीमत के बारे में तरीक़ाकार के माली असरात का तजिया करेगी और अगर कोई दीगर मुतालिका मामला भी जरूरी है तो उस पर भी गौर कर सकती है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अपनी खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि रेरा जैसे इदारों के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है जो जायदाद और इमलाक के शोबे में शफाफियत लाने और सारिफीन के हुकूक के समत काम कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पार्लियामेंट ने रियासतों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज RERA के कयाम के लिए राह हमवार करते हुए साल 2016 में रियल एस्टेट के जाब्ताबंदी और तरक्की से मुतालिक कानून को नाफिज किया। इस कानून के तहत डेवलपर्स के लिए इस बात को लाजमी बनाया गया कि वो इस कानून के तहत काबिल इतलाक दफात के मुताबिक इमलाक के इश्तहारात देने या उन्हें फरोख्त करने से पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्टों को रजिस्टर कराया जाए। RERA डेवलपर्स और घर खरीदने वाले अफराद के दरमियान तनाजात के तस्फीये के लिए इंजबाती तरीका कार फराहम करती है ताकि रियल एस्टेट शोबे में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि RERA घर खरीदने वाले लोगों और डेवलपर्स के दरमियान एतमाद को मुस्तहकम बनाने में नुमाया रोल अदा करती है।
3: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
2: गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले अनिल तिवारी ने बताया कि RERA ने डेवलपर्स और घर खरीदने वाले लोगों के दरमियान शफाफियत को बेहतर बनाया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए शोएबा।
0: ज़रात और किसानों की बहबूद का महकमा ज़रात के शोबे में ख़वातीन की खिदमात के एतराफ में आज कौमी सतह पर महिला किसान दिवस की तकरीब का एहतमाम करेगा। इस प्रोग्राम का मौजू है तरक्की याफ्ता ज़रात और विकसित भारत की तामीर में खातून किसानों का किरदार। ज़रात और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा कि आज अक़वामे मुत्तहिदा के देही ख़वातीन का बैनुल अक़वामी दिन भी मनाया जा रहा है। वजारत ने इस बात पर जोर दिया है कि यह खातून किसानों का ताउन है जो भारत में ज़रात को मजीद पैदावारी सलाहियत और खुद इन्हसारी बख्श रहा है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा में पुन्नमी घाट के मुकाम पर कौमी सरस रोजी रोटी मेले का इफ्तिताह करेंगी। पहली बार कौमी सतह का यह मेला दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते से बाहर हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: कौमी सरस मेला 2026 अपनी मदद आप ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाली देही खवातीन को मुल्क भर में अपनी मसनूआत की नुमाइश करने, वसी बाजार रसाई और अपने जरिए माश को मुस्तहकम बनाने का प्लेटफॉर्म फराहम करता है। इसका एहतमाम आंध्र प्रदेश हुकूमत के इश्तराक में देही तरक्की की मरकजी वजारत की तरफ से किया गया है। 650 से ज्यादा स्टॉल्स पर रिवायती हथकरघे की मसनूआत, नामियाती अशिया और घरेलू सामान की

0: नुमाइश की गई है। कौमी सरस मेला देही खवातीन की पायदार आमदनी और माली एतबार से खुद इन्हसारी में मुआविन लखपति दीदी पहल को नुमाया करता है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
1: पंचमी के साथ बड़ी तकरीबात के आगाज के लिए मगरबी बंगाल में पूरी अकीदत शान शौकत और इत्तेहाद के जज्बे के साथ देवी दुर्गा का खैर मकदम करने के लिए तैयारियां जारी हैं। कोलकाता और रियासत के दीगर हिस्सों में रंग बिरंगी रोशनी और देवी दुर्गा की शानदार मूर्तियों के साथ पंडालों को खूबसूरती से सजाया गया है। इस साल मगरबी बंगाल में तकरीबन 57,500 दुर्गा पूजा का अहतमाम किया जा रहा है। इनमें अकेले कोलकाता में ही 3,300 से ज्यादा पूजा पंडाल हैं। हजारों लोगों ने पहले ही पंडालों में आना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों के साथ लोगों की तादाद में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हरियाणा, पंजाब, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहिली आंध्र प्रदेश और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। उधर जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर हल्की से लेकर औसत बारिश होने और बुलंद मुकामात पर हल्की बर्फबारी होने की पेशगोई की गई है। मर्दों के क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मैच में भारत को 24 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। भारत को 248 रन का निशाना मिला था, लेकिन वो 19 ओवर्स और 3 गेंदों में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 43 रन स्कोर किए। अर्शदीप सिंह चोट लगने की वजह से मैदान से चले गए, उन्होंने 5 रन बनाए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज से बल्लेबाजी करने को कहा और उसने मुकर्रा 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 247 रन बनाए। वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप ने सिर्फ 50 गेंदों पर 102 रन स्कोर किए और आखिर तक आउट नहीं हुए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। 5 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरु में इस महीने की 17 तारीख को खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। भारत और आसियान बहरी सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वैशाली कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन के अहल खाना के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया। इस खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर पेश किया है। DRDO इख्तिराई कॉन्फ्रेंस में मकामी चिप और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर तबादले ख्याल करेगा, इस खबर को प्रताप के अलावा दीगर अखबारात ने भी नुमाया किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की बैनुल अक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। सना में सऊदी इत्तेहाद का बड़े हमले का ऐलान, शहरियों को इनखिला का हुक्म। मसनू जहानत बरतानिया की सलामती के लिए बड़ा खतरा, खुफिया इदारे के सरबराह का इंतबाह।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी काबीना ने रेलवे के 11 लाख से ज्यादा मुलाजमीन के लिए पैदावार से मुंसलिक 78 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो गन्ना किसानों की जानिब से उठाए गए मामलात का जायजा लेगी और मुनासिब इकदामात की सिफारिश करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और मर्दों की क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 मैच में भारत को 24 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का और आज म्यूजिकल दिल लगी में आपके साथ हूं मैं सुरति। आज है 15 अक्टूबर, 15 तारीख। जानते हैं हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है और ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना, उन्हें प्रेरित करना और साथ ही साथ डॉक्टर कलाम के छात्रों और युवाओं के प्रति प्रेम और उनके योगदान को याद करना है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम जो है बच्चों और युवाओं से बेहद प्यार करते थे। वे मानते थे कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं और उनका ये भी मानना था कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे कि समाज और राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। आइए उन्हें याद करते हुए ये गीत सुनते हैं प्यारे से बच्चों के लिए।

0: बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
3: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
2: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
0: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है। दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं और हैंडशेक करते हैं। अब ये भी कॉमन सी चीज है, ऑब्वियस सी बात है, मिलोगे या तो नमस्ते करोगे या हैंडशेक करोगे, लेकिन क्या आप हैंडशेक करने से पहले ये सोचते हो कि आपके हाथ साफ हैं, उसके हैं कि नहीं? अब सवाल ये उठता है कि मैं ऐसा पूछ क्यों रही हूँ, वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो बीमारियां हैं वो हाथों से भी ट्रांसफर होती है, संक्रमण जो है हाथों से भी फैलता है। और ये बोलने का मकसद ये है क्योंकि आज जो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, यानी कि वैश्विक हाथ धोने का दिवस, जो कि हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक डे नहीं है जो सिर्फ हमें आज करना है कि भाई साबुन से हमें हाथ धोने हैं, इसके महत्व को बताने के लिए आज का दिन ये मनाया जा रहा है, नहीं, बल्कि ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, स्पेशली खाना बनाने या खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी है, शौच के बाद हैंड वॉश अच्छे से जरूरी है, खांसने छींकने या नाक साफ करने के बाद, कचरा छूने या फिर जानवरों को छूने के बाद। तो ये बेसिकली छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं जो हम करते हैं, लेकिन उसके बाद हैंड वॉश करना भूल जाते हैं। घर से बाहर तो चले गए लेकिन कहाँ कहाँ गए, हमारे हाथों ने किस किस चीज को छुआ, उसके बाद घर वापस आए और घर वापस आने के बाद उन्हीं हाथों से हमने खा लिया या उन्हीं हाथों को हमने घर के अलग अलग जगहों पर लगा दिया। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि हमें भी घर पर वापस आने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए, क्योंकि जहां जहां हम अपने हैंड्स को लगा रहे हैं वहां वहां इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है? नहीं किया ना, इंपॉर्टेंट है भाई, हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाथ धोने का सही तरीका। अपने हाथों को साफ और बहते पानी से आप गीला करें, पर्याप्त साबुन लगाएं, कम से कम 20 सेकंड तक हथेलियों उंगलियों के बीच और साथ ही नाखूनों को अच्छी तरह से रगड़ें, साफ पानी से धोकर तौलिए या फिर सुखाने वाले कागज से हाथ को सुखाएं, इसका इस्तेमाल करें, अच्छे से हैंड वॉश करें, तब ही आप अपने हाथों का प्रयोग जो है खाने पीने की चीजों में या कहीं और करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ आज के लिए नहीं क्योंकि आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, लेकिन हमेशा के लिए। अगर नहीं करते तो आज से शुरू हो जाइए, क्योंकि हाथ धोकर स्वच्छता बनाए रखना हमारे लिए, खुद के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: अरे, अरे, ए, ए, ए, ए, ए,

और इसी के साथ वक्त हो गया इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरेती को दीजिए इजाजत। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और अब वक्त हो गया है समाचारों का, तो सुनेंगे हिंदी में समाचार एफएम गोल्ड पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिन के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर व्यापारी छूट दर एमडीआर के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। इससे पहले एनपीसीआई ने ये दर आज से लागू करने की घोषणा की थी। अब नई दर दिवाली के बाद लागू की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर को दिवाली के तुरंत बाद लागू करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा है कि तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। कंपनी ने बताया कि दो लोगों के बीच किया जाने वाला हर यूपीआई लेनदेन शुल्क मुक्त रहेगा। इसमें धनराशि की कोई सीमा नहीं है। एमडीआर शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगा। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। इसके साथ ही भंडार सीमा 1,000 क्विंटल निर्धारित की है। ये इस वर्ष नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने जमाखोरी को रोकने और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी भंडार मानदंडों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत कोलकाता और इसके क्षेत्रों तथा असम के लिए भंडार सीमा 2,000 क्विंटल निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि औसत खुदरा चीनी के मूल्य में अगस्त में अपने उच्चतम स्तर से 15% तक कमी आई है। चीनी की कीमतों में कमी सरकार के चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसके सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का असर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 1500 महिला उद्यमी और कारीगर हिस्सा ले रही हैं। मेले में 650 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में क्षेत्रीय व्यंजनों और पारंपरिक शिल्प का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कामना की कि ममता और स्नेह की प्रतीक मां स्कंद माता का आशीर्वाद हर परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष 5 देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल प्रतिभाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। श्रृंखला का अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट एंड डेडिकेट टू द नेशन फाइव मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 3,350 करोड़ रुपीस इन लद्दाख टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द प्रोजेक्ट्स एम टू स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी, इम्प्रूव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड एनहांस वाटर सिक्योरिटी इन द रीजन। ही विल ऑल्सो एड्रेस द गैदरिंग ऑन द ओकेजन। द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग एट कुशोक बकुला रिनपोचे Airport Leh, built at a cost of 640 crore rupees. The Prime Minister will dedicate to the nation the 298-kilometer-long Nimmu Pudam Darcha Road, constructed by the Border Roads Organisation (BRO). Mr. Modi will also inaugurate the 9-megawatt Hanu Small hydroelectric project and the 66 kV double circuit Dahanu Khulsi transmission lane. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. This marked India's second consecutive finish among the top five nations at the Asian Games, reflecting the country's growing competitiveness across a diverse range of sporting disciplines. Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved a productivity-linked bonus PLB equivalent to 78 days wages for over 11,40,000 railway employees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, government has allocated over 2,009 crore rupees for this payout.
2: The Cabinet today approved a productivity-linked bonus equivalent to 78 days' wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian Railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2,009 crore rupees.
1: It covers Group C railway personnel, including track maintainers, loco pilots, train managers, guards, station masters, supervisors, technicians, pointsmen, and ministerial staff. The National Payments Corporation of India, NPCI, has postponed the implementation of the merchant discount rate MDR on select person-to-merchant UPI transactions. Earlier, NPCI had announced that the rate would come into effect from today. The National Payments Corporation of India said that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post-Diwali. It said the date will be notified separately. All person-to-person UPI transactions will remain free regardless of amount. The MDR charges will apply only to person-to-merchant transactions exceeding 2,000 rupees. The government has constituted a committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures for addressing their concerns. Former member of Niti Aayog, Professor Ramesh Chand, will chair the committee. The constitution of the committee follows the decisions taken during a meeting of representatives of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra with the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. The committee will consult all stakeholders, including farmers, sugar mill associations, state governments and experts, before submitting its findings and recommendations as early as possible for consideration by the competent authority. In men's cricket, West Indies defeated India by 24 runs in the fourth T20 international in Hyderabad last night, chasing a target of 248 runs set by West Indies. India scored 223 for 9 in 19.3 overs. Earlier put into bat, West Indies posted 247 runs for the loss of 3 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 28वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी।
1: सदियों से भारत की पहचान खेती और किसानी से रही है। स्कूलों में हमें पढ़ाया गया है कि भारत कृषि

0: महान देश है। स्वाधीनता के तुरंत बाद देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी करीब 52% थी, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 17% के करीब ही रह गई है। बेशक जीडीपी में हिस्सेदारी खेती की कम है, लेकिन खेती किसानी पर आज भी देश की बड़ी आबादी करीब करीब 48% लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय विकास में खेती किसानी के महत्व को इन आंकड़ों से मोटे तौर पर समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार भी इसे समझती है। यही वजह है कि 12 साल के अपने शासनकाल में मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई। खेती किसानी के विकास में केंद्र सरकार के योगदान और उसकी योजनाओं को लेकर आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा की श्रृंखला के तहत आज हम खेती किसानी पर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है किसान से कृषि उद्यम तक, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के पूर्व सचिव डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। डॉक्टर बंसल और हरवीर जी, आप दोनों का स्वागत है।
1: शुक्रिया,
2: धन्यवाद।
0: आज सबसे पहला सवाल डॉक्टर बंसल आपसे, किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने में मोदी सरकार ने किन किन योजनाओं पर बहुत ठीक से फोकस किया और उसमें कितना वो कामयाब रहे हैं?
2: मैं आपको एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
0: जी
2: बता सकता हूं कि पिछले 10-12 साल में जो नई स्कीम्स आई हैं और जो बढ़ावा इस गवर्नमेंट ने दिया है, वो खास करके एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। उस टेक्नोलॉजी को हमें बहुत प्रोत्साहित करते हुए किसानों के लिए नई नई किस्में बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। और मुझे खुशी है कि पहले जैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर काम करते रहे हैं और अभी भी चल रहा है, लेकिन वहां रेगुलेशन के चलते हुए हम उतनी जो हमें प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। सिर्फ एक बीटी कॉटन को ही हम किसानों तक लेकर आ पाए कि जिससे हमारी पैदावार काफी बढ़ गई थी 14 मिलियन बेल से करीब 2002 में, और 2015-16 तक 40 मिलियन बेल तक चली गई थी। लेकिन अब जीएम टेक्नोलॉजी के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। 2020 में इस टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज मिला है। और इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जीएम एक बहुत रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी ऐसा ही है, उसकी वजह से हमारी बीटी कॉटन के बाद कोई और दूसरी नई किस्म अभी तक क्रॉप्स में नहीं आ पाई है। लेकिन जीनोम एडिटिंग को हमें एनकरेजमेंट मिला इतना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोसेफ्टी रेगुलेशन से इसको हमें एग्जम्पशन दे दिया। मार्च 2022 में ये हमें एग्जम्पशन मिला कि हम जो भी बायोसेफ्टी असेसमेंट की जरूरत पड़ती है जीएम टेक्नोलॉजी में, वो साइंटिफिकली स्पीकिंग साइंस के द्वारा इस चीज को हमें एविडेंस दिया गया और साइंटिस्ट ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया। हमारी नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये प्रपोजल दिया कि इसमें बायोसेफ्टी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट से करीब 2 साल में एक एग्जम्पशन जो होता है वो मार्च 30, 2022 को इसका एग्जम्पशन हमें मिल गया। तुरंत साइंटिस्ट लोगों को इतनी इससे एनकरेजमेंट मिला कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अगस्त 2022 में, और उस प्रोजेक्ट के तहत मई 4, 2025 में हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हमने लॉन्च कर दी है। उसके साथ साथ उसको और आगे बढ़ाने के लिए बाकी सभी करीब 40 क्रॉप्स में इस टेक्नोलॉजी के द्वारा नई किस्में बनाने के लिए, जिसमें कि यील्ड भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप की बात करें, या नाइट्रोजन या और वाटर यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, या फिर ज्यादातर पल्सिस में ऑयल सीड्स में जो हमें अभी तक इतने हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उनका काम और ज्यादा आगे बढ़ाएं। इस तरह से इस काम को हमें खूब बढ़ावा मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी प्रोडक्शन जो अभी 375 मिलियन टन के आसपास है, खास करके मैं ऑयल सीड्स और पल्सिस में हमें, और मिलेट्स को भी साथ में लेकर इसमें बहुत हमें एनकरेजमेंट मिली है और हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी और आगे हमारे देश में बढ़ जाएगी और साइंटिस्ट लोग इसमें बहुत दिन रात से हम काम कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, डॉक्टर बंसल ने तो बहुत ही एक तरह से गंभीर बात बताई और ये थोड़ा तकनीकी विषय है। जहां तक किसानों के हालात में जमीनी स्तर पर बदलाव की बात है, तो आप लंबे समय से कृषि पत्रकारिता करते रहे हैं, खेती किसानी पर आपकी गहरी नजर रही है, मोदी सरकार की वो कौन योजनाएं रही जिन्होंने किसानों की जमीनी स्थिति को, जमीनी हालत को

0: बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। हरवीर जी
1: देखिए, उमेश जी अगर हम देखें पिछले 12 साल को हम ध्यान से उस पर जाएं तो कई सारे ऐसे कदम हैं जो कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जिनका योगदान है और काफी चेंजेस एग्रीकल्चर में आए। उसमें अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट काम था वो था जो एग्रीकल्चर का जो ढांचागत जो सुविधाएं हैं जिसमें सिंचाई सबसे इम्पोर्टेंट है
0: जी,
1: तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई के ऊपर फोकस किया गया और उसके बाद उसमें अगला कोशिश की गई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन मोर क्रॉप पर ड्रॉप करके
0: जी।
1: तो एक तो यह है कि जो हमारा कृषि का जो क्षेत्रफल था सिंचित वो हम लोग करीब ओवरऑल जो हमारा कुल कृषि क्षेत्रफल है उसके करीब 45 से 50 के बीच में हम अटके हुए थे। 55% को भी शायद पार कर गया अगर आंकड़े हम लेटेस्ट देखेंगे तो ये एक इतनी बड़ी चीज है क्योंकि सिंचाई की सुविधा का मतलब होता है कि किसान को उसकी फसल का एक एश्योरेंस मिलना के आश्वासन मिलना कि उसकी फसल पैदा होगी और जब फसल को जरूरत होगी उसमें वो सिंचाई कर सकेगा। तो ये एक बड़ा कदम है कि हमने किस तरीके से जो निवेश के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को सिंचित क्षेत्रफल के रूप में तब्दील करने की जो प्रयास हुए हैं और उसके दो भाग जी उसका जी। दूसरा पक्ष जैसे मैं कहूँ, एक तो जो पहले से लंबित योजनाएं थी सिंचाई की उनको पूरा किया गया
0: जी।
1: दूसरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर इरीगेशन है क्योंकि पानी का भी एक चैलेंज हमारे सामने है और इसका एक ये इसमें जो गुणात्मक बदलाव होता है आमदनी में किसान की और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव हुआ, एक तो ये मैं कहूंगा। दूसरे अगर हम जाएं कि किसान को फसल की एक सुरक्षा देना जो है उसको रिस्क जो हम कहते हैं जो जोखिम को एक तरीके से कम करना और उसमें मदद करना, उसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें हर साल करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा 17,000 करोड़ तक जो है सरकार देती है उसमें जो प्रीमियम का हिस्सेदारी और उसमें सब किसानों को शामिल किया गया। पहले क्या था कि जो कर्जदार किसान होते थे वो होते थे, इसमें फिर सबके लिए ओपन किया और इसको ऑप्शन बना दिया गया। तो ये एक इवॉल्विंग स्कीम है, उसमें अभी बहुत सारे बदलाव लगातार किए गए जो क्रॉप वैल्यू और किस तरह से भुगतान हो, सैटेलाइट मैपिंग और लॉसेस के वो कैसे कम किया जाए, तो ये एक बड़ा इसमें ये दूसरा मेरा ये मानना है कि इसमें एक बड़ा काम हुआ। इसके अलावा अगर हम जाएं जो छोटे किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2019 में शुरू किया गया तीन किस्तों में जो किसानों को देश भर के जो एलिजिबल फार्मर है जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को उनके खाते में सीधे 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उसका मकसद ये था कि जो छोटे किसान है उनको हम किस तरीके से आर्थिक मदद कर सकते हैं उस वक्त जब उनको जरूरत हो इनपुट की कि उनके पास खाद की खरीदने की क्षमता हो, उनके पास बीज खरीदने की क्षमता हो। ये छोटा है बट ये एक अहम भूमिका उसकी है। और इसके अलावा मैं अभी अगर आपको बताऊंगा और कई चीजें हम आगे बात करेंगे,
0: जैसे
1: तीन बड़े कदम जो है। हाँ, एक और इसमें मैं कहूंगा आपको
0: किसान क्रेडिट कार्ड जो था,
1: किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है क्योंकि ये 2003 के आसपास शुरू किया गया था। उसमें किसानों को जो छोटी अवधि का ऋण जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो मिलता है, खास तौर से उसका मकसद भी फसल के जो उनके जो इनपुट होते हैं उसकी आपूर्ति में मदद करता है और उसमें जो क्रेडिट की जो मतलब दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार देती है कि 7% पर वो किसानों को देती है और जो किसान समय पर भुगतान कर देते हैं उनको अलग से 3% का और इंसेंटिव दिया जाता है। तो जो समय पर किसान लेकर के भुगतान कर देता है कर्ज का क्रेडिट कार्ड के तहत उसका जो प्रभावी दर है वो 4% पे आ जाता है। तो ये कुछ चार ऐसे स्टेप्स जो है जिनकी हमने बात की वो एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर के गए हैं। दूसरे एक जो MSP की कैलकुलेशन का तरीका था जिसमें C2 की किसानों की मांग रही है वो तो नहीं हुआ है, लेकिन A2+FL जिसमें सभी लागतें थी और उन लागतों को जोड़ के जो लागत आती है उसके ऊपर फिर फार्मर को प्रॉफिट देने की प्रक्रिया को सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया MSP तय करने में। ये मैं देखता हूँ कि ये जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण

0: जो पढ़ाओ इस दिनों में जो कृषि क्षेत्र के लिए जो बड़े कदम, बड़े फैसले, बड़ी योजनाएं लागू हुई हैं, उनको हम इस तरह से देख सकते हैं।
1: सही कहा आपने कि ये चार प्रमुख योजनाएं हैं, हालांकि तो बहुत सारी योजनाएं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की कृषि से जुड़ी उपलब्धियों की चर्चा बिना पीएम किसान सम्मान की पूरी नहीं हो सकती। इस चर्चा में भी उसका बार बार जिक्र आया है। इस संदर्भ में 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन की याद आना स्वाभाविक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस समय उन्होंने जो कहा था, आइए उसे सुनते हैं।
2: साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है।
1: डॉक्टर बंसल, जो बायोटेक किसान और बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है या नीम कोटेड यूरिया की, उसने किसानों की स्थिति को बदलने में और खेती में उपज को बढ़ावा देने में किस तरह से भूमिका निभाई है, और क्या इससे किसानों की जमीनी हालात बदलने में बड़ी मदद मिली है या अभी देर लगेगी?
3: नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई, मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी, और अभी ये जो आप बायोटेक किसान की जो बात कर रहे हैं, ये एक नई स्कीम है जो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू की, और ये बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये है कि इसमें एक साइंटिस्ट और किसान, वैज्ञानिक और किसान की पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि ये जो बायोटेक स्कीम है, बायोटेक किसान स्कीम, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे जितने अलग रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ये जो हमारे छोटे किसान भाई बहन हैं उनसे जोड़ देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल सकता है। और खास करके जो इसमें ज्यादा तरह का जो काम हो रहा है वो ग्रास रूट लेवल पर जो चैलेंजेस है हमारे पानी को लेकर, सॉयल की स्ट्रक्चर या सॉयल को की हेल्थ को लेकर, या सीड या मार्केट की एक्सेस को लेकर जो इसमें जो चैलेंजेस हैं ग्रास रूट लेवल जो फार्मर्स इसको फेस करते हैं, उसके पर इसमें ज्यादा फोकस है, और इसको चलते हुए करीब 1,00,000 फार्मर्स वो इसमें यील्ड इम्प्रूवमेंट जो डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट्स वहां बायोटेक किसान के तहत लगाए गए हैं उसमें करीब 15% से 30% तक की बढ़ोतरी मिली है। तो 1,00,000 फार्मर्स को, और खुशी की बात यह है कि इसमें स्पेशली वुमेन फार्मर्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर ज्यादा एम्फेसिस है कि जो हमारी वुमेन फार्मर्स है उसको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और इसमें और प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी और चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम और आने वाले समय में बहुत ज्यादा इसको किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।
1: डॉक्टर साहब, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर भी रहे हैं। एक तरफ भारत इस तरह से तकनीकी क्रांति के जरिए, तकनीक और खाद के, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के जरिए खेती कर रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने एक और योजना शुरू की है जो हम कहते हैं जिसे नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन जो नेचुरल फार्मिंग का, जिसे हम लोग जीरो बजट भी खेती के नाम से जानते हैं। भारत में जीरो बजट खेती की बहुत चर्चा होती है, आजकल ऑर्गेनिक खेती के नाम से भी ये बहुत मशहूर हो चुकी है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भी शुरू किया है। इसे भी मोदी सरकार की कृषि उपलब्धियों का एक सोपान माना जाता है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: भारत में खेती को टिकाऊ बनाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत किसानों को ऐसी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर निर्भरता कम की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी थी। इसके लिए कुल 2481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1584 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 897 करोड़ रुपए है। प्राकृतिक खेती में स्थानीय संसाधनों, पशुधन और खेती से जुड़ी पारंपरिक जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गोबर और गौमूत्र से जीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक इनपुट तैयार किए जाते हैं। जीवामृत का इस्तेमाल मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जबकि बीजामृत का उपयोग बीजों के उपचार में किया जा सकता है। इस पद्धति का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना, खेती में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाना और बाहर से खरीदी जाने वाली कृषि सामग्री पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद करना है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के जरिए जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण और व्यावहारिक जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। किसान इन स्थानों पर प्राकृतिक खेती के तरीके समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि अपनी फसल तथा मिट्टी की जरूरत के अनुसार इन तरीकों को कैसे अपनाया जाए। इसके अलावा जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाली सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कृषि सखियों और प्रशिक्षित किसान मार्गदर्शकों के जरिए भी किसानों को जानकारी और तकनीकी सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की प्रोत्साहन सहायता 2 वर्षों तक देने का प्रावधान है। इस सहायता का इस्तेमाल प्राकृतिक खेती से जुड़े गतिविधियों, सामग्री तैयार करने और जैव इनपुट संसाधन केंद्रों से सामग्री प्राप्त करने में किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय की अगस्त 2026 में जारी जानकारी के अनुसार मिशन के तहत 24,031 समूहों में 11,81,000 हेक्टेयर शामिल किया गया है। इससे 24,69,000 किसानों को लाभ पहुंचने की जानकारी दी गई है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी मिशन में प्रावधान किए गए हैं। इनमें सरल प्रमाणन व्यवस्था और साझा ब्रांडिंग शामिल है। इन प्रयासों से उत्पादों की पहचान बनाने और किसानों को बाजार से जोड़ने में सहायता मिल सकती है। हालांकि प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए किसानों को सही प्रशिक्षण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सलाह और उपज के लिए उचित बाजार मिलना जरूरी है। खेती के तरीके में बदलाव करते समय मिट्टी, मौसम और फसल की जरूरतों को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से खेती की ऐसी पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है जिनमें उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए।
1: ये दोनों परंपराएं एक साथ चल रही हैं, तो इन दोनों में तारतम्य कैसे बिठाया जा सकता है और किस तरह से ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
3: ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है और दोनों साथ साथ चल सकती हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां हम ये जो नेचुरल फार्मिंग है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे हमारे सिक्किम की अगर हम बात करें या हिमाचल में बहुत सी और स्टेट्स हैं उसकी, अगर हम बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरियाज हैं जिसकी हम जिसमें हम बात करें। लेकिन जहां हमें हाई प्रोडक्शन जोन जो हमारे हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, या और हमारे मध्य प्रदेश में है, या और हमारे महाराष्ट्र गुजरात में है, वहां जो अगर हमें हाई प्रोडक्शन लेनी है तो मैं तो ये समझता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग एक अपने भारतवर्ष में कहीं जो अलग स्टेट्स में हो रही है, और इन एरियाज में हम लोग जो नई तकनीक को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों स्कीम्स का भारतवर्ष के अपने फार्मर्स को इसमें फायदा मिल सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह की हम प्रोडक्ट या वैरायटीज बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेचुरल फार्मिंग यही है कि जिसमें हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें या ना करें, तो हम ये भी एक तरफ से रिसर्च चल रही है कि बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स को भी हम जितना ज्यादा उसको यूज करें उससे सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, सॉइल में कार्बन कंटेंट इंप्रूव होता है, जो कि एक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ये भी एक हिस्सा है कि हम सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाएं। तो उसमें भी ये नई जो टेक्नोलॉजी है उससे उससे फायदा होगा। और जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जिनों मेल्टिंग जो बात कर रहे हैं उसमें हम उसी तरह की क्रॉप्स को बनाना चाहते हैं जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज हो, कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज हो, और कम से कम वाटर से या पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर हम बात करें तो दोनों टेक्निक्स में मुझे लगता है कि हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। और मुझे ये उम्मीद है कि प्रोत्साहन जो दिया गया है नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत अच्छा है और समझता हूँ बहुत जरूरी भी है।
1: हरवीर जी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई थी, मोदी सरकार ने शपथ लिया था, तो उस समय उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। वह लक्ष्य क्या हासिल किया जा चुका है और वो किस तरह से हासिल किया गया है?
0: देखिए, ये जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो घोषणा थी
1: जी,
0: वो प्रधानमंत्री ने 2016 के आसपास की थी कि हम 5 साल में करेंगे, 2022 उसका लक्ष्य रखा गया था। उसके लिए एक अशोक दलोई जी भारत सरकार में अधिकारी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सारी रिपोर्ट अपनी सबमिट की। और इसी तरह से उसका कोई एग्जैक्टली कोई इवेल्युएशन किस पैरामीटर के हिसाब से करेंगे ये अभी ऐसा तो संभव नहीं होता, क्योंकि तमाम किस्म की फसलें हैं, तमाम किस्म के उत्पाद हैं। तो उसमें ये जरूर है कि जो 4.5% की दर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में हासिल की गई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी। इसके पहले के जो दशक रहे हैं उनमें 4% से नीचे की ही जो विकास दर कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है उसमें हासिल की गई थी। तो ये एक बड़ा बूस्ट रहा है एग्रीकल्चर के लिए ग्रोथ का लंबे समय के बाद, क्योंकि इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी एवरेज जब 10 साल का निकालते हैं वो इससे थोड़ा नीचे ही था। जो नंबर्स अवेलेबल है भारत सरकार के कृषि उत्पादन और GDP को लेकर के, तो ये तो बिल्कुल सही है कि तमाम सारी फसलों के दाम बढ़े हैं, जिसमें खासतौर से जो दालें हैं और तिलहन है उनके MSP में काफी बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्न की जो MSP है वो भी तेजी से बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम सारे जो दाम है वो जब किसानों को मिलता है तो उनकी आमदनी में एक बड़ा बदलाव आया है। उसमें ICAR का जो IRI संस्थान है उन्होंने एक स्टडी भी की थी इसके बारे में, जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरीके से किसानों की आमदनी में लक्षित दिशा में बढ़ोतरी हुई।
1: डॉक्टर बंसल, मोदी सरकार की एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू NMEO, जिसमें तिलहन और दालों के जो फसल है उसकी प्रमोशन की बात होती है, उसको प्रमोशन करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो क्या इसमें भी कोई बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसर्च हो रहे हैं, क्या जीनोम बदलने की तैयारी हो रही है? क्योंकि भारत में खासतौर पर दलहन की कमी रहती है और भारत का एक पूरा हिस्सा जो है वो दलहन फसलों पर, तो इसमें दलहन की फसलों का बहुत ज्यादा मांग रहती है, बहुत ज्यादा उनकी खपत रहती है। तो भारत को हर साल दाल की आयात के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, दाल का आयात करना पड़ता है, खासतौर पर ब्राजील और कनाडा जैसे देशों से। तो हमारे यहाँ दलहन की फसलों को उनके जीनोम को विकसित करने के लिए भी कोई काम हो रहा है क्या?
3: हाँ, दलहन की फसलों पर पूरा भारत वर्ष का जितने भी हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं ICAR में, खास करके जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, तो दलहन पर ही फोकस जो रिसर्च करता है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी जैसे IRI में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, वहां भी PGNP पर जो अरहर दाल है उस पर बहुत तरह की रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी एरिया में चल रही है। लेकिन यहाँ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह की टेक्नोलॉजी है जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एक होता है कि हम GM फसलें तैयार करते हैं जो BT कॉटन जैसे तैयार हुई, दूसरी जैसे मैंने जीनोम एडिटिंग की बात की जहां हम जीनोम में बदलाव करते हैं, खुद जो जो क्रॉप है उसी में हम बदलाव करते हैं। तो PGNP को लेकर जो हमारे यहाँ पोड बोरर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कीड़ा खा जाता है और उससे प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, तो उसके लिए एक GM PGNP अरहर उसके जो जीनोम में बदलाव करके जिसमें एक बैक्टीरिया से उसमें जीन डाला है जैसे कि BT कॉटन में डाला गया था, और वो अभी हमारे रेगुलेटरी सिस्टम में हमारे एक सिस्टम है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, वहां बायोसेफ्टी रेगुलेशन के लिए वो काम आगे प्रोग्रेस हो रहा है। और इन द मीनवाइल जो हमारे बाकी जो पल्सेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो करीब 1 टन पर हेक्टेयर है जो कि बहुत कम है, और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग, क्योंकि एरिया बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है जबकि एरिया बढ़ाने से हमारे यहाँ दलहन की प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन अभी जिससे प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा दी है, नीति आयोग ने दलहन पर और तिलहन पर रिपोर्ट्स जारी की हैं स्पेशली पिछले साल ही, जिसमें ये बताया गया है कि हम 2030 तक किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को भी साथ लेते हुए क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज जो और हमारी एफिशिएंट वैरायटीज हाई यील्डिंग वैरायटीज खास करके दलहन और तिलहन दोनों में ही अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उसमें हम इनको एक टन से आगे

0: कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 40 क्रॉप्स में हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट बना है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, जिसमें जीनोम बदलाव की बातचीत बराबर हो रही है, उसमें 40 क्रॉप्स में जो मेजर एम्फेसिस है वो दलहन पर है, तिलहन पर, दोनों पर है। तिलहन को साथ लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं कि हम लोग करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल हर साल इंपोर्ट करते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको चलते हुए हमने जीएम मस्टर्ड भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड भी बनाया है, जिसकी प्रोडक्टिविटी 25-30% ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो हमारे यहाँ अभी रेगुलेटरी सिस्टम से क्लियरेंस मिली है, लेकिन अभी वो लीगल रिव्यू में है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसके इसको सपोर्ट कर रही है कि हम उसको जल्दी से जल्दी किसानों तक लेकर आए, ताकि इस नई टेक्नोलॉजी का जब तक हम फायदा नहीं लेंगे हम बहुत ज्यादा आगे शायद बढ़ना मुश्किल होगा। तो मेरा एक ये भी एक पॉइंट रहेगा कि जबकि भारत की बहुत सपोर्ट है, नई नई स्कीम्स हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो कर रहे हैं, 500 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो किस्में तैयार हो चुकी हैं, जो हमें खेतों में जो हमारी बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स हो चुकी हैं, उनको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए अगर मौका मिलेगा तो फार्मर्स किसानों के लिए और देश के लिए सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ने के लिए, विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए बहुत फायदा।
1: केंद्र सरकार की कृषि उपलब्धियों में हाल ही में एक और योजना जुड़ी है, नमो ड्रोन दीदी। आइए सुनते हैं इसी योजना पर एक रिपोर्ट।
2: खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे किसानों को कृषि सेवाएं दे सके और अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाश सके। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 1261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराना है। इनका प्रमुख इस्तेमाल खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाना है। योजना के तहत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए लागत का 80% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए है। शेष राशि की व्यवस्था के लिए पात्र समूहों के क्लस्टर स्तर के संघ कृषि अवसंरचना निधि के तहत ऋण ले सकते हैं। इस ऋण पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 3% ब्याज सहायता का प्रावधान भी है। ड्रोन उपलब्ध कराने के साथ साथ इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चयनित समूह की एक सदस्य को ड्रोन पायलट का 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, ड्रोन चलाने का अभ्यास और छोटी मोटी मरम्मत तथा रख रखाव की जानकारी शामिल है। समूह की दूसरी सदस्य या परिवार के किसी सदस्य को ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल करने से खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय में करने में मदद मिल सकती है। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। किसानों को हर बार अपना ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं होती, वे जरूरत के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूहों से किराए पर कृषि सेवाएं ले सकते हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण महिलाओं को तकनीक आधारित रोजगार से जोड़ना है। महिला समूह ड्रोन के जरिए किसानों को सेवाएं देकर आय अर्जित कर सकते हैं। योजना को लागू करने में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग और प्रमुख उर्वरक कंपनियों की भूमिका है। इन संस्थाओं के बीच समन्वय के माध्यम से ड्रोन की उपलब्धता, प्रशिक्षण और कृषि सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि मंत्रालय की फरवरी 2026 में जारी जानकारी के अनुसार प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूहों को कुल 1094 ड्रोन वितरित किए थे। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत दिए गए थे। ड्रोन से मिलने वाले लाभ को बढ़ाने के लिए नियमित काम, उपकरणों का रखरखाव, परिवहन की सुविधा और किसानों को उचित लागत पर सेवाएं मिलना जरूरी है। महिला समूहों को पर्याप्त कृषि कार्य उपलब्ध होने से ड्रोन का उपयोग बढ़ाने और आय अर्जित करने में मदद मिल सकती है। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए कृषि में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को एक साथ बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना और किसानों तक आधुनिक कृषि सेवाएं पहुंचाना है।
1: हरवीर

0: जी एक चीज और है कि जो प्रधानमंत्री ने श्री अन्न की बात की, मोटे अनाजों को एक तरह से हम लोगों ने जो कृषि क्रांति हुई है, हरित क्रांति जो हुई है उसको भुला दिया था, और मोटे अनाजों के साथ एक बड़ी बात यह है कि उसमें कीटनाशक और रासायनिक खादों की जरूरत कम पड़ती है, पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। तो ये किस तरह से चेंज ला रहा है भारतीय कृषि की दशा को, दिशा को?
1: असल में ये बात सही है कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, जिनको हम पहले मोटे अनाज कहते थे, उसके बाद उसको कैटेगराइज किया गया, जो मिलेट्स हैं उसमें श्री अन्न जो है उनका एक कैटेगरी ठीक से परिभाषित की गई और उनका एमएसपी में बढ़ोतरी की गई, और ये न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब एक तरीके से ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर भोजन है, और इसलिए उसको प्रमोट करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस तरीके के जो उत्पाद हैं उनके मांग बढ़ी, उनका जो उनसे बनने वाले जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनकी संख्या बढ़ी, और इनके जो उगाने वाले लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर ये मार्जिनल लैंड्स जहां पर है, जहां बहुत ज्यादा सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, वहां पर इस तरीके के ये खाद्यान्न जो है उनका उत्पादन होता रहा है, तो उन किसानों के लिए ये एक बड़ा मौका लेकर के आया है। और अगर आप देखेंगे कि हमारा जो भोजन है उसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, और उसमें इस तरीके के जो अन्न है उनकी जो मात्रा है बढ़ी है, और उनको प्रति लोगों का रुझान आया। ये इसलिए आया क्योंकि जिस तरीके से इनको बेहतर पोषक तत्वों के रूप में एक तरीके से पेश किया गया और कैंपेन चला गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर, तो उसका फायदा किसानों को मिला। आपकी बात सही है कि इस तरह के जो अन्न है उनमें, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सिंचित क्षेत्र में नहीं होते, और उसमें जो उर्वरक हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनकी भी जरूरत कम पड़ती है, और कीटनाशकों की लगभग ना के बराबर जरूरत होती है, उसमें इस्तेमाल ही नहीं होता ज्यादातर मामलों में, तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है। और ये क्योंकि उससे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी घटती है, अगर जिसमें आप ज्यादा उर्वरक और ज्यादा रसायन इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी लागत भी कम रहती।
0: अब समय चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा है। भारत की कृषि और किसानों की हालत बदलने की दिशा में मोदी सरकार की योजनाओं पर इस सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 28वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
3: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ नीतू और शुरुआत हो चुकी है गाने की, क्योंकि बाहर का जो मौसम है ना वो भी अचानक से बदल गया है, तो इस गाने के साथ उस मौसम का आनंद उठाइए।

ऐसी हवाओं का मजा ना गांव में सबसे ज्यादा आता है, लेकिन गांव का जीवन उतना भी आसान नहीं है क्योंकि शहरों में बहुत तरह की सुविधाएं होती हैं। और खासतौर पर जब हम गांव की बात करते हैं तो महिलाओं का जीवन वहां पर और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, जो कि मनाया जाता है दुनिया भर के कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं के बहुमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की स्थापना 2007 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करना है ताकि उनके अधिकारों, भूमि पर मालिकाना हक, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

0: आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है भारतीय सेना का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर डे। ईएमआई कोर के सैनिकों और इंजीनियरों को सेना के तकनीकी योद्धा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ईएमई जो कोर डे है वो युद्ध और शांति दोनों के समय में टैंक और रडार, मिसाइल प्रणालियों और अत्याधुनिक संचार उपकरणों और 2400 घंटे क्रियाशील उनको रखते हैं ये ईएमई कोर के जो सैनिक हैं। 1943 में इस कोर को स्थापित किया गया था और इसे भारतीय सेना की टेक्निकल बैकबोन माना जाता है। इसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो आज हम याद कर रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और उन्होंने उनके बारे में हम कितनी ही बात कर लेना वो कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए। भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र को उन्होंने ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सादा जीवन, ऊंचे विचार और युवाओं के प्रति प्रेरणादायक दृष्टिकोण के कारण ही वो हर दिल में बसते हैं। आपने उनका मेमोरियल देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो दिल्ली हाट जाइए, उसके बैक साइड पर ही आपको वो मेमोरियल दिख जाएगा। आप जाइए, जाकर देखिए और उनके विचारों से, उनके जीवन शैली से वहां पर आप परिचित हो सकते हैं। फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ।
1: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
4: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
5: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
6: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
0: आकाशवाणी FM गोल्ड पर म्यूजिकल दिल लगी, मैं हूं नीतू और बस समय जा रहा है तो चलते चलते आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बता देती हूं, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत जो पात्र हैं वो उन परिवारों को सम्मानजनक आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं, जो मूल सुविधाएं हैं वो शामिल होती हैं। इसका लक्ष्य यही है कि ग्रामीण भारत का हर जरूरतमंद परिवार सुरक्षित, पक्का और सम्मानजनक घर पा सके, उसमें रह सके, उसका जीवन स्तर बेहतर हो और सबके लिए आवास का सपना पूरा हो सके। फिलहाल नीतू को इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
5: माझ्या बाईकची नॉकिंग कमी झाली आहे।
6: माझ्या कार मधून आता आधीपेक्षा कमी प्रदूषण होतं।
7: माझं स्कूटर काय मस्त पिकअप देते।
8: गाडी कोणतीही असो, पेट्रोल E20 असेल तर नॉकिंग कमी होतं, प्रदूषण 40% घटते आणि हाय ऑक्टेनमुळे अमेझिंग पिकअप मिळतो। तुमची गाडी E20 साठी 100% सुयोग्य आहे। भारत सरकारचा उपक्रम तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ जारी।
9: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ज्या इंधनावर 15 ते 20 वर्ष संशोधन झालंय, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, ARAI, SIMA, BIS सारख्या संस्थांनी तिला परखून घेतलंय नीती आयोगाने।

0: इन्वेस्टर जागरूकता उपक्रम। अधिक माहितीसाठी सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट वर विजिट करा किंवा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करा।
1: भावात दररोज 6 ते 7 कोटी वाहनात इंधन भरलं जातं। देशात 23 कोटीहून अधिक गाड्या 2.5 वर्षांपासून E20 वर चालत आहे।
2: सगळं तर एकदम व्यवस्थित चाललंय।
1: तेच तर, काही समस्या असती तर आतापर्यंत समोर आली असती। अफवांवर नाही, तथ्यांवर विश्वास ठेवा।
3: भारत सरकारचा उपक्रम तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
4: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्या इंधनावर 15 ते 20 वर्ष संशोधन झालंय, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, ARAI, SIMA, BIS सारख्या संस्थांनी तिला परखून घेतलंय, नीती आयोगाने स्वतः तिची अंमलबजावणीचं धोरण तयार केलंय,
3: तर मग ती विश्वासार्हच असणार ना?
1: अगदी बरोबर। E20 तसंच वैज्ञानिक दृष्ट्या प्रमाणित आणि सुरक्षित इंधन आहे। भारत सरकारचा उपक्रम तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
6: FM Gold, खरा सोना।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे या E20 ला घेऊन काय कन्फ्युजन आहे?
2: मला तर फुल कॉन्फिडन्स आहे, तज्ञांनी टेस्ट केल्यावर कोणत्याही इंजिनची झीज आढळली नाही। E20 मुळे इंजिन नॉकिंग कमी होतं आणि हाय ऑक्टेनमुळे पिकअपही अमेझिंग मिळतो।
1: मग तर नो कन्फ्युजन, ओनली कॉन्फिडन्स।
2: भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
3: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्या इंधनावर 15 ते 20 वर्ष संशोधन झालंय, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, ARAI, SIMA, BIS सारख्या संस्थांनी तिला परखून घेतलंय, नीती आयोगाने स्वतः तिची अंमलबजावणीचं धोरण तयार केलंय,
1: तर मग ती विश्वासार्हच असणार ना?
2: अगदी बरोबर। E20 तसंच वैज्ञानिक दृष्ट्या प्रमाणित आणि सुरक्षित इंधन आहे। भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
5: खरा सोना।

0: अहो गुलजार नार श्रृंगार करुन खूप नटली
1: चले चमक चमक दावे धमक धमक चले चमक चमक दावे धमक पाहुन मते फुटली

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: शुरू करो या इन्वेस्टिंग सा धड़ा।

0: की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों का सफर आसान होगा।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा। कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं का उद्देश्य
1: इसी साल अगस्त में लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे प्रशासन के साथ साथ न्याय व्यवस्था भी सुगम बनेगी। साथियों, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी कई नए अवसर करीब आ रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे हो या लोकल प्रोडक्ट्स हो, आज ऑनलाइन बिजनेस आय के नए रास्ते खोल रहा है। इसलिए हमने लद्दाख और दूरदराज के क्षेत्रों में भारत नेट और हाई स्पीड इंटरनेट का विस्तार किया है। सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो, युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और स्थानीय उद्यमी देश दुनिया के बाजारों से जुड़ सके, इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। साथियों, हमारा विशेष ध्यान लद्दाख की नई पीढ़ी पर है। यहां के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे। साथियों, लद्दाख में खेलों की भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यहां के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि यहां के युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं मिले और वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल करें। साथियों, लद्दाख में आप सभी अपने परिश्रम से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेहतरीन होते हैं। आप तो जानते ही हैं, मैं जब विदेशी मेहमानों से मिलता हूं तो अक्सर लद्दाख में बनी चीजें उन्हें उपहार में देता हूं और उन्हें आपके बारे में भी जरूर बताता हूं। मैंने जर्मनी की चांसलर को, स्वीडन के प्रधान

प्रधानमंत्री को और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जी को लद्दाख में बने प्रोडक्ट उपहार में दिए हैं। यहां की पश्मीना, सी बकथोन और लोकल हैंडीक्राफ्ट, खुबानी जैसे फल, इनमें व्यापार का कितना बड़ा पोटेंशियल जुड़ा है। और इसलिए ही हमने लद्दाख की खुबानी को जीआई टैग दिया। आज इसकी दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है। हमारा प्रयास है यहां के उत्पादों को नए बाजार मिले, उनकी बेहतर ब्रांडिंग हो और उनका लाभ सीधे उत्पादकों तक पहुंचे। हमारा विशेष ध्यान चांगपा समुदाय के पशुपालकों पर भी है। उनकी मेहनत और पारंपरिक हुनर से जुड़ी पश्मीना की पहचान को और मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख में अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फूलों की व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यहां के प्राचीन मठ, बौद्ध परंपराएं और यहां के उत्सव इन्हें संजोना और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है। इस दिशा में पूज्य कुशोक बकुला रिनपोछे जी, उनका योगदान हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि दुनिया भर के लोग लद्दाख की संस्कृति और परंपराओं से परिचित हो। इसी मिशन को आगे रखकर आज लेह में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का लोकार्पण हुआ है। इससे लद्दाख की इस प्राचीन विरासत को सहेजने के प्रयासों को और बल मिलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी इस विरासत को जान सकेगी और दुनिया से आने वाले लोग भी लद्दाख के समृद्ध इतिहास से परिचित हो सकेंगे। साथियों, मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर लद्दाख को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर विकास के अनेक कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुलेह।

0: होते हैं जिन्हें आप संपर्क किया जा सकेगा।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz और अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन।

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और वक्त हो गया है कलाकार बेमिसाल का। मैं हूँ रुचिका आपके साथ और आज कलाकार बेमिसाल में हम बात करेंगे किनकी। जी हाँ, जाने माने संगीतकार शंकर जी की। जैसा कि आपको पता है, ये बेहद मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन जी की, लेकिन आज हम बात करेंगे कलाकार बेमिसाल के जरिए शंकर जी की। शंकर सिंह रघुवंशी उनका पूरा नाम था, हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्होंने अपनी जोड़ी संगीतकार जयकिशन के साथ मिलकर बनाई और शंकर जयकिशन के नाम से प्रसिद्ध हुए और SJ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यूं तो कई ऐसी हिंदी सिनेमा में संगीतकारों की जोड़ियां आई, लेकिन शंकर जयकिशन का नाम आज भी खास सम्मान के साथ लिया जाता है। इस जोड़ी ने आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में यादगार संगीत दिया। और आपको बता दें कि इस जोड़ी ने 170 से भी ज्यादा फिल्मों में शानदार संगीत दिया। तो चलिए, फिलहाल इस जोड़ी की हमने बात की है, शंकर जी की हमने बात की है, तो एक गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। और आपको बता दें कि आज जयंती हम मना रहे हैं शंकर साहब की, संगीतकार शंकर जी की, तो उनके गीतों की हम बात करेंगे, उनके जीवन की हम बात करेंगे, फिल्मों की बात करेंगे, संगीत और गीत की हम बात करेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप बने हुए हैं। और आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं संगीतकार शंकर जी की। हिंदी सिनेमा में यूं तो कई ऐसी संगीतकार जोड़ियां आई, लेकिन शंकर जयकिशन का नाम आज भी खास सम्मान के साथ लिया जाता है। इस जोड़ी ने आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में यादगार संगीत दिया। 15 अक्टूबर 1922 को जन्मे शंकर सिंह रघुवंशी को बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी थी। वे तबला बजाने में माहिर थे और बाद में उन्होंने दूसरे वाद्य यंत्र भी सीखे। जब वे मुंबई आए तो मुंबई आने के बाद उनका जुड़ाव पृथ्वी थिएटर से हुआ, और जिसकी स्थापना पृथ्वीराज कपूर ने की थी। यहां शंकर को संगीत और थिएटर को करीब से समझने का मौका मिला और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई थी जयकिशन से, जो अपने लिए संगीत की दुनिया में काम तलाश रहे थे। तो इन दोनों की मुलाकात कुछ इस तरह से ही हुई थी। और आपको बता दें कि पृथ्वी थिएटर में काम करते हुए शंकर और जयकिशन की दोस्ती बेहद गहरी हुई थी। दोनों की संगीत को लेकर समझ और एक दूसरे के साथ तालमेल ने उन्हें एक टीम के तौर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। और इसी दौरान उनकी मुलाकात राज कपूर से भी हुई और आगे चलकर राज कपूर की फिल्मों के साथ शंकर जयकिशन का नाम कुछ इस तरह से जुड़ा कि उनकी संगीत जोड़ी हिंदी सिनेमा की पहचान बन गई।

0: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है। दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हमने बात की संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी जी की। आज वे अपनी जयंती मना रहे हैं और जब हम शंकर जी की बात करते हैं तो जयकिशन जी की बात करना तो लाजमी सी बात है। तो ये जोड़ी बेहद मशहूर थी और इन दोनों ने मिलकर 170 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और ऐसा संगीत दिया जो आज भी एकदम ताज़ा महसूस होता है। आपको बता दें, इन दोनों ने उस दौर के लगभग सभी बड़े गायक और गायिकाओं के साथ काम किया, जिनमें मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, किशोर कुमार, तलत महमूद, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले और शारदा जैसे गायिकाएं शामिल हैं और साथ साथ गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी के साथ तो इन्होंने ऐसे गीत दिए हैं जो आज भी हम नहीं भुला सकते।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किया, जिनकी लागत 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम मजहब इख्तियार करने वाले हिंदू अफराद पसमानदा तबकों के रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के हुक्म को बरकरार रखा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत नक्सलिज्म से मुतासर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रही है। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4000 मकानात फराहम किए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के दिफाई साजो सामान की बरामदात की मालियत पिछले 13 साल में 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में 23 साल से कम उम्र की आलमी चैंपियनशिप में यूनान रोम फाइनल्स में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और मुल्क को वक्फ किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते में कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, सकाफती विरसे को तहफ़ुज़ फराहम करना और पानी की यकीनी फराहमी में इजाफा करना है।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इफ्तिताह किए गए नए प्रोजेक्टों में लेह में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे की नई मुसाफिर टर्मिनल इमारत शामिल है, जिसे 640 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। ये जदीद टर्मिनल 23,800 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर मोहित है और ये सालाना 35 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम कर सकता है। वजीर आजम ने सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ की जानिब से तामीर करदा 298 किलोमीटर तवील निम्मू पदुम दारचा सड़क को भी मुल्क को वक्फ किया। जनाब मोदी ने 9 मेगावाट वाले हानू छोटे पनबिजली प्रोजेक्ट और 66 किलो वाट की डबल सर्किट दा हनू खालतसी तरसील लाइन का भी इफ्तिताह किया।
1: आज हानू की जल विद्युत परियोजना और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण हुआ है। हम सभी जानते हैं कि बिजली की भरोसेमंद व्यवस्था से रोशनी तो आती है, लेकिन रोशनी से सिर्फ घर नहीं जीवन भी रोशन हो जाता है। जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। गांवों में कितने नए काम संभव हो जाते हैं, हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा।
0: ये प्रोजेक्ट बिजली से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करेंगे, लद्दाख के बिजली नेटवर्क को बेहतर बनाएंगे। जनाब मोदी ने लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में तामीर करदा 40 आबी जखायर का भी इफ्तिताह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हिंदुत्व से इस्लाम या किसी दिगर गैर हिंदू मजहब में मुंतकिल होने वाले अफराद पसमानदा तबकों के जुमरे के तहत रिजर्वेशन के फायदों का अज खुद दावा नहीं कर सकते। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की एक दरखास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की एक बेंच ने कहा कि किसी शख्स की पहली वाली जात से मुतालिक समाजी पसमानदगी की परेशानियों को तब्दीली मजहब के बाद जारी नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर हिंदू समाजी निजाम में दाखिल हो जाने से किसी नोटिफाइड पसमानदा तबके वाली बिरादरी में इसकी मुसद्दका रुकनियत नहीं बन जाती। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत

0: बीजेपी की खवातीन अरकान पार्लियामेंट के एक वफद ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और जेएनयू में मुबैना जिनसी हरासानी के एक मामले के सिलसिले में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट बिमोल अकोयजम के मुतालिक एक मेमोरेंडम उन्हें सौंपा। नामानिगारों से बात करते हुए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट दग्गू बाटी पुरंदेश्वरी ने कहा कि जेएनयू की दाखिली कमेटी ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट को कसूरवार पाया है। उन्होंने मजीद कहा कि वफद ने स्पीकर पर जोर दिया कि वह इस मामले को अखलाकियात से मुतालिक कमेटी को भेजें और इस बात का जायजा लें कि आया कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट को लोकसभा मेंबर की हैसियत से खिदमात अंजाम देनी चाहिए या नहीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता आज़म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तذکرہ कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अहम मुहिम के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की एक अहम मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था। यह मुहिम बेटियों को बाइख्तियार बनाने और हरियाणा में सिन्फी तनासुब को बेहतर करने के सिलसिले में काफी अहम साबित हुई। जिन जिले के बीबीपुर गांव के साबिक सरपंच और बेटी के साथ सेल्फी मुहिम शुरू करने वाले सुनील जगलान ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल सभी शोबों में बेटियों की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत के सिलसिले में अहम साबित हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुनील जगलान की इस कोशिश का तस्करा मन की बात के अपने प्रोग्राम में किया था, जिससे ये एक मुल्कगीर तहरीक बन गई। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया भर के तकरीबन 100 ममालिक को अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई साजो सामान बरामद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की दिफाई बरामदात 2013-14 में महज 686 करोड़ रुपए से 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। आज नई दिल्ली में टाइम्स नाउ दिफा कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत ने मुख्तलिफ हथियारों के मामले में 90% से ज्यादा खुद किफालत हासिल कर ली है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को एक अहम ताकत बनाने के लिए अपनी नायाब साइंसी महारत को वक्फ किया और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से आला तरीन जमहूरी इकदार बरकरार रखी। आज लास वेगास में भारत के कुश्ती खिलाड़ी विश्वजीत रामचंद्र मौर्य ने अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप में ग्रेको रोमन के फाइनल में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। मर्दों के 55 किलोग्राम के जुमरे में मुकाबला कर रहे विश्वजीत आखिरी सेकंड में 12-13 के मामूली फर्क से जॉर्जिया के कुश्ती खिलाड़ी से हार गए। ये अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप के ग्रेको रोमन के फाइनल में भारत का पहला मुकाबला और अब तक का पहला चांदी का तमगा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किया, जिनकी लागत 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम मजहब इख्तियार करने वाले हिंदू अफराद पसमानदा तबकों के रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के हुक्म को बरकरार रखा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत नक्सलिज्म से मुतासर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रही है। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 मकानात फराहम किए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के दिफाई साजो सामान की बरामदात की मालियत पिछले 13 साल में 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मौर्य ने लास वेगास में यूनान रोम फाइनल्स में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 5 major development projects worth over 3,300 crore in Ladakh. Hindus converting to Islam and other religions cannot claim backward class reservation, says Supreme Court, upholds Madras High Court order.

0: मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31/3/2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते।

0: मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वॉर। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
4: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920

0: 25930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात यह रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
1: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूर दराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
3: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी वो सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। आज शशिकांत ओक यांचं गायन आपल्याला ऐकवत आहोत। त्याने गायलेला राग धनश्री, विलंबित आणि द्रुत ख्यालाची बंदिश 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची साथ शंतनू किंजवडेकर यांनी आणि हार्मोनियमची साथ विनोद पडये यांनी केलेली आहे। ऐकूया शशिकांत ओक यांनी गायलेला राग धनश्री।

जय अम्बे, जय भवानी, जय अम्बे, जय भवानी, जय अम्बे। 100.1 FM गोल्ड एंड न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर गरवा गुजरातियों नो गर्व कार्यक्रम गीत गुर्जरी मा आजे अपनी साथे छे आपनी आरजे आरती। सौ प्रथम हूँ आप सौ श्रोताजनों श्रीफळना जड़ जेवु मीठू भीनू सन्मान करू छु। आरती विना आद्य शक्ति नी भक्ति कई रीते पूर्ण थाय, स्व रचित पंक्तियों रजू करू छु के पांच में नौरते पांच पांच दीवड़ा मा पांच पांच ज्योतु प्रगटावी लावी छु मानी आरती। पांच में नौरते पांच पांच दीवड़ा मा पांच पांच ज्योतु प्रगटावी लावी छु मानी आरती। पंच आरती नी पांच पांच लाल पीड़ी ज्योतनी रोशनी थी शोभे साचा गिना दीवड़ा नी आरती। घंट शंख नादे ने ताड़ियों ना ताले आवो करिए आद्य शक्ति अम्बे का अम्बानी आरती। पांचमा दिवस ना आराध्य देवी स्कंद माता अने करिए रंग बेरंगी झाकम जोड़ गरबानी आरती, झाकम जोड़ गरबानी आरती, झाकम जोड़ जगमगता गरबानी आरती।

आप छो गीत गुर्जरी कार्यक्रम मा आपनी आरजे आरती साथे। मित्रों हवे नवरात्रि बराबर जेवी जामी छे। आप गरबा रमवा क्या जाओ छो अने नवरात्रि केवी रीते उजवो छो ए जणाववा अने साथे साथे आपना कुळदेवीनुं नाम जणाववा करो डायल नंबर 0224515 4134 अने 0224515 4135। मित्रों दरेक शक्ति पीठ मां सती ना रक्षण माटे शिवजी भैरव रूपे बिराजमान छे। प्रथा प्रमाणे प्रथम जे ते शक्ति पीठ ना भैरव ना दर्शन करी शिवजी थी सती ना दर्शन माटे नी रजा लेवाय अने पछी ज सती ना दर्शन थाय। तो आवो सौ प्रथम भैरव जी ने वंदिए

वात करिए अट्टहास शक्तिपीठ नी के जेने फुल्लारा शक्तिपीठ तरीके पण ओळखवामां आवे छे, जे पश्चिम बंगाल मां बीरभूम जिल्ला ना लाभपुर स्टेशन पासे ना दक्षिण दिही गाम मां आवेलू छे। अही माता सती नो नीचलो होठ पड्यो हतो। अट्टहास नो अर्थ मोटे थी हसवू अथवा अट्टहास्य थाय छे, एटले के मन मूकीने हसवू, खड़खड़ाट हसवू, खुलीने हसवू। कहेवाय छे के सती मातानुं स्वरूप खूब ज विशाळ हतुं, एटले सतीना अंगो पण विशाळ विशाळ हता। अही सती माताना होठे मोटी शिलानुं रूप लई लीधुं, जे शिलाने सिंदूर लगावीने अही माताना विशाळ होठ पूजवामां आवे छे। शिला आ मोटी शिला पर लाल चटक विशाल काय होठ खरे खर दर्शन करीने धन्य थई जवाय। आ मंदिर छे ने आजे शक्तिपीठ छे ई जंगल वच्चे कुदरतना खोड़ामां आवेलू छे। कुदरतना खोड़ामां ही मां बिराजमान छे। चारे बाजू लीलीछम हरियाली, रंगीन पुष्पो, रंगबेरंगी पतंगियाओ ने पक्षीओनो कलबलाट मन मोही ले छे। अही माताजी ने फुल्लरा देवी तरीके पूजवामां आवे छे। फुल्लरा एटले जे फूलेला खीलेला फूल जेवी दैवी आभा धरावे ते। अही फागण मास दरमियान फुल्लरा मेळो योजाय छे, जेमां रंगबेरंगी रंगोनो नजारो जोवा जेवो होय छे। आ मेळामां वडीलो द्वारा मंच परथी आ मंदिर साथे संकळायेली कथा, वार्ता, चमत्कारोनी વાત થતી હોય છે। અહીંની પ્રાકૃતિક શાંતિ થકી ધ્યાન સાધના માટે આ શક્તિ લોકોને આકર્ષિત કરે છે। આ મંદિરની નજીક એક તળાવ આવેલું છે। લોકવાયકા છે કે ભગવાન રામ દ્વારા દેવી દુર્ગાની પૂજા માટે અહીંથી જ હનુમાનજીએ 108 કમળ એકત્ર કર્યા હતા। जंगल विस्तार ना कारणे मंदिर सांजे 7 वागे बंद थई जाए छे। बहु बहु तो सांजे 4-5 वाग्या सुधी ज यात्रिको आवे छे। માતાની રક્ષા માટે અહીં ભગવાન શિવ વિશ્વેશ્વર ભૈરવ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે।

100.1 FM गोल्ड पर आप छो गीत गुर्जरी कार्यक्रम ना कार्यक्रम में आपनी आरजे आरती साथे मैं आज ये सवाल करियो छे सवाल करया छे के आप गरबा रमवा क्या जाओ छो नवरात्रि केवी रीते उजवो छो तथा आपना कुलदेवी नु नाम जणाववा करो डायल नंबर 0224515 4134 अने 0224515 4135। हवे वात करिए नंदीपुर शक्तिपीठ नी के ज्यां बिराजमान शक्ति ने माता नंदीकेश्वरी अथवा नंदिनी माता अथवा नंदुर माता पण कहेवाय छे। आ शक्तिपीठ पण पश्चिम बंगाल ना बीरभूम जिल्ला मां ज आवेलू छे, जे पहला नंदीपुर गाम तरीके ओळखातु अने हवे सेंथिया रेलवे स्टेशन नी एकदम नजीक आवेलू छे। सेंथिया शहर अहीनी व्यापारी राजधानी छे। अहीना पुजारी जी पासे थी जानवा मळ्यु के लोको एम कहे छे के अहीया माताजी नो कंठहार पड्यो हतो, पण माताजी नी हासडी नी हाडकीओ अही पड़ी हती, एटले के घड़ाना नीचे ज्यां हासडी नी हाडकीओ होय ए हासडी नी हाडकीओ अही पड़ी हती। एटले आपणे पहेरीए ए आभूषण वारो हार नहीं पण हासडी नी हाडकीओ ने कंठहार कहेवाय छे। अही शिव रूपे रक्षक भैरव ने नंदीकेश्वर नामे पूजवामां आवे छे। अही मुख्य गर्भगृह एक विशाल वटवृक्षना वच्चे आवेलू छे, एटले आखुं मंदिर छे ने वडना वृक्षनी वच्चोवच ने आजूबाजू वडवाईयो। अही मोटी काळी शिला छे जे काचबानी पीठना आकार जेवी देखाय छे। आ आखी शिला सिंदूरथी रंगायेली रहे छे। बंगाळना लोको जे सिंदूर वापरे छे ने लालाश पड़ता सिंदूरिया रंगनो होय छे, एटले आ काळी शिला लालाश पड़ता सिंदूरिया रंगे रंगाई एवी शोभी रही छे के न पूछो वात। आ पवित्र शिला पर माताजीनी 3 सोनानी आँखो अने मुगट सुशो

0: शोभित छे। एवी मान्यता छे के अही वृक्ष पर लाल के पीड़ो दोरो बांधी ने मानता मांगवा थी इच्छा पूरी थाय छे।
1: धर्म धजाओ फरफरे अन घो

0: अधर्म पर धर्म अने असत्य पर सत्य ने विजय गाथा विजयोत्सव फाफड़ा जलेबी नी उजाणी दशहरा ना दिवसे आवशे सचिन वजाणी
1: ओनली ऑन 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम एकदम खरा सोना जेवो गीत गुर्जरी बपोरे 3 वागे सांभळवानो चूकता नहीं।
2: हवे बात करिए रत्नावली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाळना हुगली जिल्लाना खानाकुल खाते रत्नाकर नदीना किनारे आवेल छे। तेने आनंदमयी शक्तिपीठ अथवा घंटेश्वर तरीके पण ओळखवामां आवे छे। अहीं माता सती ने कुमारी अथवा आनंदमयी तरीके पूजवामां आवे छे। अहीं माता राधानगर गाममां बिराजमान छे के ज्यारे के भैरव पासेना ज उबितपुर गाममां बिराजमान छे। संभवतः आ एकमात्र शक्तिपीठ छे के ज्यां सती अने भैरव अलग अलग गाममां बिराजमान छे। देवीना रक्षण माटे अहीं भगवान शिव अथवा घंटेश्वर भैरव तरीके बिराजमान छे। घंटेश्वर भैरव पासे लोकोए मानेली इच्छा पूरी थई जवाथी भक्तो घंट अर्पण करता होय छे। मंदिर परिसरमां अनेकानेक घंट घंटना झूमखा घंटना तोरण बांधेला नजरे चढ़े छे। रत्नाकर नदीना तटे माताजीनो जमणो खभो पड्यो होवाथी लोकोनी एवी मान्यता छे के जमणा खभा संबंधित पीड़ानुं निवारण अहीं आवाथी थाय छे। तेमज अहींना दीपकमांथी तेल लईने खभा पर मालिश करवाथी दुखावामां फायदो थाय छे। मित्रों जे लोको जवाबदारीओनो बोझ उठावी उठावीने थाकी गया होय बोलता होय के मारा खभा पर केटली जवाबदारीओ छे, मान्यता अनुसार एवा लोकोए अहीं दर्शन करवा आववुं कारण के माताजीए बधो ज बोझ हळवो करे छे। आ शक्तिपीठनी मुख्य विशेषता एटले गर्भगृहमां युगोथी वीजळी नथी, लाइट नथी। तेलना अनेक दीपकथी अहींनी ज्योतनी तेजस्विता, अलौकिक शांति, दिव्यता, भव्यता भक्तोने अनुभव थाय छे। अहीं वर्ष दरमियान विविध मेळाओ, विविध नृत्यो, विविध पूजाओ एकदम एटले एकदम अनोखा प्रकारे थाय छे। आम पूरा शरीर पर भस्म लगाड़ी लगाड़ीने ए डांस ए नृत्य जोवा जेवुं होय छे, अद्भुत आह्लादक। केटलाक जूना दस्तावेजोमां रत्नावली शक्तिपीठ चेन्नई तमिलनाडुमां होवानो उल्लेख छे, ज्यारे केटलीक जग्याए बांग्लादेशना सिलहट जिल्लाना शैल विस्तारने पण रत्नावली शक्तिपीठ तरीके दर्शावामां आवे छे। जो के बंगाळनुं आ शक्तिपीठ ज सौथी वधु मान्यता धरावे छे। ज्यां 51 जेमां 51 शक्तिपीठोनो उल्लेख छे एवा पीठ निरूपण ग्रंथमां पण पश्चिम बंगाळना आज शक्तिपीठ ने आनंदमयी शक्तिपीठ तरीकेनी मान्यता मळी छे।

100.1 FM गोल्ड पर आप छो आपनी आरजे आरती साथे। हवे वात करिए भारत नेपाल नी जनकपुर सरहद पर बिहार एटले के प्राचीन मिथिला क्षेत्र मा आवेला मिथिला शक्तिपीठ के उमा शक्तिपीठ नी अही माता सती नो डाबो खबो पड़ियो हतो। अही बिराजमान शक्ति ने उमा अथवा महादेवी तरीके पूजवामां आवे छे। रक्षक तरीके बिराजता शिवना स्वरूप ने महोदर भैरव कहेवामां आवे छे। जनकपुर नजीक आवेलू आ मिथिला शक्तिपीठ एक भव्य किल्ला जेवा आकारनू सुंदर श्वेत स्थापत्य छे। मंदिरनी आसपास स्थानिक मिथिला कला एटले के मैथिली पेंटिंग्सनी सुंदर झांखी जोवा मळे छे। भगवान राम अने माता सीताना विवाह उत्सवना दिवसे एटले के माक्सर सुद पांचमे विवाह पंचमीना दिवसे खूब मिथिला क्षेत्र नववधुनी जेम शणगारवामां आवे छे। तेमज रामनवमी अने जानकी नवमी आ दिवसोमां पण विशेष पूजा अर्चना करवामां आवे छे। आ शक्तिपीठना साच्चा स्थानने लई वधु त्रण जग्याओ मान्यता धरावे छे। एक वन दुर्गा मंदिर। आ स्थान भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाळना जनकपुर रेलवे स्टेशन नी नजीक आवेलू छे, जेने सोनामाई मंदिर के दुर्गास्थान तरीके पण ओळखवामां आवे छे। उच्चैठ भगवती मंदिर बीजू स्थान। जनकपुर थी लगभग 15 किलोमीटर पूर्वमां बिहारना मधुबनी जिल्लाना बेनीपट्टी पासे उच्चैठ गाममां प्राचीन मंदिर आवेलू छे। ने त्रीजू स्थान उग्रतारा मंदिर बिहारना सहरसा जिल्लाना महिषी गाममां स्थित आ मंदिर पण मिथिला शक्तिपीठ तरीकेने मान्यता धरावे छे।

मित्रों हवे वात करिए आजना नवरात्रिना पांचमा दिवसना आराध्य देवी स्कंद मातानी। शिव पार्वतीना मोटा पुत्र कार्तिकेयनो एक अर्थ थाय छे स्कंद। स्कंद माताए पोते स्वयं पार्वती माता ज छे जे पोताना बाळ कार्तिकेयने एटले के स्कंद ने खोड़ामा लईने बैठा छे। कार्तिकेयने तमिलनाडुमां मुरुगन नामे पण पूजवामां आवे छे। तमिल भाषामां मुरुगननो अर्थ थाय छे सुंदर। त्यां कार्तिकेयने सुब्रमण्यम तरीके पण पूजवामां आवे छे। भगवान कार्तिकेयनुं वाहन मयूर अर्थात मोर छे। कथा प्रमाणे तारकासुर नामना राक्षसने मात्र ने मात्र शिवनो पुत्र शिवजीनो पुत्र कार्तिकेय मारी शके एम हतु। तारकासुरना त्रासथी देवताओ पण परेशान थी गया हता एटले माता पार्वती माताए पोताना बाळ कार्तिकेयने खोड़ामां बेसाड़ी वात्सल्य पूरू पाड्यू, प्रेम पूरू पाड्यू ने युद्ध माटे तैयार कर्या। आ स्वरूपमां माता पोताना पुत्र स्कंदने खोड़ामां लईने सिंह पर बिराजमान जोवा मळे छे। देवताओए भगवान स्कंदने एटले के कार्तिकेयने पोताना सेनापति बनाव्या। युद्ध मैदानमां भयंकर युद्ध थयुं अने अंते कार्तिकेय तारकासुरनो संहार कर्यो। त्यारथी कार्तिकेय योद्धा देवता तरीके पण पूजाय छे। स्कंद माताની कथा आपणने शीखवे छे के માતાનો પ્રેમ અને આશીર્વાદ બાળકના જીવનમાં ગમે તેવા અશક્ય કાર્યોને પણ શક્ય બનાવી શકે છે। સ્કંદની માતા સ્કંદ માતા આ નામે વખણાયા માતા। માન્યતા છે કે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે સ્કંદ માતાની પૂજા ફળદાયી છે। તેમજ મિત્રો આજે લલિતા પંચમી પણ છે। ઓરિસ્સામાં લલિતા પંચમીને નતપંચમી તરીકે નતપંચમીના નામે પૂજાય છે, મનાય છે।

0: गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। भारत ने अमरीका के इलिनॉय राज्य के अरोरा क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की कथित खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू विरोधी तथा नस्लवादी प्रकृति के साथ भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। पंजाब में मंगलवार को मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झूठा की दिन दहाड़े हुई हत्या और राज्य में मादक पदार्थों के विरोध में हो रहे बंद को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए व्यवस्था की है।
1: कई राजनीतिक पार्टियों, किसान यूनियनों और व्यापारियों के संगठनों ने बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। यह बंद मारे गए नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह के पिता भीम सिंह की अपील पर किया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस और दूसरे इमरजेंसी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं। इस मामले में न्याय की मांग के लिए बनाई गई एक्शन कमेटी ने लोगों से बंद के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। अभी तक राज्य में कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। बंद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमरीका की लास वेगास में आज पुरुषों की 55 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre. He said the projects will improve connectivity, strengthen power infrastructure, enhance water availability and help preserve the region's rich cultural heritage. The Prime Minister also highlighted the growing tourism potential of Ladakh.
3: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। IIT जम्मू और IIM जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
2: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड दैट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स टू नियरली 100 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। ही सेड इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव सर्ज्ड फ्रॉम जस्ट 686 करोड़ रुपीज इन 2013-14 टू मोर देन 38,000 crore rupees in 2025-26. Mr. Singh was speaking at the Defence Conclave 2026 of a private channel in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah said the government is providing artificial limbs and other assistance to tribal people in Chhattisgarh who have been left disabled by Naxalism and supporting them in leading a better life. Mr. Shah said this while addressing the distribution ceremony of assistive devices to persons

0: आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जूनियर रिसर्च फेलो और यंग प्रोफेशनल के एक एक पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iari.res.in। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर में फाइनेंस एनालिस्ट और फाइनेंस डाटा एनालिस्ट के एक एक पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.devnetjobsindia.org। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद में सह परामर्शदाता के दो पद, प्रशिक्षु का एक पद और युवा पेशेवर विनियामक मामले एवं नीति प्रतिपालन के दो पद रिक्त हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.birac.nic.in। हथियार प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन अकादमी इच्छापुर में इलेक्ट्रिकल फिटर के 4 पद, मैकेनिकल फिटर के 14 पद, मशीनिस्ट के 6 पद, टर्नर के 7 पद, इलेक्ट्रोप्लेटर के 6 पद और हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर के 3 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। देखिए वेबसाइट www.aweil.in। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में वैज्ञानिक ग्रेड ई एक पद, उपनिदेशक प्रशासन का भी एक पद और रिसर्च एसोसिएट ग्रेड 1 के 3 पद रिक्त हैं। योग्यता, अनुभव, आयु श्रेणी, आवेदन प्रारूप और अन्य नियमों और शर्तों से युक्त विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL की इस वेबसाइट पर। पता है www.ndtlindia.com। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, और चलेंगे अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या लाए हैं आज हमारे लिए कुछ खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नजर, और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी है जिनकी आज पुण्यतिथि या फिर जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संकेत में मैं हूं मुनीष शर्मा, और मेरे साथ हैं आज रेशमा तिवारी। नमस्कार रेशमा।
2: नमस्कार मुनीष, एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज। आई एम रेशमा तिवारी, एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट मुनीष, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ।
2: हिंदूज कन्वर्टिंग टू इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स कैन नॉट क्लेम बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन, सेज सुप्रीम कोर्ट, अपहोल्ड्स मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए।
2: India's defense exports surged to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defense Minister Rajnath Singh.
1: हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान.
2: And Indian wrestler Vishwajit Ramachandra More creates history by clinching silver medal in Greco-Roman finals at Under 23 World Championships in Las Vegas. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about World Students Day. So let me begin with this segment with a question, that is, what's the one thing that can turn an ordinary student into an extraordinary achiever? Is it intelligence? Is it hard work? Or is it the courage to dream big? Well, today we celebrate someone who believed that every student has the power to transform not just their own future, but the future of an entire nation. Today is World Students Day, celebrated in India on October 15, the birth anniversary of one of India's most inspiring personalities, Dr. APJ Abdul Kalam.
3: Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.
1: Well, coming back to your question, Reshma, you asked me, is it intelligence, hard work or courage to dream big? I think it's a combo of all three, which we find in the great persona of Dr. Awul Pakir Jainul Abidin Abdul Kalam. Kalam sahab ka janm hua tha 15 October 1931 ko Tamil Nadu ke Rameshwaram mein. Ek sadharan si prishthbhumi se aane ke bawajood, ve Bharat ke sabse sammanit वैज्ञानिकों में से एक बने, और आगे चलकर 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक छोटे से शहर से राष्ट्रपति भवन तक के सफर से भी कहीं बढ़कर है। डॉक्टर कलाम एक बेहतरीन एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई, और उनके इन्हीं योगदानों की वजह से उन्हें कहा गया भारत का मिसाइल मैन।
2: Yes, Manish, but yet what made him truly special was not just his scientific achievements or the highest office he held. It was his heart. He loved interacting with students. He believed in their potential, encouraged them to ask questions and inspire them to dream beyond their limitations. In fact, he considered teaching one of the most meaningful ways to serve the nation. Imagine that a man who reached the highest constitutional office in India still found immense joy in standing before students and sharing ideas. That is the power of a true teacher.
1: Indeed, the power of a great and true teacher. Bharat ne dosto 15 October ko इसीलिए विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर कलाम के जन्मदिन और शिक्षा तथा युवाओं के प्रति उनके असाधारण समर्पण को सम्मान देने के लिए और हमें याद दिलाता है कि छात्र सिर्फ कल के नेता ही नहीं है, बल्कि वे आज के विचारक हैं, नवप्रवर्तक, सृजक और बदलाव लाने वाले लोग भी हैं। डॉक्टर कलाम का यह मानना था कि शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों, परीक्षाओं और रिपोर्ट कार्ड तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा हमें ये बताए, ये सिखाए कि सोचना कैसे है, सवाल कैसे पूछने हैं, समस्याओं को कैसे सुलझाना है और एक जिम्मेदार इंसान कैसे बनना है। यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, हालांकि भारत में इस तारीख को विश्व छात्र दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित ये कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं है।
2: But does a day need an official declaration to carry a powerful message? Absolutely not. The real importance of this day lies in the values it inspires: curiosity, creativity, discipline, kindness, and the courage to dream big. Did you know that Dr. Kalam was deeply involved in India's space research and missile development programs? His scientific contributions helped strengthen India's technological capabilities. And also, did you know that he was popularly known as the People's President? Because of his simple lifestyle, approachable nature and special connection with ordinary citizens, especially students.
1: And not only that, Reshma, in fact, Dr. Kalam wrote many inspiring books for everybody. Aur jo unki prerandayak kitabein thi, jab unko yaad karte hain, to hume yaad aati hai unki atmakatha, Wings of Fire aur Ignited Minds, jo yuva bharatiyon ko apni kshamtaon ko pehchanne ke liye prerna deti hain. Yuvaon ke liye Dr. Kalam ka ek bada hi mashhoor sandesh tha, बड़े सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और उन सपनों को हकीकत में बदलना। उन्होंने कहा था, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचारों से ही कार्य होता है।
2: Imagine you have the opportunity to change one thing in your school, college or community. What would it be? Would you plant more trees? Help children who cannot afford education, reduce plastic waste, develop an invention, or create a more inclusive and caring environment? Because the world does not change only when famous people make big decisions. It also changes when ordinary people take small, meaningful actions. Remember, what marks may open certain doors, but curiosity, character, creativity, and perseverance help you move forward in life. And to every student who has ever felt that their dreams are too big or their circumstances are too difficult, remember this. Your starting point does not have to determine your destination.
1: बिल्कुल, और इस खास मौके पर आइए हम उन शिक्षकों को याद करें आज जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन माता-पिता को जो हमारा साथ देते हैं और उन गुरुओं को जो हमें हमारी खूबियों को पहचानने में मदद करते हैं। हर आत्मविश्वासी छात्र के जीवन में अक्सर कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसने छात्र के खुद पर विश्वास करने से पहले ही उस पर भरोसा किया हो। आज किसी ऐसे शिक्षक को धन्यवाद आप जरूर दें जिसने आपको प्रेरित किया हो। शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों में डर के बजाय जगाएं जिज्ञासा और सिर्फ जवाब मांगने के बजाय उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पिता याद रखें कि हर बच्चे में कोई ना कोई खास हुनर होता है, सीखने की अपनी अलग अलग गति होती है, तो एक ऐसा सपना भी होता है जिसे हमें सुनना और समझना चाहिए। तो सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि सीखना किसी डिग्री, सर्टिफिकेट या क्लासरूम के साथ खत्म नहीं हो जाता, क्यों रेशमा?
2: Right, and as Dr. Kalam's life reminds us, knowledge becomes truly powerful when it is combined with action, integrity, and a desire to contribute to society. And now, dear listeners, as we come to the end of this segment, let us remember that World Students Day is more than a celebration of a birthday. It is a celebration of young minds. It is a celebration of questions that lead to discoveries, failures that teach us valuable lessons, and dreams that give us the courage to keep moving forward. Dr. APJ Abdul Kalam showed us that greatness does not depend on where we begin, but on how sincerely we learn, how bravely we dream, and how meaningfully we serve others.
1: तो हमारे युवा एक सफल छात्र बनने का ही लक्ष्य न रखें, बल्कि एक जिज्ञासु, सीखने वाले, एक दयालु इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का लक्ष्य रखें। आप सभी को विश्व छात्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, विश्वास बनाए रखिए और सबसे बढ़कर अपने सपनों को जिंदा रखिए। फिर मिलने तक जिज्ञासु बने रहिए, प्रेरित रहें और अपनी सोच को ले जाएं आसमानों से भी ऊंचा। और अब समय है दोस्तों अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या कुछ लाए हैं हमारे लिए आज वो खास।
2: Reunion Island, located in the Indian Ocean to the east of Madagascar, is a French overseas territory whose society has been shaped by centuries of migration and cultural exchange. The island has significant links with India, which are reflected in its language, cuisine, religious practices, music and traditions. Alliance Francaise, the French cultural center, is celebrating these shared histories by designating October as Reunion Island Culture Month. A series of artistic and cultural events are being organized in Puducherry and several other Indian cities in this connection. More from our correspondent.
4: The second edition of Reunion Island Culture Month brings together artists, writers, filmmakers and researchers to explore the island's diverse cultural identity and its historical connections with India. Alongside Puducherry, Pune, Delhi, Ahmedabad, Chandigarh and Goa, the initiative has expanded to Bangladesh for the first time this year. In Puducherry, Alliance Francaise is hosting exhibitions, literary discussions, creative workshops, film screenings, conferences and musical performances to showcase the vibrant and evolving culture of Reunion Island. Music, migration and identity form important themes of the celebrations. The events, which began on October 12th, will continue until October 22nd at different venues including Alliance Francaise, the University of Pondicherry and other cultural spaces. Among the featured guests are singer Maya Kamati, Soyel Aikormia, filmmaker

0: opened a school for poor children in Lucknow. She died in Ghaziabad on October the 15th, 1999, at the age of 92.
1: Her courage and fearlessness were indeed like Durga Ma, as she fought against the evil British imperialist forces to free her motherland from foreign rule.
2: और दोस्तों आज ऐसे भी कई विशिष्ट व्यक्तित्वों का जन्मदिन है, जयंती है या पुण्यतिथि है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया और अपनी रचनाओं से, अपनी कृतियों से, अपने कार्यों से समाज को जागृत किया और अपने क्षेत्र में बनाया एक महत्वपूर्ण स्थान, उन्हें हम अब याद करते हैं।
3: Yes, let's begin with Baba Kanchiram, who was a poet and activist for independence, born in Himachal Pradesh. The death sentences handed out to Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev in 1931 had a great impact on him. He vowed to wear black clothes until India achieved its independence, and he adhered to this vow until he died on 15th October 1943 and came to be known affectionately as the Siyah Posh Jarnail. In 1937, Pandit Jawaharlal Nehru awarded him the title of Pahari Gandhi.
2: और आज है पुण्यतिथि हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जिन्हें कहा जाता था आदर से महाप्राण निराला। निराला हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक रहे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे साहित्यकार के रूप में है जिन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक असमानता, मानवीय संवेदना और रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और वह तोड़ती पत्थर शामिल हैं। आपको जरूर शायद याद होगी कविता उन्होंने लिखी थी जब उन्होंने एक महिला मजदूर को देखा और लिखा था वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। जहां उनकी राम की शक्ति पूजा संघर्ष और आत्मबल को अभिव्यक्त करती है, वहीं सरोज स्मृति में अपनी पुत्री को खोने का उनका व्यक्तिगत दुख कविता के रूप में सामने आता है और वह तोड़ती पत्थर में उन्होंने मेहनतकश महिला के जीवन और संघर्ष को कविता का विषय बनाया। और यही कारण है कि उन्हें हिंदी साहित्य के सबसे विशिष्ट और प्रभावशाली रचनाकारों में गिना जाता है।
4: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना

दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं उस दौर की जब गीत जो होते थे फिल्मों के, वही पहचान बन जाया करते थे फिल्मों के, और लोग खास तौर पर गीतों को देखने के लिए सिनेमा हॉल का रुख करते थे। और उस दौर की एक बड़ी लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी थी शंकर जयकिशन की, और शंकर जयकिशन की जोड़ी के जो थे शंकर सिंह रघुवंशी, उनका जन्म हुआ था आज ही की तारीख को, यानी 15 अक्टूबर को 1922 में। शंकर और जयकिशन की जोड़ी ने बरसात, आवारा, श्री 420, अनाड़ी और संगम जैसी कई बड़ी फिल्मों में यादगार संगीत दिया, और उनके संगीत की खासियत थी भव्य ऑर्केस्ट्रेशन और भारतीय धुनों के साथ साथ नए प्रयोग। उनकी इस जोड़ी ने कई बार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता और 1968 में पद्मश्री से सम्मानित हुई। ये जोड़ी, उनके संगीत ने हिंदी फिल्म संगीत की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए सुनते हैं उन्हीं के लयबद्ध किए हुए, संगीतबद्ध किए हुए कुछ ऐसे गीत जिन्हें उनके चाहने वाले अब भी जब तब गुनगुनाया करते।

Yes, the great novelist and screen playwriter Mario Francis Puzo. Just on the surface level, his writings, you know, depict the stories of mafia families. But when you delve deeper, so it's a story of human intricacies and basic essential human nature and clashes emanating from that. और आज ही दोस्तों है जन्मदिन सिनेमा के बहुमुखी चेहरे विक्टर बनर्जी का, जिन्होंने अपनी अभिनय कला से हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी सिनेमा को समृद्ध किया है। सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी से उन्होंने डेब्यू किया और पैसेज टू इंडिया में डॉक्टर अजीज की भूमिका से वो बहुत चर्चित हुए। और बिटर मून, गुंडे, तारे जमीन पर ऐसी फिल्में हैं जो उनकी हिंदी की यादगार फिल्में हैं। और रेडियो जॉकी के तौर पर उन्होंने शुरू किया था करियर और अब भी वो सक्रिय हैं। 100 से अधिक फिल्में उन्होंने की हैं। सुनते हैं उनकी ही फिल्मों के कुछ यादगार गीत।

0: विक्टर बनर्जी को और उनके चाहने वालों को हमारी ओर से उनके जन्मदिन की बधाई। और दोस्तों अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो अनुमति दीजिए मुनीश शर्मा और रेशमा तिवारी को, कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, दीजिए हमें आज्ञा।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
3: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और कई केंद्रीय तथा राज्य मंत्रियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्य आधारित प्रमाणीकरण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़कर सशक्त किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कौमार वृत्ति सम्मेलन कौमारकॉन 2026 में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि सरकार बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए साक्ष्य आधारित आयुर्वेद को मजबूत करने और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए भारी वजन वाले टॉर्पिडो वरुणास्त्र की खरीद के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह

0: के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के जवाबों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। भारत ने अमरीका के इलिनॉय राज्य के अरोरा क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की कथित खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू विरोधी तथा नस्लवादी प्रकृति के साथ भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre. He said the projects will improve connectivity, strengthen power infrastructure, enhance water availability and help preserve the region's rich cultural heritage. The Prime Minister also highlighted the growing tourism potential of Ladakh.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: Union Home Minister Amit Shah said the government is providing artificial limbs and other assistance to tribal people in Chhattisgarh who have been left disabled by Naxalism and supporting them in leading a better life. Mr. Shah said this while addressing the distribution ceremony of assistive devices to persons with disabilities in Chhattisgarh through video conferencing as part of the ongoing Seva Sankalp Abhiyan. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is exporting indigenous defence products to nearly 100 countries worldwide. He said India's defence exports have surged from just 686 crore rupees in 2013-14 to more than 38,000 crore rupees in 2025-26. Mr. Singh was speaking at the Defence Conclave 2026 of a private channel in New Delhi today. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of a dedicated communication satellite capability, GSAT-7C, for the Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The Ministry said this indigenously designed, developed and manufactured satellite will enhance the secure, resilient and seamless communication capabilities for the assets of the Indian Air Force. India has expressed deep concern at reports of an alleged plot to carry out a mass shooting targeting a Hindu temple in the Aurora area of Illinois. In response to media queries regarding the attempted mass shooting incident in the US, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the reported anti-Hindu and racist nature of the alleged plot, including references to violence against people of

गाती गुनगुनाती का सफर आज हमारे यानी रूमी मालिक के साथ, और जिंदगी का सफर ऐसे लोगों के साथ तय कीजिए जो खुद से ज्यादा आपका ख्याल रखें। स्वागत है गाते गुनगुनाते आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते आकाशवाणी यानी देश की वाणी। हम जनहित में बात करते हैं, जन जन की बात करते हैं। नवरात्र चल रहे हैं, घर में, हर घर में एक जीवित देवी रहती है, हर घर में एक जीवित देवी रहती है। लक्ष्मी बनकर पानी भरती है, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है, गृहलक्ष्मी बनकर परिवार संभालती है, सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है, दुर्गा बनकर संकटों से लड़ती है, काली बनकर घर की रक्षा करती है। आपके घर में जो स्त्री है उसकी पूजा न करें, लेकिन सम्मान जरूर करें। देवी केवल मंदिरों की मूर्ति में नहीं, बल्कि हर घर की स्त्री के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। नवरात्रि का ये संदेश देकर आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी देती हूँ, और यही कहती हूँ कि जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते, आपके साथ हैं हम रूमी मलिक।

गाते गुनगुनाते सफर जारी रहेगा आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप दोबारा जिस उम्र में अभी हैं कभी फिर से नहीं होंगे, इसलिए इंतजार करना छोड़ दीजिए। जो दिल चाहता है वो कीजिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, सिर्फ यादें मिलती हैं। आकाशवाणी एफएम गोल्ड, गाते गुनगुनाते

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप रूमी मलिक के साथ। थोड़ी देर में होगा नॉर्थ ईस्ट डायरी, सुनते रहिए गाते गुनगुनाते आकाशवाणी FM गोल्ड। रूमी मलिक को दीजिए इजाजत, शुक्रिया।

0: न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी प्रेजेंट्स नॉर्थ ईस्ट डायरी।
1: गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरी, योर विंडो इनटू द वाइब्रेंट कल्चर्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड अनफोल्डिंग इवेंट्स फ्रॉम द एट ज्वेल्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। I'm Vinita Thakur and in today's episode, we bring you an exclusive interview with Teja Rao, a Naga filmmaker whose debut feature film Ang won the Platform Prize at the 2026 Toronto International Film Festival, that is TIFF. But first, let's begin with the soulful rendition of Ma Durga Mahamaya, a popular devotional song dedicated to Goddess Durga, sung by renowned Assamese artist Zubin.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7 संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वर्णास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सल

बाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमेरिका के लास वेगस में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the SIR process. During the hearing of another case, the Apex Court has sought replies from the Centre and the National Medical Commission on a plea seeking greater transparency in the answer key and response disclosure process for NEET PG 2026. The BJP today accused senior Congress leader Rahul Gandhi of allegedly misbehaving with a woman police officer during a protest in New Delhi. Addressing a press conference in the national capital, BJP spokesperson Gaurav Bhatia also alleged that the Congress party's protest on the premises of the Supreme Court was an attempt to intimidate the judiciary. India has expressed deep concern at reports of an alleged plot to carry out a mass shooting targeting a Hindu temple in the Aurora area of Illinois in the United States. External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said New Delhi has taken note of the action taken by U.S. law enforcement authorities, including the arrest and detention of the suspect. Indian wrestler Vishwajit Ram Chandramur has clinched a historic silver medal in men's 55kg Greco-Roman category at the Under-23 World Championships in Las Vegas, United States today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण
2: नमस्कार आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत मैं हूं मुनीश शर्मा। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उद्योगों का विकास न केवल उत्पादन बढ़ाता है बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने निवेश आकर्षित करने और देश की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। लेकिन किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए केवल जमीन उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। बिजली पानी सड़क परिवहन भंडारण पर्यावरण संबंधी सुविधाओं और समय पर मंजूरी जैसी व्यवस्थाएं भी तो जरूरी हैं। यदि इन सुविधाओं को तैयार करने में अधिक समय लगे तो उद्योगों की स्थापना और उत्पादन शुरू होने में देरी हो सकती है। और इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य की शुरुआत की है। 33,660 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। और आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि भव्य योजना क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, भारत के औद्योगिक विकास की रणनीति किस तरह बदल रही है और ये योजना निवेश रोजगार तथा विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने में किस तरह योगदान दे सकती है।
3: भारत का विनिर्माण क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 16-17% है। यह क्षेत्र 2,70,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। सरकार के राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का लक्ष्य वर्ष 2035 तक GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना है। इसके लिए उत्पादन क्षमता के विस्तार के साथ साथ आधुनिक तकनीक बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेश के अनुकूल वातावरण की जरूरत है। विनिर्माण क्षेत्र की संरचना में भी बदलाव आ रहा है। मध्यम और उच्च तकनीक वाले उद्योगों की हिस्सेदारी विनिर्माण के कुल मूल्य संवर्धन में 46.3% तक पहुंच गई है। यह दर्शाता है कि भारतीय उद्योगों में तकनीक आधारित और अधिक मूल्य वाले उत्पादन का महत्व बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि नए उद्योगों को तेजी से स्थापित करने के लिए किस तरह की व्यवस्था चाहिए। इसका एक समाधान है प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। इसे आसान भाषा में समझे तो ऐसे औद्योगिक पार्क जहां उद्योग शुरू करने से पहले ही जमीन सड़क बिजली पानी जल निकासी और दूसरी साझा सुविधाएं विकसित कर दी जाती हैं। कई मामलों में जरूरी मंजूरियों की प्रक्रिया को भी सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से आसान बनाया जाता है। इससे कंपनियों को बुनियादी सुविधाएं तैयार करने में कम समय और संसाधन लगाने पड़ते हैं। वे अपने निवेश और उत्पादन संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे सकती हैं। इसी सोच को देशव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भव्य योजना लाई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में इस योजना को मंजूरी दी और 10 अप्रैल 2026 को इसे अधिसूचित किया गया। इसके लिए 33,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना को केंद्र सरकार राज्य सरकारों और निजी डेवलपर्स की साझेदारी से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षमता बढ़ाना कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और निवेशकों के सामने आने वाली शुरुआती बाधाओं को कम करना है।
2: वैश्विक

0: आपूर्ति श्रृंखलाओं में हो रहे बदलाव के बीच ये व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कंपनियां ऐसे स्थानों को प्राथमिकता देती हैं जहां जमीन, बिजली, परिवहन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर स्पष्टता हो। इस तरह भव्या भारत को निवेश के लिए तैयार औद्योगिक केंद्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। आइए सुनते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: भारत में औद्योगिक विकास की रणनीति समय के साथ विकसित हुई है। शुरुआती दौर में औद्योगिक एस्टेट और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ विकसित किए गए। इनका उद्देश्य औद्योगिक जमीन, साझा बुनियादी सुविधाएं और नियामकीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराना था। फरवरी 2026 तक भारत में 370 अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र थे। इनमें 7,82,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ और 31,70,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। इसके बाद औद्योगिक विकास की सोच अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर बड़े और एकीकृत औद्योगिक केंद्रों तक पहुंची। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी NICDP के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली, पानी, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और शहरी सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। गुजरात का धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, महाराष्ट्र का शेंद्र बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश का विक्रम उद्योगपुरी और उत्तर प्रदेश का इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा इस तरह की एकीकृत योजना के उदाहरण हैं। 14 अक्टूबर 2026 तक इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पर 4,164 औद्योगिक पार्कों को सूचीबद्ध किया जा चुका था। अब भव्य इसी दिशा में एक और कदम है। इसका लक्ष्य देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इन पार्कों में आंतरिक सड़कें, बिजली आपूर्ति, पानी के नेटवर्क, जल निकासी और साझा अपशिष्ट जल शोधन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। भूमिगत यूटिलिटी कॉरिडोर का प्रावधान भी किया गया है। इससे बिजली, पानी और दूसरी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं के रखरखाव में सुविधा होगी और बार बार खुदाई करने की जरूरत कम हो सकेगी। योजना में श्रमिकों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों के लिए आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और कौशल विकास केंद्र जैसी सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान है। भव्य को वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों में लागू किया जाएगा। जुलाई 2026 में सरकार ने 3 रासायनिक पार्कों के लिए भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दी। इन पार्कों का उद्देश्य रासायनिक उद्योगों को साझा सुविधाएं और पर्यावरण सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
0: इस प्रकार भारत की औद्योगिक नीति अब केवल जमीन उपलब्ध कराने से आगे बढ़कर तैयार ढांचे, बेहतर संपर्क और आसान प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर जोर दे रही है। आइए सुनते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट।
2: जैसी योजनाओं के महत्व को समझने के लिए गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र को देखा जा सकता है। धोलेरा को एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां सड़कें, बिजली, पानी, गैस, जल निकासी, डिजिटल नेटवर्क और शहरी सुविधाओं की योजना शुरुआत से ही एकीकृत तरीके से बनाई गई है। यहां बिजली, पानी, गैस और जल निकासी से जुड़ी व्यवस्थाओं को साझा भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से विकसित किया गया है। इससे उद्योगों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है जिनकी मदद से वे तेजी से अपना संचालन शुरू कर सके। धोलेरा में सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और रक्षा और ऊर्जा उपकरणों के निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, जैव प्रौद्योगिकी और भारी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र को बंदरगाहों, हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे और समर्पित माल ढुलाई गलियारे से जोड़ने की योजना भी महत्वपूर्ण है। बेहतर संपर्क से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार उत्पादों को बाजार पहुंचाने में मदद मिल सकती है। सरकारी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार धोलेरा में 11 भूखड़ों में कुल 495 एकड़ जमीन आवंटित की गई। इसमें 97,328 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता और 6,000 से अधिक रोजगार के अवसरों की संभावना बताई गई है। यहाँ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर परियोजना और रिन्यू पावर की सौर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए भी जमीन आवंटित की गई है। धोलेरा का उदाहरण बताता है कि उद्योगों को केवल जमीन देना पर्याप्त नहीं है, उत्पादन, परिवहन, ऊर्जा, पानी और शहरी सुविधाओं के बीच समन्वय भी जरूरी है। भव्य इसी प्रकार के औद्योगिक इकोसिस्टम को देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित करने की व्यापक पहल है। MSMEs के लिए साझा सुविधाओं की उपलब्धता विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि छोटे उद्यमों के लिए अपनी अलग औद्योगिक बुनियादी सुविधाएं विकसित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तैयार औद्योगिक परिसर उन्हें कम समय में उत्पादन शुरू करने का अवसर दे सकते हैं। भव्य योजना इस व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इसके माध्यम से औद्योगिक पार्कों को उत्पादन के लिए तैयार केंद्रों के रूप में विकसित करने, निवेशकों की शुरुआती बाधाएं कम करने और देश की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
0: तो ये था आज का विश्लेषण, जिसका विषय था भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य और निवेश के लिए तैयार औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में भारत के प्रयास। इसकी वास्तविक सफलता तो इस बात से तय होगी कि औद्योगिक पार्क कितनी कुशलता से विकसित होते हैं, उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं कितना समय पर मिलती हैं और निवेश के साथ रोजगार के अवसर किस सीमा तक बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के विश्लेषण को देते हैं यहीं विराम। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है श्रेया पाठक ने और प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी।
3: और अब सुनिए संस्कृत में समाचार।
4: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। लद्दाख क्षेत्रे विकासस्य नूतनः अभ्युदयः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतं 300-3,000 crore rupees पञ्चविकास परियोजनानां राष्ट्राय समर्पणम्। एशियन गेम्स स्पर्धासु अद्भुत प्रदर्शनं कृतवद्भिः भारतीय दलस्य क्रीडकैः सह प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उत्साहवर्धकः संवादः। सर्वोच्च न्यायालयस्य ऐतिहासिकः निर्णयः। धर्मान्तरितेभ्यः नागरिकेभ्यः वंचित वर्ग आरक्षण लाभो निषिद्धः। मद्रास उच्च न्यायालयस्य निर्णयः शीर्ष न्यायालयेन समर्थितः। अमेरिका देशस्य इलिनॉय राज्ये हिंदू मंदिरस्य विध्वंस षड्यंत्र वार्ताम् अधिकृत्य भारतेन प्रगाढा चिंता व्यक्ता। स्थानीय प्रशासनं समाहूय मंदिराणां सुरक्षा प्रबंधनाय दृढः आग्रहः च विहितः। अपि च लॉस वेगास नगरे विश्व मल्ल स्पर्धायाः ग्रीको रोमन वर्गे भारतीय मल्लः विश्वजीत रामचंद्र मोरे रजत पदकमवाप्य देशस्य नाम स्वर्णाक्षरैः अंकितवान्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य दृश्यांकन माध्यमेन केन्द्र शासित प्रदेशाय लद्दाखाय प्रायः 50-3,000 crore rupees पञ्च प्रमुखाः विकास परियोजनाः राष्ट्राय समर्पिताः। एताभिः पञ्च परियोजनाभिः अस्मिन् पर्वतीय क्षेत्रे संपर्क व्यवस्था सुदृढा भविष्यति। ऊर्जा मूलभूत संरचनासु परिष्कारः भविष्यति। सांस्कृतिक न्यासस्य संरक्षणं संवर्धिष्यते अथ च जलसुरक्षा सुदृढा विधास्यते। लोकार्पितासु परियोजनासु लेहनगरे कुशोक बकुला रिम्पोछे विमानपत्तनस्य नूतनं यात्री प्रकोष्ठ भवनं 98.2 km दीर्घः निम्मू पदुम दारचा राजमार्गः 9 MW क्षमतायाः हानु लघु जल विद्युत परियोजना 66 KV दाह हानु खालत्सी विद्युत प्रसारण पंक्तिः सिंधु तटे भारतस्य प्रथमं शैलचित्र संरक्षण उद्यानम् अथ च हिमसरोवर परियोजनायाः अंतर्गतं 44 ग्रामेषु विकसितानि 44 जल निकाय सरोवराणि सम्मिलितानि सन्ति। केन्द्रशासित प्रदेशस्य सर्वेषु 7 जनपदेषु अस्य आभासीय लोकार्पण कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम्। लेहनगरस्थे सिंधु तटे आयोजिते मुख्य कार्यक्रमे लद्दाखस्य उपराज्यपालः VK सक्सेना केन्द्रशासित प्रशासनस्य वरिष्ठाधिकारिणः सेनायाः उच्चपदस्थाः अधिकारिणः सामाजिक राजनैतिक प्रतिनिधयः अथ च विशाल संख्यायां नागरिकाः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य नवदिल्ल्यां 26,000-tama vrshasya एशियाई क्रीडास्पर्धासु भागं गृहीतवता भारतीय क्रीडक दलेन सह संवादः क्रियते। जापान देशस्य आईची

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Shagun Chopra with my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है शगुन।
0: Yes, benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 2% का उछाल। सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की तेजी। निफ्टी 23,000 अंक के आसपास बंद हुआ। देश का उत्पाद निर्यात इस वर्ष सितंबर में 23% की बढ़त के साथ $44.4 अरब बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11% उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक यानी 1.66% की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार का प्रदर्शन आज मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended higher today. The Sensex surged 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. The mid-cap 100 index dropped nearly 0.4% and the small-cap 100 index shed 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा 4.6% ऊपर आया, आईसीआईसीआई बैंक 4.2% के लाभ में रहा और रिलायंस में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इसके विपरीत बीईएल और ट्रेंट में 0.6% की गिरावट आई, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.1% से ज्यादा नीचे आ गया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended in the positive note. Among the top gainers, top 10 banks climbed 2.3%, private banks advanced over 1.8% and IT jumped 1.5%. In contrast, capital goods dropped over 2.4%.

0: Power slipped more than 1.8% and PSU banks dipped 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,668 companies declined, 1,720 advanced and 203 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एकेबी, आज के मार्केट की हम बात करें तो सेंसेक्स में हमने देखा लगभग 1,500 अंक से अधिक का उछाल आया, वह निफ्टी भी 23,000 के आसपास पहुंच करके बंद हुआ। कई दिनों बाद ये आंकड़े हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रहे हैं, तो इन तेजी के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, घरेलू कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, या फिर इसे बाजार में एक मजबूत वापसी का संकेत माना जा सकता है?
2: देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बाजार में मजबूती आने का ये संकेत है। ये जो आज का जो उछाल आपने देखा है, इसको हमें बारीकी से देखना है। इस उछाल में के पीछे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक सेंटर्ड रैली है, इसमें अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है
1: जी।
2: तो ये रैली सिर्फ फोकस्ड है लार्ज कैप स्टॉक में, ये रैली सिर्फ फोकस्ड है आईटी सेक्टर में, ये रैली फोकस्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। आपको मालूम होगा कि कल सरकार ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया था कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका। सो उसी का एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो Q2 जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी उछाल आया है, और उसी के कारण हम ये देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में आपका जो बढ़त आज आपको हासिल हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बढ़ोतरी हमें पिछले कई महीनों में दिखी, वो आज वो काफ़ी गिरावट में आई। उसका कारण भी ये है कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज क्योंकि उस लेवल में, और दूसरी बात यह है कि जो रुपया जो है और रुपए में थोड़ी मजबूती आई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीशन से, उससे भी जो मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती आई है। पर अगर आप ये समझे कि आज की जो मजबूती आप देखी, ये कोई अगले दिनों का संकेत है, ये मैं नहीं मानूंगा। ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी भी चलती रहेगी, और ये एक रिकवरी फेज है, और रिकवरी फेज का कारण जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग में और लार्ज कैप स्टॉक में जो एक रिकवरी और Q2 अर्निंग्स की जो एक मजबूती है वो दर्शाती है।
0: सर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स दे फेस प्रेशर डिस्पाइट द रैली इन द मार्केट, सो एंड आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू, बोथ ऑफ देम आई विल क्वेश्चन राइट नाउ ओनली। सो डज दिस इंप्लाई दैट इन्वेस्टर्स आर कॉन्सेंट्रेटिंग देयर कैपिटल ओनली इन सिलेक्ट लार्ज कैप कंपनीज, फर्स्ट वन, एंड व्हाट सिग्नल शुड रिटेल इन्वेस्टर्स टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डाइवर्जेंस?
2: सो आई थिंक व्हाट द इन्वेस्टर्स आर डूइंग is they are pulling their money out of the small and the mid-cap stocks because the small and the mid-cap stocks had already appreciated to a level where profit booking was possible. So they are pulling their money out and they are also reinvesting in the large-cap stocks and taking positions and keeping their powder dry because we are entering into a major big IPO phase. And when you are entering into a major IPO phase, like the Jio, Reliance Jio IPO is going to hit the markets very soon. It will be one of the largest IPOs. So that IPO would mean that the domestic investors are gearing up for that position. So I think the mid-cap and the small-cap profit booking has led to the surplus which is going into the large cap, and the large cap is being positioned as a preparatory step for investing in the new IPOs that are coming.
1: एकेबी, आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स ने मार्केट को काफी सहारा दिया, आपने भी आईटी शेयर्स का जिक्र किया है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में काफी कमजोरी देखी जा रही, तो इन्हीं सेक्टर्स में बाजार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ऐसा फेज आपको आपको लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली जो व्यापक हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी और सभी चीजों में आगे एक जैसा माहौल देखने को मिलेगा?
2: आपने एक बहुत सही प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ जो है बहुत क्वार्टर के बाद एआई की जो चपेट आईटी सेक्टर में आई थी उसको उसके ऊपर जो इंडियन आईटी सेक्टर की जो बायोंसी जो रेजिलियंस जो है उसको दर्शा रहा है और बहुत क्वार्टर के बाद जो Q2 अर्निंग्स जो आ रही हैं सब आईटी कंपनीज की Q2 अर्निंग्स में बहुत बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर को हमें ट्रैक करना पड़ेगा और किस तरह से हम आगे आईटी सेक्टर को देखेंगे उसको हमें ये एक बहुत बड़ा एक एक इंडिकेटर रहेगा मैं समझता हूँ।
0: Also, Mr. Bhattacharya, PSU bank performance. I mean, what's your opinion about PSU bank performances nowadays? What's
2: well, I think what's happening is that the PSU banks have done very well since the prompt corrective action plan was put in place by the Reserve Bank of India in 2017. Over the next 3-4 years, the PSU banks have done very well in reducing their gross non-performing assets. Even their net non-performing assets have come to a very, very comfortable level. And IDBI Bank, which is also considered a public sector bank, has reached a point where it could get a reasonable premium on the prevailing market price to be sold to a foreign investor. So I think public sector banks have done well. They are seeing credit visibility. The interest margin, the NIM, net income interest margin, is still very strong as comparable with the private sector banks. So I think public sector banks are doing reasonably well.
0: Now shifting our focus to Tech Mahindra result. Tech Mahindra today reported its financial results for the second quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue increased by 15.6% on an annual basis to 16,180 crore rupees. The firm's net profit rose by nearly 33% to 1,585 crore rupees year over year. The board also approved an interim dividend of 15 rupees per share.
1: चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 14 अक्टूबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 13.21% बढ़कर 13,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार रिफंड में अधिक तेजी देखी गई, पिछले साल के 2,13,000 करोड़ रुपए से 24.22% बढ़कर ये 2,65,000 करोड़ रुपए हुआ। इस अवधि के दौरान प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी संग्रह में 51% से अधिक का उछाल आया और ये 46,840 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक ही जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं मौजूदा व्यवस्था में, ऐसा आपको लगता है कि तमाम चीजें बदल रही, खासतौर पर जब हम कर संग्रह की बात करते हैं, सरकार नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही, नए तरीके लेकर के आ रही, इससे काफी आंकड़ों में तेजी आई, बढ़ोतरी आई है और नई चीजें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं।
2: देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो टैक्स कलेक्शंस जो केंद्रीय सरकार करती है उस टैक्स कलेक्शन में जो एक बायोंसी हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो अगर आप नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो वृद्धि दर जो है ये ना कि सिर्फ कॉरपोरेशन टैक्स से हुई है बल्कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स से भी हुई है। इसका मतलब ये जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी जो है वो जब टैक्स बेस जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और मैं यही मानता हूँ कि अगर यही ट्रेंड अगले 6 महीने में बरकरार रहे तो सरकार की जो ग्रोथ रेट जो बजट में दिखने को आया था वो ग्रोथ रेट का लक्ष्य वो पूरा करके उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। और जैसे हमने अभी भी कहा कि जो IDBI बैंक की जो विनिवेश से जो पैसा जो आएगा करीबन 32,000 करोड़ उससे भी काफ़ी सरकार के खजाने को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सरकार की जो वित्तीय जो घाटा का जो एक चैलेंज हर साल में आता है मुझे लगता है कि इस साल हालांकि वैश्विक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है पर उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस बार जो केंद्रीय सरकार की जो पब्लिक फाइनेंस जो है, जो वित्तीय घाटा जो है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए कोई ज्यादा असुविधा नहीं होगी।
1: सितंबर में भारत में कुल श्रम बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में

0: इस साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार इनसे रोजगार संकेतकों में सुधार प्रदर्शित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमबल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। कुल श्रम बाल भागीदारी दर बढ़कर 55.5% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पिछले साल के मुकाबले मामूली गिरावट आई है। महिलाओं की भागीदारी में पिछले साल के मुकाबले सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अक्टूबर 2025 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 52.7% हुआ है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात अक्टूबर 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी में सुधार देखा गया। कुल बेरोजगारी दर पिछले साल सितंबर के मुकाबले 0.25% अंक घटकर 5% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर गिरकर 4.2% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 6.8% पर लगभग स्थिर है। एकेबी सितंबर में जिस तरह हम आंकड़े ये देख रहे हैं, 5% रह गई है, रोजगार के मोर्चे पर भी सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। इन आंकड़ों से आपको क्या नजर आता है, कैसी परिस्थिति इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से?
1: देखिए, जो डेटा जो पॉइंट जो आपने अभी बताया है, उसमें ये लगता है कि दो चीज मुझे साफ नजर आ रही है। एक तो है बेरोजगारी दर जो है उसमें घाटा हुआ है, वो एक इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरी बात, उससे भी ज्यादा बेहतर अच्छी खबर ये है कि जो वुमन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, उसमें हमें इंक्रीज दिखी है। और तीसरी बात है कि जो रूरल लेबर फोर्स जो है उसमें अर्बन से ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों चीज हमारी जो जॉब सिचुएशन जो है उसके लिए एक अच्छा एक इंडिकेटर है, सिग्नल है इकोनॉमी के लिए, और हमें इसको ट्रैक करना चाहिए।
2: एंड सर, जस्ट टू ऐड देयर, शुड दिस बी व्यूड एज जेन्युइन इंप्रूवमेंट इन विमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस?
1: वेल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड। देयर इज अ डेफिनेशनल चेंज इन द वे वी आर काउंटिंग वुमन लेबर पार्टिसिपेशन, द हाउस होल्ड वर्क दैट वुमन डू, दैट इज ऑल्सो नाउ बी इंक्लूडेड इन द जॉब्स दैट बीन क्रिएटेड। सो टू great extent it may not be reflective of organized sector employment, but it may be reflective more of the unorganized sector, the household sector employment that people engage in,
2: especially women.
1: Right.
2: Now we'll be reflecting on the country's merchandise exports, which rose over 23% to $44.4 billion in September this year, as compared to $36.08 a year ago. According to the data released by the Commerce and Industry Ministry, the growth in merchandise exports was driven by electronics goods, petroleum products, organic and inorganic chemicals, engineering goods, cotton yarn, handloom products, among others. Merchandise trade deficit narrowed to over $30 billion from $33 billion in September last year. India's overall exports, including merchandise and services, grew 10.99% to an estimated $80.75 billion from $72.76 billion a year ago. So, Mr. Bhattacharya, how do you see the 23% growth in exports and keeping the current dynamic geopolitical scenario in view?
1: Well, it's a very welcome sign. 23% growth has coming on top of 19% growth in August. When you're talking about growth, you are not talking about it is mainly the merchandise goods exports. And what happens is that when the rupee depreciates, the Indian exports competitiveness gets a boost. And even though at certain level people are a little worried about the way the rupee has depreciated in the last few months, but what we have seen is a positive impact of that rupee depreciation in the export sector, where our merchandise goods exports, after several months of tepid performance, have done very well with a double-digit growth rate being seen in the last few months. And the numbers that you have just now shown is actually confirming that how a rupee that reflects its actual strength through depreciation is actually helping the competitiveness of India's exporters, and that means also that the MSME sector, which accounts for a large segment of exports, they are creating more jobs, so which is also a fact which has been confirmed by the employment data that was just read out.
2: So overall, it's a good news, right?
1: Yeah.
2: We are staying with the Commerce and Industry Ministry only. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today expressed confidence that India will remain among the fastest growing large economies over the next 20 to 25 years, supported by its youthful population, also demographic dividend, large domestic market and entrepreneurial drive. He made these remarks while addressing the inauguration of the SRCC Centenary Conclave on Pathways to Viksit Bharat in New Delhi. Speaking on free trade agreements, the minister stated that the U.S. bilateral trade agreement's first tranche has been finalized.
3: The U.S. bilateral trade agreement first tranche has been finalized. It's going through the final contours, the legal drafting, and we hope to be able to finalize that soon and operationalize that once we get comparable advantage or competitive advantage over our peer countries.
2: Mr. Bhattacharya, how do you view this particular development?
1: Well, I think it's a very positive development because only a few days ago, the impression was that the India-US trade deal may have reached a plateau and not further movement will take place. But what the minister just now said suggests that progress has been made and India and US, the world's two large economies, will probably sign an agreement sooner than later.
0: AKP, अगर इंडिया के उत्पाद निर्यात की हम बात करें तो अमेरिका को लेकर के लगभग 51 अरब डॉलर अप्रैल से सितंबर के महीने में इस वर्ष बढ़ोतरी हम देख रहे हैं. एक तरफ हम समझौते की बात कर रहे हैं और निर्यात भी हमारा बढ़ रहा है. ये परिस्थितियां इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए अगर देखें कैसी नजर आती हैं आपको?
1: देखिए, इसका मतलब यही है कि जो विश्व की जो दो बड़ी बड़ी अर्थनीतियों में से भारत और यूएस हैं, और भारत की जो एक्सपोर्ट्स जो डिमांड यूएस से आती है भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए
0: जी,
1: वो ऐसे सेक्टर से आती है उसकी जो भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है, जो प्रतिस्पर्धिता जो है, उसमें अभी तक कोई आँच पहुंची नहीं है. और आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त जो टैरिफ जो है अभी भी काफी वस्तुओं के ऊपर सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का ही टैरिफ लगा हुआ है. कोई ज्यादा टैरिफ अभी तक आया नहीं है और उसी का कारण यह है. और रुपया डिप्रिशिएट होने के बाद भारतीय जो निर्यात जो करते हैं उनके लिए एक बहुत एक पॉजिटिव साइन है.
2: Now we'll reflect on the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. U.S. Ambassador to India Sergio Gore has described India as an unmatched market for American companies, and he was speaking at this Bloomberg New Economy Forum today in New Delhi. Mr. Gore highlighted the growing cooperation between the two countries across sectors. This included defense, IT and trade. Mr. Gore also underlined that India is well positioned for AI and technology development on its own soil, adding that partnerships with leading American companies would be mutually beneficial. He expressed confidence that India and the U.S. would conclude a trade deal, saying the two sides had made substantial progress despite the complexity of the negotiations. Meanwhile, Ambassador Gore said that the U.S. President Donald Trump is expected to make a decision within the next 10 days on sanctions provisions that could affect countries buying Russian oil and gas.
4: We have ongoing discussion on that. So the sanction options that Congress passed, they're not targeted at any individual country. It just happens that India does fall in one of those buckets, along with a lot of other countries. The goal is not to punish anyone. The goal is to try to bring an end to this war. I do think the president will make a determination on that over the next 10 days.
2: The National Payments Corporation of India, NPCI, has postponed the implementation of the merchant discount rate, MDR, on select person-to-merchant UPI transactions. MDR, which was earlier scheduled to come into effect from today, will now be implemented immediately after Diwali. NPCI has said that the implementation date will be notified separately.
0: एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली। चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 7.6% लुढ़क गया। जापान का निक्केई 4.9% नीचे आ गया। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो ताजा रिपोर्ट मिलने तक जर्मनी का इंडेक्स 0.4% गिर गया था, जबकि लंदन का फुटसी 100 इंडेक्स 0.7% ऊपर था। आर्थिक मोर्चे पर अगस्त में ब्रिटेन की सकल घरेलू उत्पाद दर में मासिक आधार पर 0.1% की वृद्धि हुई। इसमें उत्पादन क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी ने सेवा और विनिर्माण क्षेत्र की कमियों को दूर किया है।

0: हालांकि बढ़ोतरी जुलाई में दर्ज हुई 0.4% की तेजी के मुकाबले धीमी रही। वार्षिक आधार पर अगस्त में जीडीपी में 2.1% की बढ़त हुई, जो अगस्त 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। एकेबी, आज कई दिनों बाद हमने साउथ कोरिया के इंडेक्स में तेजी देखी है और ये तेजी भी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते नजर आई। हालांकि एक तरफ आईटी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन चिप सेक्टर नेगेटिव खबर लेकर गया, जबकि कुछ समय पहले तक लगभग दोनों एक ही वे में पैरेलल चलते थे।
1: देखिए, जो जो मार्केट में जो जो चिप सेक्टर की जो ट्रबल्स जो हैं, चैलेंजेस हैं, वो अभी कहीं कहीं नहीं है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अभी भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल मामला है ये, और जो अगर आप बारीकी से देखें तो साउथ कोरिया कहें या जर्मनी कहें या यूनाइटेड किंगडम की जो स्टॉक मार्केट को देखें, तो वो उनके इकोनॉमी की जो जो जो दुर्बलता है उसको रिफ्लेक्ट दर्शाती हैं। हालांकि अगर आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन जो उन्होंने अपग्रेड किया है, उसी के लिए भी थोड़ा बहुत जो भारत में जो स्टॉक मार्केट ने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसका भी कारण एक है। और इनकी जो एशियन और बाकी एशियन और यूरोपियन मार्केट में जो ग्रोथ की जो जो आउटलुक उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं लग रही है, उसके लिए भी उनके स्टॉक मार्केट में ये धीमापन दिख रहा है।
0: ब्रिटेन के लिहाज से एक अच्छी खबर वहां पर ये देखने को मिली कि वहां जीडीपी मासिक आधार पर 0.1% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे समय जब अमेरिका की स्थितियां ब्रिटेन और यूरोप को लेकर काफी तेजी से बदल रही है, तो ब्रिटेन के लिए कितनी अच्छी खबर इसे माना जा सकता है?
1: इतने बहुत महीने बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, दुर्बलता जो थी, उसके बाद ये रिकवरी हुई है। मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक इकोनॉमी के एक एक बाउंस बैक वो है, और इसमें हम ज़्यादा कोई रीडिंग नहीं करना चाहिए।
2: Turning our attention or staying with US markets, Wall Street ended lower yesterday, weighed down by semiconductor stocks and a hotter than expected inflation reading. Among the major indices, the Nasdaq Composite plunged 1.9% and the S&P 500 shed 1.1%. Dow Jones Industrial Average fell by 0.1%. On the economic front, the Consumer Price Index CPI inflation climbed to 3.7% in September from 3.4% in August. And this is according to data released by the US Bureau of Labor Statistics. So Mr. Bhattacharya, Fed is going to meet end of this month. How do you think this latest the latest CPI will impact that?
1: Well, the indications are very clear. The last review the Fed had clear given indications of what it wants to do, and if inflation rate going up and the bond market rates again going up and remaining strong, there is a strong possibility that the Fed might do what is expected of it to push up the rate very, very marginal point. So I wouldn't be surprised if the Fed goes in for a higher rate.
2: राइट.
0: लेकिन जिस तरह से महंगाई दर, पेट्रोलियम के दाम और ब्याज दरों में जो तेजी का माहौल बन रहा है यूएस में, उससे तो परिस्थितियां कुछ और ही नजर आती हैं।
1: बट सवाल यह है कि इन्फ्लेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है या ग्रोथ? इस समय इन्फ्लेशन को रोकना फेड के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चुनौती है, क्योंकि उनका जो इन्फ्लेशन टारगेट है 2% का है, और इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 3% के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल बैंक की जो जो जो जो मैंडेट जो है उसको पूरा करने के लिए, वो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, वो शायद इंटरेस्ट रेट में थोड़ी बहुत ऊपर कर सकने का चांसेस ज़्यादा ही दिख रहे हैं।
2: And global crude oil prices, they eased today. Brent crude was trading 1.7% down at $104.21 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.2% down at $94.95 per barrel at the time when they were writing the report.
0: तो AKB crude oil पर आपके क्या opinion होंगे?
1: Crude oil में तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दाम थोड़े घटते हैं तो हमारी जो जो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उसके लिए ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। ये स्टेबिलिटी आएगी और हमारी ऑयल कंपनीज की जो जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है उसमें भी अच्छा एक प्रदर्शन कर सकती है। तो पर स्टॉक मार्केट की तरह क्रूड ऑयल प्राइस के भी वॉलेटाइल है, ये ऊपर नीचे जा रही हैं। इस वक्त इनका जो जो लेवल जो है वो अभी भी हमारे देश के लिए उतना अच्छा नहीं है, इसको और भी नीचे आना चाहिए अगर हमारी इकोनॉमी का पूरा फायदा उठा सके।

0: हिट मंत्रा फॉर नाउ गुड बाय।
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं और मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। भारत में सितंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ। वहीं शहरी महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर

केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं गौरा धवनलाल।
1: नमस्कार, हमारी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज का नाम है जन सेवा से देश सेवा। हमारी आज की थीम है उद्यमिता और नए भारत की अर्थव्यवस्था। फोकस एरियाज रहेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन। तो आइए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले स्वागत है मिस्टर अशोक चांडक, जो प्रेसिडेंट IESA में है। अशोक जी, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सेक्रेटरी जनरल एंड CEO PFT चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
1: आपसे शुरुआत करते हैं अशोक, एंड आई नो कि सेमीकंडक्टर्स इज आपके एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, आपके एरिया ऑफ पैशन भी है। तो ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको सेटअप किया था, तो इसका उद्देश्य क्या था?
2: सबसे पहले मैं तो एक लाइन आम भारतीयों के लिए कहूंगा कि सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं, कार चलाते हैं, टीवी देखते हैं, अस्पताल में हमारे इलाज की मशीनों से स्कैनिंग किया जाता है, इस सब के पीछे सेमीकंडक्टर चिप्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए आज खेती, स्वास्थ्य, बैंकिंग, रक्षा, परिवहन, अंतरिक्ष जैसे सभी क्षेत्रों में चिप्स की जरूरत है। और ये सिर्फ तकनीक का विषय नहीं है, लेकिन ये भारत की अग्रसर होने की बात है। अब सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य जो है, ये शुरू हुआ था 6 साल पहले, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से बोला गया। उसका पॉलिसी नंबर 1 भी अनाउंस हुआ था, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसका प्रमुख उद्देश्य है सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना। वैसे तो भारत काफी लंबे समय से चिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर करने में लगा हुआ है, लेकिन ये सारा जो काम है ये दूसरे देशों पर निर्भर होता है और दूसरे देशों की कंपनियों के लिए किया जाता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन उसके वजह से हमारा जो चिप निर्माण का खुद का जो काम है वो आगे कभी बढ़ा नहीं था। और इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इसमें पहले चरण में 76,000 करोड़ का 76,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और अभी दूसरा मिशन भी चालू हुआ है कुछ महीनों पहले, जिसे सेमीकॉन इंडिया 2.0 कहते हैं। इसमें अभी एक्सपांशन किया गया फुल इकोसिस्टम के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जिसमें चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मशीन्स, मटेरियल्स, R&D और स्किलिंग, ये सारे मुद्दे शामिल है। तो एक शॉर्ट में कहूंगा अभी कि पहला तो आपूर्ति में भरोसा करना है, इसलिए हमारे चिप उद्योग को यहाँ पर ग्रोथ करना, उनके लिए सपोर्ट करना जरूरी है। दूसरा, आर्थिक विकास। कोई भी देश के लिए सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि इस पर काफी चीजें निर्भर करती है और इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, कंपनियों को नए अवसर प्रदान होंगे। और तीसरा, हमारी जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, इसको भी बढ़ाना है। तो उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम भी दुनिया की तरह चिप बनाते रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम उन क्षेत्रों को मजबूत करें और जहां पर भारत की क्षमता विकसित हो सकती है और भारत दुनिया की जरूरतें भी पूरा कर सकता है।
1: डॉक्टर मेहता, हम ये तो जानते हैं कि सरकार का फोकस चिप मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है और अलग अलग स्कीम्स भी इनको इनकरेज करती हैं, चाहे वो इनोवेशन की हो, चाहे टिंकरिंग लैब्स हो, मगर इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? और आई थिंक अब तक तो थोड़ी जर्नी तो हम तय कर चुके हैं, और कुछ चैलेंजेस इसके रिस्पांस में जहां पर और मदद चाहिए इंडस्ट्री को इसके लिए?
3: देखिए, अभी अशोक जी ने बहुत अच्छा पूरा इसको विस्तार से बताया, और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेमीकंडक्टर मिशन या हमारे जो अटल इनोवेशन मिशन, ये सब इनोवेशन को अपने डेली एंटरप्राइजेज में और कैसे उसमें एंटर कर सकें, इसके बारे में इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा इसमें जागरूक है। और जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल में जो पिछले 2-3 साल में एक सेमीकंडक्टर मिशन का एक इकोसिस्टम देश में क्रिएट किया है, सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया है, उस

0: सारे जो इंडस्ट्री है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
1: पर ऐड करूंगा यहाँ पर
2: जी जरूर।
1: कि जो टोटल अभी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो 12 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, इसमें जो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, इसमें करीबन 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें 5 प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हो रहे बल्कि वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ 24 चिप डिजाइन की प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है।
2: आइए सुनते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर ये रिपोर्ट।
3: सेमीकंडक्टर यानी चिप आज की लगभग हर तकनीकी चीज का अहम हिस्सा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना है। इसका लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के तहत ध्यान सिर्फ चिप बनाने पर नहीं है, इसमें चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन यानी फैब, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण पूरी श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का एक उद्देश्य चिप डिजाइन है। भारत में पहले से ही कई इंजीनियर सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्टार्टअप्स और डिजाइन कंपनियों को टूल्स, फाउंड्री सेवाओं और अन्य सहयोग के जरिए समर्थन देने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य देश में चिप डिजाइन उद्योग को तेजी से बढ़ाना और स्वदेशी बौद्धिक संपदा यानी आईपी विकसित करना है। यह मिशन केवल तकनीकी तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा रोजगार और कौशल विकास से भी जुड़ा है। मिशन में शोध, वैश्विक सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रतिभा विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार निवेश सहायता, तकनीकी साझेदारी और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे कदमों पर काम कर रही है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन केवल चिप बनाने की योजना नहीं है बल्कि यह देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा प्रयास है।
2: सो जैसे अभी डॉक्टर मेहता ने कहा कि हम जब बात करते हैं ये लॉन्ग टर्म है, आई थिंक इंसेप्शन से प्रोडक्शन, और अभी आपने अशोक प्रोडक्शन की बात भी करी, मार्केट में आ गए हैं, आर दे बीइंग यूज्ड, फीडबैक, बिकॉज ये पूरा सर्किट होता है टू ऑल्सो कैप्चर द मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि वो कहते हैं ना हिट द ग्राउंड रनिंग, कब हम लोग इस स्तर पे पहुंचेंगे कि हमारे जो इंटरनली प्रोड्यूस सेमी कंडक्टर्स हैं दे आर एक्चुअली हमारी काफी सारी नीड वो सेटिस्फाई कर रहे हैं?
1: इसमें थोड़ा और समय लगेगा। जैसे कि मैंने बताया 5 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं लेकिन उनके पास भी अभी मैक्सिमम जो सप्लाई होगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन रही है अभी, और बाकी 7 प्रोजेक्ट और भी बनेंगे, 1-2 साल में वो ऑन ग्राउंड हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे जो देश की कंजम्पशन है सेमीकंडक्टर की, उसकी पार्शियल क्षमता से हम पूरी कर पाएंगे। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि 2030 में भारत में करीबन $103 बिलियन का सेमीकंडक्टर का डिमांड उभर कर आ रहा है। आज हम 2026 की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की डिमांड करीबन $55 बिलियन का है और सप्लाई less than $1 बिलियन और इवन उतना भी नहीं है। तो जैसे ही हमारे ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे हम देख सकते हैं कि करीबन $10 से $20 बिलियन का जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से फुलफिल होगा और बाकी हमें फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट बनेंगे, जो परियोजनाएं शुरू होगी प्रोडक्शन में, वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है बाकी अदर कंट्रीज में, जिसे मैं कहता हूं डिपेंडेंसी बदल के बन जाएगी इंटरडिपेंडेंसी। मतलब हमें कई बार ये देखने में मिलता है, सुनने में पड़ता है कि कुछ कंट्रीज आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, वो अपने अपने लिमिटेशन लगाते हैं कुछ देशों के लिए। हमें उस बात से था इसका छुटकारा मिलेगा क्योंकि हमारे प्रोडक्शन पर भी कई देश डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें करीबन 1000 टाइप की चिप लगती है कंट्री में और कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो पूरे तो 100% हमारा इसमें सेल्फ रेजिलियंस नहीं होगा, सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि करीबन 20% का हमारा 2-3 साल में लक्ष्य पूरा जरूर हो जाएगा इसमें। और साथ में अभी जो नया स्कीम अनाउंस हुआ है, जैसे मैंने बताया 2 महीना पहले, इससे नए प्रोजेक्ट और शुरू होंगे, तो 2030 तक वो प्रोजेक्ट भी अपने प्रोडक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट 2 साल में पूरे होते हैं जिसे ओसैट और असेंबली कहा जाता है, और कुछ प्रोजेक्ट को 4-5 साल लगते हैं जिसे फैब्स और फाउंड्री कहा जाता है। तो हमें दोनों का कम्बाइनेशन देखना है, इसलिए कहता हूँ कि 2030 में क्षमता काफी बढ़ जाएगी। हमारी जो अभी प्रोडक्शन हो रही है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऐसा हमें मैसेज मिल रहा है कंपनीज से कि उनका डिमांड पूरा फुलफिल्ड है, मतलब जो कैपेसिटी है फुल्ली बुक्ड है, उनके पास पूरा रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड का, कुछ इंडियन कंपनीज का। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा एक क्रेडिबिलिटी बन गया है, ये जो हम ट्रस्ट वर्दीनेस कहते हैं कि भारत में चिप बन गई है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी ग्लोबल मार्केट में और घरेलू मार्केट में भी उसका अच्छे से उपयोग हो रहा है।
2: डॉक्टर मेहता, हम ये भी जानते हैं कि आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है बड़ी फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आते हैं। तो जब हम किसी चीज में जिसका स्पेशली जेस्टेशन पीरियड लंबा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बीच में टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, तो आप

0: को क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी स्टार्टअप्स, हमारा इकोसिस्टम गियर्ड अप है कि वो मोबिलिटी, वो एक्सपेंशन और नई टेक्नोलॉजी को अंदर लाने के लिए हम लोग इक्विप्ड हैं दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है सेमीकंडक्टर्स में?
1: जी बिल्कुल, ये तो सेमीकंडक्टर की एक टेक्नोलॉजी है, बट अगर आप ओवरऑल जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या हमारे एमएसएमईज हैं, क्या वो इसके लिए गियर्ड अप हैं या नहीं है, देश में क्या वो एक इनोवेशन का इकोसिस्टम है या नहीं है, ये आपने सवाल पूछा, तो डेफिनेटली मैं इस पे कहूंगा कि जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, हमारे देश में सिर्फ 400 रजिस्टर्ड जो है स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 2,25,000 से ज्यादा हमारे देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न ऑलरेडी देश में हो चुके हैं। कहने का मतलब है आज हर जो युवा यहाँ पे है, क्योंकि हमारी कंट्री में 65% लोग यंग हैं जो कि 35 इयर्स के कम की एज के हैं, तो मेन इसमें मकसद ये है कि युवाओं को हम सिर्फ जॉब सीकर ना बनाएं बल्कि जॉब क्रिएटर की इसमें भूमिका हमारे युवा निभाएं। तो हमारी एम्बिशन अभी ये है कि सबसे पहले डिजाइन इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, लीड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि डिजाइन भी यहाँ पे हो और इनोवेशन भी इंडिया में हो और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में हो, बट इंडिया जो है वर्ल्ड में लीड करे टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की जहां तक एडॉप्शन की बात है, आज हमारे देश में, क्योंकि हमारे बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही एस्पायरिंग हमारी सोसाइटी है, आज देख लीजिए 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हमारे देश में यूज हो रहे हैं और हमारे देश का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है, और हमने जो यूपीआई का है पूरा एग्जाम्पल यहाँ देश में है, और किस तरीके से कोविड के टाइम में हमने नई टेक्नोलॉजी अपना के और देश में जिस तरीके से हमने कोविड को एक अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इतना आबादी वाला देश था, वहां पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं समझता हूं जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम बना है, एक इनोवेशन का इकोसिस्टम बना है, जो कि आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जो हमारी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगा, जब हम विकसित भारत 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, उसमें जो सेंट्रल जो पिलर होगा हमारे ग्रोथ का वो है टेक्नोलॉजी, और इंडिया सारी टेक्नोलॉजीज को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है और जिस तरीके से हमारे युवा जो है आज, चाहे आप स्टार्टअप की बात करें, चाहे स्पेस में है, जस्ट 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इंडिया भी है कि जिन्होंने स्पेस में जो है प्राइवेट सेक्टर और स्पेशली युवा जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं जो ओवरऑल एक देश में एक इकोसिस्टम बन रहा है उसमें सारे हमारे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे जो लोग हैं टेक्नोलॉजी में बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, और जो जितने आज अगर स्टार्टअप भी हमारे आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, बट हमें ये करना है कि जो टेक्नोलॉजी हम देश में एक ला रहे हैं नई नई, उससे जो है किस तरीके से हम एक आम आदमी की जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन जब तक ना हो तब तक उसका जो कि हर आम आदमी चाहे गांव में हो शहर में हो वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो और उसको यूज कर सके, और यही एक हमारे देश में इसमें खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, खास तौर पे आपके एग्जांपल है यूपीआई, और अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का जो हमारे देश में जितना सस्ता इंटरनेट है दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं पे भी इतना जो सस्ता इंटरनेट नहीं है, तो जो इस टाइम ओवरऑल हमने जो नया एक कदम लिया है सेमीकंडक्टर का, डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और दूसरा जो हमारे अटल इनोवेशन सेंटर्स हैं उसका डेफिनेटली मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, आईआईटीज हैं या दूसरे आईटीआईज हैं, कैसे हम अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू अपने युवाओं में, अपने यंगस्टर्स में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए कैसे उनको और इसमें पार्टिसिपेट करवाएं, और ये पूरे देश में चल रहा है। मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हर स्कीम में ये है कि उसमें कैसे हम युवाओं को जोड़ सकें, और युवा इसमें मैक्सिमम जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, और फाइनली यही हमारे देश की विकसित भारत बाय 2047 की उसकी जो अगर मैं कहूंगा फाउंडेशन स्टोन है, जो आधारशिला है, वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी रहेगी।
0: अशोक, डॉक्टर मेहता ने कहा नए कदम, आपने भी कहा कि न्यू इनोवेशन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नई चीज शुरुआत होती है तो टीथिंग प्रॉब्लम्स तो होती हैं। आपको क्या लगता है कि फिलहाल कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस, वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ चैलेंजेस आप शेयर करना चाहेंगे अशोक हमारे लिसनर्स के साथ?
2: भारत में जैसा मैंने पहले कहा कि चिप डिजाइन का काम तो कई सालों से हो रहा है, 2-3 दशक से हो रहा है, तो वहां पर हमारे पास मैन पावर, ट्रेंड पूल ऑफ द इंजीनियरिंग अवेलेबल है। करीबन वर्ल्ड का 20% चिप डिजाइन इंडियन इंजीनियर्स करते हैं, वो मुद्दा तो क्लियर हो गया। दूसरा,

0: मैन्युफैक्चरिंग, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भारत के पास कभी ये इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट ऑपरेशनल था जो कि मोहाली चंडीगढ़ के पास में SCL नाम से बोला जाता है, सेमीकंडक्टर लैब लिमिटेड, उतना ही था एक छोटा सा ग्लोबल कंपैरिजन में। तो भारत का जब ये एक जर्नी तय हो गया, हमारा जो रोड मैप बन गया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना जरूरी है अपने आत्मनिर्भरता के लिए और ऑल्सो ग्लोबल डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे पास उसके ट्रेंड मैन पावर नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम इन चीजों को भारत में कैसे लाए, और इसीलिए ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना हुई थी उसके तहत कुछ इंसेंटिव दिया गया है ग्लोबल कंपनीज को कि वो यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करें। और उसके साथ में मतलब ये हो गया कि हमें जो मेन चैलेंज है ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या ग्लोबल कंपनीज खुद अपना यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग सेट करें, ये एक बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी दृष्टिकोण के तहत काम चल रहा है, हमें उसमें पार्शियल सक्सेस है। मतलब जैसा मैंने बताया कि कुछ 12 प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुए थे उसमें एक कैटेगरी होती है असेंबली यानी टेस्ट, ओसैट बोला जाता है, उसमें हमें सक्सेस हो गया है क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट भी कम होता है और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी थोड़ा इजी है मैनेज करना। लेकिन जो दूसरा क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा है जिसे फैब कहा जाता है, फाउंड्री, वेफर बनाने की स्थिति, उसके लिए अभी भी हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट मिले हैं। एक टाटा का है, बड़ा इन्वेस्टमेंट $8 से $9 बिलियन का, जिन्होंने एक कोलैबोरेटर लिया है ताइवान से, और दूसरा है सिक्स सेम नाम की कंपनी जो ओडिशा में आ रही है, उन्होंने भी एक कोलैबोरेटर लिया। तो सिर्फ दो प्लांट है। तो हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज रहेगी, हम कैसे ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें, या उनसे हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट वेंचर बनाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से यही है। दूसरी बात, अब इंडिया के पास में जब मैंने कहा कि हमारे पास चिप डिजाइन के क्षमता है, लेकिन हमारी जो क्षमता है डिजाइन की वो थोड़ी कैप्टिव डिजाइन सेंटर के तहत बनी हुई है। तो चिप डिजाइन से जो एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की है उसके हिसाब से चिप बना के उसका प्रोडक्ट बनाए और फिर मार्केट में लाए, उसके लिए भी हमें चैलेंज है। अभी जैसे अभी रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट्स पर भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए हेल्प की थी, जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर है उसकी चिप बनाने के लिए गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, और जो CCTV है जो कैमरा लग रहे हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे इस टाइप के कई उदाहरण हैं जहां पर सरकार की मदद से, इंसेंटिव से ये मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन दो क्लियर कट, टू समराइज, मैं कहूंगा दो मुद्दे हैं जहां पर हमें मेन चुनौतियां है। एक, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी लाएं या ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आने के लिए प्रेरित करें, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है उसमें लेकिन काफी काम करना बाकी है। और दूसरा, जो हमारी चिप डिजाइन की क्षमता है उसको हम चेंज करें टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्रिएशन, उसका भी अभी काम चल रहा है। ये दोनों चुनौतियों का हमें आगे सामना करना पड़ेगा और इसके रास्ते निकाल कर आगे बढ़ना होगा।
1: आइए सुनते हैं स्टार्टअप इंडिया पर ये रिपोर्ट।
2: स्टार्टअप इंडिया पहल को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत युवाओं, उद्यमियों और नए विचारों वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता, आसान नियमों और बेहतर नेटवर्किंग के अवसर देने की कोशिश की जाती है। स्टार्टअप का मतलब केवल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी नए विचार पर काम कर रहा है, चाहे वह खेती के लिए तकनीक हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, ई कॉमर्स हो या क्लीन एनर्जी, तो वह भी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य ऐसे विचारों को बिजनेस में बदलने में मदद करना है। इस पहल का एक अहम हिस्सा है DPIIT रिकॉग्निशन, यानी विभाग द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता। यह मान्यता पाने के बाद स्टार्टअप कई फायदे पा सकते हैं, जैसे कर संबंधी छूट, आसान अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकारों की तेज प्रक्रिया और कई सरकारी योजनाओं तक पहुंच। पात्र स्टार्टअप्स को अपनी शुरुआती 10 वर्षों में से लगातार 3 वित्त वर्षों के लिए आयकर छूट का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। स्टार्टअप इंडिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और फंडिंग से जुड़ी जानकारी देता है। हालांकि स्टार्टअप की यात्रा आसान नहीं होती। शुरुआती फंडिंग, सही मार्केट, टीम बनाना, नियमों को समझना और लगातार बदलती तकनीक, ये सब चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल नए उद्यमियों को एक सहारा देने की कोशिश करती है। स्टार्टअप इंडिया केवल नई कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की युवा प्रतिभा को रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: तो आप सही बोल रहे हैं, आपसे यहाँ

0: ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मेहता कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल कंपनीज को इनवाइट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने किया है, ईज ऑफ वर्किंग, कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कम कर रही है, काफी बहुत सारा एफर्ट किया गया है, पर आपको भी इंडस्ट्री से फीडबैक मिलती होगी रेगुलर बेसिस पे, आपके फोरम्स होते हैं, कुछ मेन चीजें जो डिमांड है, जो आस्क है इंडस्ट्री की, जो आप सरकार के सामने रख सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, हमारा टाइम टू टाइम इसमें डिस्कशन मिनिस्ट्रीज के साथ होता रहता है और सरकार इस बारे में बहुत तत्पर है कि कैसे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल डेफिनेटली ये रहता है कि कैसे अच्छी पॉलिसीज बनाएं, बट एट द सेम टाइम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट्स पे होता है। जो सबसे बड़ी बात आती है जब कोई फैक्ट्री आती है, जब कोई नया कारोबार स्थापित करना चाहता है, कोई भी नया उद्यमी है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी है, और हालांकि कई स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल गुजरात ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, अभी उत्तर प्रदेश इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है, जिसमें कि लैंड जो है डिजिटली जो उसके मैप्स हैं वो सारे अवेलेबल हों, और कैसे कितनी इजी तरीके से, बिकॉज अल्टीमेटली जब कोई इन्वेस्टर आता है उसके लिए पूरा, ये मैं कह रहा हूं कि आज देश में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, लेबर लॉज की बात है, अभी जो नए लेबर फोर कोड्स हैं वो सब इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड है कि कितनी जल्दी हम उन्हें पावर कनेक्शन दे सकते हैं, कितनी जल्दी लैंड अलॉट कर सकते हैं और किस दाम में अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका है लैंड की, और इसमें हमारा ये सजेशन रहा है कि हम जो है एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लगाएं, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि बड़ी कंपनी तो अपना कर लेती है, बड़ी कंपनीज को इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो स्मॉल कंपनीज हैं, छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमईज हैं, उनको आज हमें एक ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमने जो गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि एक ऐसा बनाया जाए जिसमें कि कोई भी उद्यमी जाए और अपना वो उनको क्या चाहिए, पावर कनेक्शन चाहिए और सारी जो उनको अप्रूवल्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, या सारे अप्रूवल्स के साथ वो पावर कनेक्शन उनको मिल जाए, उनको जगह मिल जाए, जिससे कि वो अपना काम पहले दिन से ही शुरू कर सकें। हालांकि उसमें एक टाइमलाइन रख दी जाए कि अगर आपको हम दे रहे हैं तो इतने टाइम में इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, डेफिनेटली वो डिपेंड करे कि कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, उसके बेसिस पे जहां जहां जैसे जैसे जिस ज्योग्राफी में जो चीज अवेलेबल है उसी टाइप की अगर कुछ इंडस्ट्रियल अगर क्लस्टर बनाए जाएं जो कि प्लग एंड प्ले सिस्टम के हों, उससे जो है स्पेशली छोटे व्यापारियों को हम इनकरेज कर सकते हैं कि कैसे वो इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मैक्सिमम हिस्सा ले सकें। और अगर आप आज हम देखें तो स्टार्टअप्स हमारे देश में बहुत आ रहे हैं, बट मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो टेक प्लेटफॉर्म्स और इस पे आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, तो हमें जरूरत है स्टार्टअप्स को और मैन्युफैक्चरिंग में लाने की, और मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत ही टीडियस काम है जिसमें कि डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो करना है, तो मेरे ख्याल से इस पे एक अगर प्लग एंड प्ले सिस्टम बन जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर से बन जाए, उसमें कई ऐसे उद्यमी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जिससे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत देश में तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि आज भी हम कई टेक्नोलॉजीज पे कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए हमें बाहर के देशों में ही कई देशों में डिपेंड करना पड़ता है। हालांकि आज हमने करीब 40 देशों के साथ FTA कर ले हैं, बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के लिए खड़ा कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें करीब $1 ट्रिलियन मार्केट करीब खड़ा कर दिया है, और EU है, UK है, न्यूजीलैंड है, अपना GCC कंट्रीज में है, ये सारे जो है हमारे FTA साइन हो गए हैं। बट उस FTA का रियल फायदा तब मिलेगा जब जो हमारे प्रोडक्ट्स हों, जो यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे जो उद्यमी, वो जो है ग्लोबली बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हों। उसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने तो ओवरऑल अगर आप देखें गति शक्ति मिशन की वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें भी काफी अच्छा, उसमें भी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आ चुकी है, और जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, बट वहां पे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम क्लियर तैयार हो गया है। तो मैं समझता हूं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इसमें बहुत अच्छा एक सुधार आया है, बट अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की तरफ प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम अगर देश में तैयार हो जाए तो और भी जल्दी इसमें गति आ सकती है।
0: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है अशोक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी बात की डॉक्टर मेहता ने कि MSMEs को कैसे हम प्लग एंड प्ले मॉडल में लाएं, बिकॉज उनकी आई थिंक एक वल्नरेबल ग्रुप है MSMEs, और यही एक ग्रुप है जो लेबर इंटेंसिव भी होता है और जॉब्स की भी हमें जरूरत है इस देश में, सो आई थिंक कहीं इनको स्पेशल बेनिफिट्स तो दिए जा रहे हैं, बट ये भी कहा डॉक्टर मेहता ने कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक टीडियस काम है, एक टीडियस चीज है, और इसमें किसी को अंदर आने के लिए जब और लो हैंगिंग फ्रूट है, जब और आसान वाली चीजें हैं जैसे टेक प्लेटफॉर्म करें तो इट्स इजियर, उसमें ज्यादा आसान है। तो युवा इधर से आके मैन्युफैक्चरिंग में आए, इस वल्नरेबल ग्रुप में आए, आपका क्या फीडबैक, आपको क्या मिली है इसके बारे में, और कैसे सरकार इस वल्नरेबल ग्रुप को और इनकरेज कर सकती है, स्ट्रांग कर सकती है, क्योंकि ये तो बैकबोन है। अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज लें, उनके जो डाउनलाइन वेंडर्स होते हैं वो भी एमएसएमईज ही होते हैं।
2: मैं कहूंगा कि इसमें भारतीय कंपनीज के लिए एक क्षेत्र में काफी अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं और कुछ उसके मटेरियलाइज भी हो रहे हैं। विजुअली ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं ये तो हजारों करोड़ की फैक्ट्री लगती है इसमें, सही बात है, 5 बिलियन $8 बिलियन वगैरह। लेकिन ये उद्योग सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, इसमें फैक्ट्री बनने के बाद चलाने के लिए काफी चीजें लगती है, जिसमें कुछ मशीन्स है, मटेरियल्स है, केमिकल्स है, गैसेस है, कुछ चिप डिजाइन का मामला है, प्रोडक्ट क्रिएशन है, उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, उसमें वाहनों की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई है। तो हमें ये एक मन में और माइंड में पिक्चर क्रिएट करना होगा कि ये सिर्फ हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, है लेकिन उसके साथ में बाकी लोगों को भी इसमें अवसर है। अब रही सवाल बात युवाओं की, तो मैं कहूंगा कि इसमें युवाओं के लिए और न्यू जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो शुरू हुआ था, उसे कहते हैं C2S, दैट इज चिप टू सिलिकन। इसके तहत करीबन 400 इंस्टीट्यूट को हाई कॉस्ट डिजाइन टूल्स सरकार ने उपलब्ध करा दिए, जो जिसके लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है अदरवाइज, तो वो करा दिए। उसके तहत करीबन 65,000 स्टूडेंट्स को इसमें फायदा हुआ है। वो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंसिव टूल लेके अपने चिप डिजाइन करके, जिनका चिप अच्छा रहा उन्होंने कुछ सैंपल भी मैन्युफैक्चरिंग किए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट सेमिकॉन इंडिया हुआ था 17-18-19 सितंबर दिल्ली में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने 20 स्टूडेंट्स के हाथों से 20 चिप का उन्होंने उद्घाटन किया, बताया कि ये 20 चिप जो है उन्होंने बनाए हैं, उनको 20 चिप समर्पित किए गए प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित किए। तो ये देखिए एक बड़ा एग्जांपल है कि स्टूडेंट के लिए उसमें काफी काम चल रहा है। दूसरी बात कि इसमें इतना बड़ा ब्रॉड इकोसिस्टम है हमारा सेमीकंडक्टर का, जिससे कि अलग अलग रुचि और योग्यता वाले लोगों के लिए अवसर है। अगर किसी की रुचि मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर में है, तो वो चिप डिजाइन क्षेत्र में जा सकते हैं। किसको व्यावहारिक काम करना पसंद है तो वो मशीन निर्माण के लिए, रख रखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्ता जांच मतलब टेस्टिंग के लिए अवसर तलाश कर सकते हैं। अगर किसी की रुचि विज्ञान में है तो वो इसमें मटेरियल्स और R&D इनोवेशन उस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी उद्यमी बनना चाहता है तो अपना उत्पाद या किसी उद्योग की समस्या का समाधान भी विकसित करते थे। तो इसमें मैं कहूंगा विद्यार्थियों को बुनियादी पढ़ाई मजबूत करनी चाहिए, पढ़ाई के और एक क्षेत्र के लिए नए नए अवसर मिल रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने करिकुलम मॉडिफाई कर दिया है, अपडेट कर दिया है, जिससे कि सेमीकंडक्टर का काम उन्हें सीखने मिलेगा। कई यूनिवर्सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग की पायलट लाइंस का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी, जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक्सपीरियंस एक जरूरी होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी स्टूडेंट्स को मिलेगा। और मैं आपके आकाशवाणी द्वारा यही कहूंगा कि जितने कॉलेज और विश्वविद्यालय है, मैं उनसे कहूंगा कि वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें। सो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कोऑपरेशन जो टॉपिक है ये हमेशा चलते रहता है, मैं कहूंगा वो हमारे साथ काम करें, जिससे कि विद्यार्थियों को पता लगेगा कि उद्योग में वास्तव की किस कौशल की जरूरत है, और कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी दी जाएगी। अब वैसे तो भारत की पास बड़ी युवा आबादी है, और इस ताकत को हम अच्छी शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण और नए विचारों के तौर अगर विकसित जोड़ दे तो हमारे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मजबूत कार्यबल तैयार कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी।
0: डॉक्टर मेहता, आते हैं ग्लोबल लेवल पे, ये समझने के लिए कि हम बना रहे हैं, हमारी अपनी डिमांड है, बट कहीं इंटरकनेक्टेडनेस की बात हुई, वी आर ऑल्सो अ रीजनल पावर। तो आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया रीजन में भारत की जो हमने प्रोग्रेस बनाया है इस एरिया में, उसका पेस इज फास्ट इनफ कि हमें उसमें थोड़ी और गति दिखानी पड़ेगी?
1: देखिए, जो आज ग्लोबल साउथ की अगर आप बात करें, भारत ऑलरेडी अपनी लीडरशिप उसमें बनाने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली हमारे साथ और भी देश हैं, जो कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है जो कि इसमें, स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत आगे चाइना हमसे है। बट द सेम टाइम जो हमने स्टेप लिए हैं पिछले कई दिनों में, क्योंकि लीडरशिप में सिर्फ आपके पास कितना आपकी बड़ी इकोनॉमी है या क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है सिर्फ वही एक चीज जरूरी नहीं है, इसमें ये भी एक जरूरी होता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपकी कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है, क्या आपका जुडिशियल प्रोसेस है, क्या आपका जुडिशियल सिस्टम है और आईपीआर के किस तरीके से आपके प्रोटेक्शन है। तो इन सारी चीजों में अगर आपने देखा तो आज अगर कोई भी ऐसा देश है जब चाइना प्लस वन की बात कर रही है तो उसमें इंडिया जो है नंबर वन उनके दिमाग में रहता है। तो इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन क्रिएट जो है करी है। यही नहीं, अगर आप G20 की बात करें, हमने इतने सारे जो नए स्टेप्स लिए हैं जिसमें G20 में हमने लीड ली है और किस तरीके से हमने कोविड के टाइम में इंडिया में सिर्फ एक वैक्सीन बनाई नहीं बल्कि अपने कई देशों को हमने वैक्सीन दी है कोविड के टाइम में। और जब भी कहीं देश में या दुनिया में कहीं पे कोई आपदा आती है एशिया में, आपने देखा होगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करता है तो इंडिया करता है, चाहे आपदा कहीं पे भी आई हो। अभी नेपाल में हमने देखा आपदा आई, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें रिस्पॉन्ड किया। और जहां जहां आज कोई भी ऐसी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, पूरे लोग जो है भारत से अपेक्षा रखते हैं कि भारत उसमें हस्तक्षेप करे। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए संभव हुआ है कि पिछले जो भी 10-12 साल में भारत ने एक जो जिस तरीके से काम किए हैं और हमारा एक एक स्टेप है, क्योंकि एक लीडरशिप पोजीशन में हम आना चाहते हैं और उसके लिए हमने एक पूरा जो करना चाहिए एज अ लीडर जो देश देखना चाहता है वो स्टेप हमेशा हमने लिए हैं। और मैं समझता हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में अगर आप ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर अगर कोई है जिसमें पूरी दुनिया विश्वास करती है वो भारत देश है। और ये करना बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत सारी ऐसी हमारी डेफिनेटली हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है और ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इस टाइम जबकि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस चैलेंजेस चल रहे हैं और कोविड के बाद जिस तरीके से हमने जो कोविड के मार से जो देश उभर रहे हैं उसमें भी सबसे पहले भारत उभरा, और इस टाइम भी जब पूरी दुनिया में कई सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं, दो दो जंग बिल्कुल चली हुई है, तो उसमें भी भारत एक तेज गति से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उस ड्यूरेशन में भी। तो ये सब चीजें और जो हमें ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से हम एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भारत पे लोग विश्वास करते हैं, भारत से लोग, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो भारत को छोड़ना चाहता है या भारत में अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहता है। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले देश जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो भारत में आना चाहता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर मेहता, बहुत सुंदरता आपने कहा कि ट्रस्ट बनने में समय लगता है और बिगड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता, और हम ये ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स अशोक आपसे चाहेंगे ब्रीफली।
2: मेरा संदेश ये है कि सेमीकंडक्टर केवल चिप्स की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य की बात है। यह उद्योग, हमारे कारखाने, हमारे अर्थव्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और नई तकनीक विकसित करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। सरकार ने नीतियां बनाई है, उद्योग निवेश कर रहा है और भारतीय इंजीनियर दुनिया भर में चिप डिजाइन क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, उसके साथ साथ देश में नए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस नींव को और मजबूत करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि हम अभी 4C पर लगे हैं। 4C कौन से? इसमें एक है क्रेडिबिलिटी, हमारी अब क्रेडिबिलिटी स्थापित हो गई है पिछले 5 साल में जो काम हुआ है। कैपेबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी बिल्डअप हो रही है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो पार्ट 2 भी अनाउंस हुआ उसके तहत। पॉलिसी कंटिन्यूटी जो सरकार का चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, और कमिटमेंट ये सारे इंडस्ट्री का, तो ये 4C के तहत हमारे न्यू मजबूत हो रही है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है एज अ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और सेमी इंडिया, हम सरकार के साथ में, उद्योग के साथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये देश का जो जर्नी है ये बहुत जल्दी आगे एक्सप्लोर होके सफल होगा।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चंडाक जी और डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे कार्यक्रम आने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे थे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी गौरा धवनलाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप इसे हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे जनसेवा से देश सेवा का 29वां संस्करण। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 में शामिल हुए भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने 12 वर्षों में लगन से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। दिल्ली मेट्रो रेल निगम और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कहा, ये साझेदारी राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग प्रदान करेगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो वाणिज्यिक वाहनों से 2260 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए, 4 गिरफ्तार। और रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 में शामिल हुए भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। उन्होंने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
2: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने 12 वर्षों में लगन से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से गांव-गांव से युवा खिलाड़ियों को तलाशा और तराशा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हर जरूरी सुविधाएं दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें खेलों में नई ऊंचाइयां छूनी है। जापान के आइची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने 4th स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष 5 देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इस बीच दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA ने सीनियर महिला T20 ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए आज 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। सोनी यादव को कप्तान और श्वेता सहरावत को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। ये प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 20 नवंबर तक राउंड रॉबिन और नॉकआउट प्रारूप में खेली जाएगी। रेलवे ने सबसे ज्यादा 11 बार इस प्रतियोगिता में खिताब जीता है। अब एक नजर सर्वोच्च न्यायालय के आज के एक महत्वपूर्ण निर्णय पर। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट PG 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के जवाबों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक भूमिगत बुनियादी ढांचे की योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन और क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि यह साझेदारी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की रणनीतिक रक्षा विशेषज्ञता और दिल्ली मेट्रो की सुरंग निर्माण, भूमिगत इंजीनियरिंग तथा परियोजना क्रियान्वयन की विश्व स्तरीय क्षमताओं को एक साथ लाएगी। इसका उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग प्रदान करना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में तक्षणम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी भारतीय कलात्मक अभिव्यक्ति की समृद्धि और देश की विरासत के साथ साथ समकालीन जुड़ाव को दर्शाती है। इस प्रदर्शनी में प्रतिष्ठित और वरिष्ठ कलाकारों की कलाकृतियों और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के संग्रह से चुनी गई रचनाओं को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में करीब 145 कलाकारों की 200 से ज्यादा कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जो भारतीय कला की समृद्ध विरासत और समकालीन अभिव्यक्ति को दर्शाती हैं। ये प्रदर्शनी अगले महीने की 15 तारीख तक खुली रहेगी। धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज दिल्ली नगर निगम और प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मूर्तियों और पूजा सामग्री को सार्वजनिक जगहों, सड़कों तथा जल निकायों में अनियंत्रित रूप से फेंकने या विसर्जित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।
5: इस समझौते के अंतर्गत पहले चरण में निगम के विभिन्न वार्डों में 250 मूर्ति संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नागरिक इनमें धार्मिक अनुष्ठानों के बाद खंडित मूर्तियों और उनसे संबंधित पूजा सामग्री को सम्मानपूर्वक जमा कर सकेंगे। इसके बाद एकत्रित सामग्री का उचित प्रबंधन और पुनर्चक्रण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों के बाद मूर्तियों और पूजा सामग्री का सम्मानजनक संग्रहण सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता।

0: लगता है। इससे लोगों को अपनी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने का विकल्प मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली वासियों से अपील की कि वे खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री को सड़कों, खुले स्थानों और जल निकायों में छोड़ने के बजाय निर्धारित संग्रहण केंद्र स्थानों पर ही जमा करें। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज पंजाबी बाग में वायु प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए विभिन्न स्थानों का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उचित संग्रहण, परिवहन तथा निस्तारण से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर निगम आयुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने, नियमित निगरानी बनाए रखने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के निर्माण में श्रमिक बहनों का परिश्रम, उनका सेवा भाव और समर्पण अमूल्य है। श्रीमती गुप्ता ने आज दिल्ली महिला आयोग द्वारा आयोजित श्रमिक पोषण संवाद में ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला आयोग के सभी सदस्यों के साथ बातचीत की और कर्मयोगिनी बहनों को पोषण किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पालना घर, अटल कैंटीन, दिल्ली लक्ष्मी योजना और पिंक सहेली कार्ड जैसी सुविधाओं के जरिए श्रमिक बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है।
2: पूरी सरकार आपके साथ है, आपकी मुख्यमंत्री बहन आपके साथ है, महिला आयोग आपके साथ है। हम सब यही चाहते हैं कि इस राज्य की हर बहन सशक्त बने, मजबूत बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, जो अपना ध्यान भी रखे, परिवार का भी रखे और समाज का भी रखे।
1: दिल्ली के लोकनायक अस्पताल को आज अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीनें और 3 MIR मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत इन मशीनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आर्थिक स्थिति या किसी अन्य कठिनाई की वजह से कोई भी नागरिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे, इसी उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा तकनीक, बेहतर बुनियादी ढांचे और उन्नत जांच सुविधाओं का विस्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 वाणिज्यिक वाहनों से 2,260 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बरामद पटाखे कथित तौर पर पंजाब के कुराली से दिल्ली में विभिन्न प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए लाए गए थे। कार्रवाई के दौरान पटाखों से भरे कुल 87 बॉक्स जब्त किए गए। इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है। उत्तरी रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहली विशेष रेलगाड़ी नई दिल्ली से आज और शनिवार को दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी और ये अगले दिन सवेरे 3 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। कटरा से ये रेलगाड़ी कल और 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी। दूसरी रेलगाड़ी 18 और 20 अक्टूबर को दोपहर 2:15 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सवेरे 3 बजे कटरा पहुंचेगी। ये ट्रेन 19 और 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से प्रस्थान कर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। रेलगाड़ियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आज कई जगहों पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 में शामिल हुए भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने 12 वर्षों में लगन से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम और मिलिट्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSA SSR करने का निर्देश दिया है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इससे पहले आयोग ने छूट गए पात्र मतदाताओं, युवाओं और पहली बार मतदान योग्य लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से 2025-26 में बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक भूमिगत बुनियादी ढांचे की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण में सहयोग किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इसका उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करना है। अमेरिका के लास वेगास में विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today dedicated to the nation 5

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
2: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये राग बिलावल थाट से उत्पन्न है जिसकी जाति है औड़व औड़व, यानी इसके आरोह और अवरोह दोनों में ही पांच पांच स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें ग यानी गंधार और नी यानी निषाद स्वर पूरी तरह वर्जित हैं। तो पहले सुनते हैं एक गीत और बाकी की बातें गीत के उस पार।

ये गीत आपने सुना फिल्म मिस मैरी से लता दी और रफी साहब की आवाज में। इस गीत में हेमंत दा ने राग दुर्गा के चंचल और आनंदमयी रूप को प्रस्तुत किया है, मगर राग दुर्गा सिर्फ चंचलता का नाम नहीं है बल्कि मन की असीम शांति और गहराई का नाम भी है। गीतों और बातों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
3: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
2: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
4: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बात चल रही है राग दुर्गा की और राग दुर्गा पर अब जो गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ उसके दो संस्करण हैं। पहला संस्करण भारतीय शास्त्रीय संगीत की मल्लिका विदुषी किशोरी अमोनकर ने एकल रूप में गाया है और दूसरा संस्करण महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने युगल गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये गीत है साल 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने का टाइटल ट्रैक, जो राग दुर्गा के शास्त्रीय स्वरूप को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है।

0: CPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है। दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
5: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभाग के साथ और बात चल रही है राग दुर्गा की। जब भी भारतीय सिने जगत में राग दुर्गा का जिक्र आता है तो संगीत के जानकार सबसे पहले साल 1980 की फिल्म आप तो ऐसे न थे कि इस गीत का उदाहरण देते हैं जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं राग दुर्गा की एक बेहद खूबसूरत प्रस्तुति।

उम्मीद है इन गीतों ने आपके मन को भी सुकून दिया होगा। फिर होगी मुलाकात एक नए राग के साथ। विभा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM गोल्ड।

नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा ये पूरे देश की सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, कहा लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की महिला डबल्स जोड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराकर श्रृंखला बराबर की।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। जापान के आईची नागोया में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल रहे। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का एशियन गेम्स हमारे लिए कई मायनों में यादगार रहा।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और इतना ही नहीं, अपना ही रिकॉर्ड दोहरा दिया है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता है। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड। 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल, 1982 के बाद पहली बार मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
0: प्रधानमंत्री ने इसे देश के करोड़ों नागरिकों की सफलता बताते हुए कहा कि आप सभी खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है। श्री मोदी ने महिला खिलाड़ियों की भी सराहना की।
1: मैं हमारी बेटियों की खास तौर पर सराहना करना चाहता हूँ। भारत ने जो 85 मेडल जीते हैं, उनमें से 38 मेडल हमारी विमेन एथलीट्स ने जीते हैं और इनमें 11 गोल्ड मेडल भी शामिल है। और ये मेडल्स केवल एक संख्या नहीं है, ये नए भारत की एक सशक्त तस्वीर है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने खेलो इंडिया का विस्तार करने और खेल महासंघों को मजबूत करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल के इकोसिस्टम में काफी बदलाव आया है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में आई पारदर्शिता के कारण युवा खिलाड़ियों को प्राप्त अवसर मिल रहे हैं।
2: पिछले कुछ वर्षों में देश में खेलों को लेकर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बदलाव आया है, अवसर बढ़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज सरकार, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक साथ मिलकर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स विकसित भारत का एक मेजर पिलर बन चुका है।
0: खेल मंत्री ने आज राष्ट्रीय खेल महासंघों से भारत के खेल प्रदर्शन के लिए और अधिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। कई राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने भारत की खेल उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर मांडविया ने इस बात पर बल दिया कि भारत को केवल कुछ पदक विजेताओं पर निर्भर रहने के बजाय चैंपियनों की एक निरंतर श्रृंखला तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल महासंघों की बैठक में एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: और अब बात कुश्ती पर। अमेरिका के लास वेगास में विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में विश्वजीत को जॉर्जिया के कोबा कारिमिदसे से हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में भारत के लिए पहला रजत पदक जीत लिया है। अंडर 23 विश्व स्तर पर दो बार कांस्य पदक जीत चुके मोरे पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन फाइनल के आखिरी पलों में जॉर्जिया के कोबा कारुमिदजे से 12-13 से हार गए। मोरे इस चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र ग्रीको रोमन पहलवान हैं। उन्होंने तीन कड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये पदक देश के नाम किया। मोरे ने मेक्सिको के इसाक मारिन माटा को 10-8 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की, जिससे क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ईरान के अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन आर्मिन शमसी पौर से हुआ। शमसी पौर को मोरे ने 8-1 से हराया। रूस के मलिक गिगेव के खिलाफ सेमीफाइनल भी काफी रोमांचक रहा। इसमें दोनों पहलवानों को चैलेंज का फायदा मिला। अंत में मोरे ने 6-4 से जीत दर्ज की। मोरे फाइनल में इस लक्ष्य के साथ उतरे थे कि वो इस चैंपियनशिप को ग्रीको रोमन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बनेंगे। हालांकि वो फाइनल में जॉर्जिया के कोबा कारुमिदजे से हार गए। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात मुक्केबाजी पर। 18 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी टीम कल मोंटेनेग्रो के लिए रवाना हुई। भारतीय टीम 18 अक्टूबर से विश्व अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने सोनी यादव।
5: भारतीय टीम का उद्देश्य वर्ल्ड अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के दूसरे एडिशन में सभी वेट कैटेगरी में पदक जीतना है। दो साल पहले अमेरिका में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले एडिशन में भारत ने कुल 17 पदक जीते थे, जिनमें 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। भारत इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। दूसरे एडिशन के लिए भारतीय टीम में इस साल की शुरुआत में जकार्ता में हुई एशियन अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी और दूसरी वेट कैटेगरी में हुए सिलेक्शन ट्रायल के विजेता भी शामिल हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मोंटेनेग्रो जाने वाली हमारी टीम बहुत मजबूत है और स्क्वाड का लगभग हर खिलाड़ी पूरे साल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारत ने एशियन अंडर 19 चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। बेहद ही अहम और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है। दोनों ही वर्ग में कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं?
6: प्रशांत, महिला कैटेगरी में टीम की अगुवाई एशियन अंडर 19 गोल्ड मेडलिस्ट प्राची करेंगी, साथ ही सिल्वर मेडलिस्ट जयश्री देवी, चिरोम चाहत, अंशिका मेघा और प्राची टोकस भी शामिल रहेंगी। अगर पुरुष दल की बात करें तो एशियन अंडर 19 सिल्वर मेडलिस्ट आदित्य और ध्रुव के साथ अनुभवी मौसम सुहाग भी टीम में शामिल हैं।
0: विशेष प्रतियोगिता में इस बार दोनों ही वर्गों में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है?
6: प्रशांत, अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें तो हिमांशी 48 किलोग्राम, जयश्री देवी 54 किलोग्राम, प्राची 57 किलोग्राम, चाहत 60 किलोग्राम, हर्षिका 65 किलोग्राम, लक्षु 70 किलोग्राम, अंशिका 75 किलोग्राम, मेघा श्योकन 80 किलोग्राम और प्राची टोकस को हैवी वेट कैटेगरी में मौका मिला है। वहीं पुरुष वर्ग में अमन देव 50 किलोग्राम, आदित्य 55, शिवम 60, मौसम सुहाग 65, प्रशांत 70, लोकेश 80, त्रिदेव 85, ध्रुव 90 और क्रिश को हैवी वेट कैटेगरी में मौका मिला है।
0: तो उम्मीद करें कि इस टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम अपना परचम लहराए। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA ने सीनियर महिला T20 ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए आज 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने सोनी यादव को कप्तान और श्वेता शहरावत को उपकप्तान नियुक्त किया है। ये प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 20 नवंबर तक राउंड रॉबिन और नॉकआउट प्रारूप में खेली जाएगी। रेलवे ने सबसे अधिक 11 बार प्रतियोगिता का खिताब जीता है। 2026-27 सीजन में 37 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें एलीट और प्लेट के अंतर्गत 5 समूहों में बांटा गया है। महाराष्ट्र पिछले सीजन में पहला खिताब जीतकर वर्तमान चैंपियन है। इससे पहले DDCA ने कल 26-27 घरेलू क्रिकेट सीजन के लिए दिल्ली महिला अंडर 15 टीम के ओपन चयन ट्रायल के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए। खिलाड़ियों को 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शशांक, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 223 रन पर सिमट गई। 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। विशेष, पूरे मैच का हाल कैसा रहा कल का?
6: प्रशांत, अगर कल मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन ये निर्णय उनके लिए बहुत ही खराब साबित हुआ क्योंकि कप्तान शे होप ने 50 गेंदों पर 102 रन की शानदार पारी खेली। वहीं ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड ने अंतिम ओवरों में 26 गेंदों पर 49 रन बनाकर पूरा समीकरण बदल दिया, जिससे भारतीय टीम को 248 रन का लक्ष्य मिला, जिसे भारतीय टीम चेज नहीं कर पाई।
0: अगर हम पूरी श्रृंखला की बात करें तो लगातार पूरी श्रृंखला में गेंदबाजों ने निराश किया। कल उनका प्रदर्शन कैसा रहा?
6: बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा प्रशांत, क्योंकि मयंक यादव, अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी तीनों ने ही 13 की इकोनॉमी से रन दिए। सिर्फ अर्शदीप सिंह ही थे इन तीनों गेंदबाजों में जिन्होंने एक विकेट लिया। वहीं प्रिंस यादव की बात करें तो उन्होंने सदी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की, जहां 4 ओवर में 36 रन देकर एक विकेट लेगा। श्रृंखला में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि पांचवें मुकाबले में किसी नई रणनीति के साथ वापसी करते हैं।
0: टारगेट कोई भी हो, विशेष जो बल्लेबाजी क्रम है, उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स हो या उससे पहले भी, हम 2 बार विश्व कप जीत चुके हैं और बैक टू बैक हमने एशियन गेम्स भी जीता है। यह दर्शाता है कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कल कोई भी टारगेट रहा हो भारतीय टीम के सामने, हम ऐसा मान रहे थे कि बल्लेबाज उसे चेस कर देंगे, तो कल कैसा उन्होंने किया है बल्लेबाजी में प्रदर्शन?
6: बल्लेबाजी भारतीय टीम की हमेशा से ही डोमिनेटिंग रही है और पिछले कुछ समय में अपना लोहा मनवा चुकी है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई। वहीं नीतीश रेड्डी और तिलक वर्मा ने बीच के ओवरों में पारी को संभालने की कोशिश करी। भारतीय गेंदबाजों से जो चूक हुई थी कि जो 18 रन एक्स्ट्रा दिए थे, शायद वही एक अंतर समझ में आया जहां भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा।
0: अब अंतिम और निर्णायक मुकाबले में किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी, क्योंकि श्रृंखला दांव पर है? विशेष,
6: निश्चित तौर पर गेंदबाजों को बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा, जहां मयंक यादव, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे और अक्षर पटेल और नमन धीर को स्पिन गेंदबाजी में काफी कुछ महत्वपूर्ण साबित करना पड़ेगा।
0: तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 अक्टूबर को कौन सी टीम यह श्रृंखला अपने नाम करती है। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की महिला डबल्स जोड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। संक्षेप में बताइए विशेष कि क्या कुछ रहा अलग अलग वर्गों का हाल आज?
6: प्रशांत, पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत अलेक्स लेनियर के खिलाफ पहला सेट उन्होंने 21-11 से जीता, लेकिन अगले 2 सेट 21-15 और 21-15 से हार कर बाहर हो गए। वहीं वुमेन सिंगल्स में अश्मिता चालिहा जापान की अकाने यामागुची से 21-18 और 21-10 से हार गई। तन्वी शर्मा का मुकाबला अभी कुछ ही देर में खेला जाएगा।
0: और अब सभी प्रशंसकों की निगाहें महिला डबल्स जोड़ी पर होंगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक A.Ambarasu की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित यह उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू कर

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में यह निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि

0: फिट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
1: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक इन वॉलेंटरी गिविंग अप कुकिंग गैस सब्सिडीज। वी प्रॉमिस दैट फॉर एवरी कनेक्शन गिवन अप वन पुअर फैमिली करंटली विदाउट गैस वुड बी गिवन अ कनेक्शन। दिस विल एनेबल अस to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
0: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
2: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती हूं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
0: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
4: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता ये वाकई बहुत सुखद है।
3: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
3: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
6: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. प्राइम मिनिस्टर

0: ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम। रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: नमस्कार श्रोताओं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जिसे हिंदी में कहें न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में आप सभी अवगत होंगे और खासतौर पर जो हमारे किसान श्रोता हमें सुन रहे हैं वो तो इससे पूरी तरह से परिचित ही हैं कि जो खेतों में फसल की पैदावार होती है जब वो पूरी तरह से फसल बनकर तैयार होती है तो उसका एक मूल्य की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है जिससे किसानों की आय भी सुनिश्चित होती है। लेकिन सरकार ने बीते वर्षों में सीमित फसलों से हटाकर कई महत्वपूर्ण अन्य फसलों पर भी फोकस करते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी की गारंटी दी है और इससे देश भर में जो फसलों का विविधीकरण है या दूसरी फसलों की ओर किसानों का जो रुख है वो बढ़ा है, खासतौर पर तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर। तो आज हम कार्यक्रम में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर अन्य फसलों पर और फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर सरकार लगातार फोकस कर रही है वो कैसे हमारे देश में खेती के एक नए प्रारूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण है और हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों को लेकर विभिन्न फसलों में एमएसपी की घोषणा की है उस पर भी आज हम विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: हम कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल ही में जो रबी फसलों को लेकर एमएसपी को लेकर घोषणा हुई है, मंजूरी हुई है, उस पर ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा जैसे दो बड़ी महत्वपूर्ण फसलें जिनकी हम चर्चा करें जिस पर एमएसपी की एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने इस मंत्रिमंडल के फैसले में देखी है। एक तो सैफ्लावर जिसे कुसुम कहते हैं हम, इसमें प्रति क्विंटल 675 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसी तरह से सरसों पर भी 413 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो इतनी अच्छी बढ़ोतरी सैफ्लावर और सरसों जैसी फसलों को लेकर सरकार ने दी है, आप कैसे देखते हैं इस मंजूरी को और खासतौर पर जो हमारे देश में फसलों के डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण को लेकर ये किस तरह से अहम फैसला है?
2: हर साल भारत सरकार 22 फसलों की एमएसपी अनाउंस करती है
1: जी।
2: इसमें 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और जूट और कोपरा की भी एमएसपी अनाउंस होती है और उसके बाद से जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो खरीदारी करती है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं जो अनाज और मोटे अनाज है उसकी खरीदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है और इसमें राज्य की एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं और दलहन और तिलहन की खरीदारी एक हमारी स्कीम है पीएम आशा स्कीम, उसके अंतर्गत किया जाता है और इसमें खरीदारी करने वाली एजेंसी है वो नैफेड और एनसीसीएफ है और हर साल इन सारी खरीदारी से जो किसान के खाते में भुगतान होता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है और उससे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित होते हैं। अभी 30 सितंबर को 6 रबी की फसलों की एमएसपी अनाउंस हुई है, मैं उसका डिटेल बता देता हूं, जिसमें गेहूं की एमएसपी अब 2610 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 25 रुपए ज्यादा है। बार्ली जौ इसकी एमएसपी अब 2286 रुपए कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 136 रुपए ज्यादा है। ग्राम चना इसकी एमएसपी अब 5958 रुपए कर दी गई है जिसमें पिछले साल की तुलना में 83 रुपए की वृद्धि की गई है। मसूर की एमएसपी अब 7390 रुपए कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 390 रुपए ज्यादा है। मस्टर्ड सरसों इसकी एमएसपी अब 6613 रुपए कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 413 रुपए ज्यादा है और सफ्लावर कुसुम की एमएसपी अब 7215 रुपए कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 675 रुपए ज्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो दलहन और तिलहन की एमएसपी है वो ज्यादा रखी गई है तो इससे जो विविधीकरण जैसा आपने जिक्र किया डाइवर्सिफिकेशन में को प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिलेगी।
1: तो आपने जैसा कि विभिन्न फसलों के बारे में बताया कि किन किन फसलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी की है, दालों का ही अगर हम जिक्र करें तो सरकार का फोकस है कि जो दालों का उत्पादन है वो देश में बढ़े और जो हम आयात पर हमारी निर्भरता है वो हमारी कम हो। मसूर की दाल का आपने जिक्र किया, 390 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस बार और अगर हम देखें तो मसूर की दाल पर अब एमएसपी 92% तक एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है, यानी जो हमारा 50% तक से ज्यादा का लक्ष्य था उसे लगभग 42% ये ज्यादा है। कैसे आप देखते हैं कि अब दालों की अपनी आत्मनिर्भरता को हम और मजबूत कर रहे हैं और किसान भी इसमें रुझान दिखा रहे हैं उत्पादन में, कितना ये जरूरी है?
2: देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पल्सेज हैं, दाल हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी हमारे देश में ही होता है।
1: बिल्कुल।
2: सबसे ज्यादा खपत भी हमारे देश में ही होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा साधन दाल है और खासतौर पर एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है।
2: और सबसे ज्यादा इम्पोर्ट भी हम ही लोग करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है और इसके लिए आप देख सकते हैं, एक तो एमएसपी का अधिक रखना दालों का बहुत बड़ा इसमें योगदान मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक दलहन की उत्पादन करें। और इसके अलावा भारत सरकार भी एक दलहन मिशन चला रही है, जिसके अंतर्गत जो 3 तूर, उड़द और मसूर है, इसकी खरीदारी अब 100% भारत सरकार करेगी, नेफेड करेगी। तो इन सारे बढ़ी हुई एमएसपी और जो दलहन मिशन है, इससे पल्सेज को प्रमोट करने में काफी मदद मिलती है और इससे हमें उम्मीद है कि किसान भाई भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका

0: प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा देश भी इसमें आत्मनिर्भर होगा और किसान को भी अपनी फसल का उचित लाभ मिलेगा।
1: क्योंकि गेहूं जो ऐसी फसल है भारत की, हमारी कहें तो भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है, और आप किसानों को गेहूं की जो लागत है उसका रिटर्न अगर हम देखें तो 106% के आसपास अब मिल रहा है
0: जी।
1: तो गेहूं किस तरह से भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है और सरकार के जो प्रोत्साहन लगातार हैं किसानों को लेकर, एक पारदर्शिता है, उससे देश की खाद्य सुरक्षा और कैसे मजबूत हो रही है?
0: जैसा आपने बताया कि जो गेहूं और चावल है ये हमारा मुख्य भोजन का में हम लोग खाते हैं, और इस साल जो मार्जिन रखा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो 106% का, जैसा अभी आपने बताया, और पिछले साल भी आप देखें तो 109% का इसमें मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रखा गया था। तो लगातार सरकार वीट को भी प्राथमिकता दे रही है और उसको अधिक से अधिक इसमें किसान भाई को हमारा लाभ मिले उसका भी प्रयास रहता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। इस प्रोत्साहन का असर ये है कि पिछले साल 2025-26 में जो हमारी खरीदारी हुई है 350 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा हुई है
1: जी,
0: और उसके पिछले साल 2024-25 में लगभग 300 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी। और इसकी वजह से जो हमें फूड मिनिस्ट्री ने बताया है कि 1 अगस्त 2026 तक जो हमारा गेहूं का स्टॉक था वो 505 लाख मैट्रिक टन था, जो कि अब तक हाईएस्ट है।
1: बिल्कुल।
0: तो निश्चित तौर पे जो एमएसपी अनाउंस हुई है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे हमारी एमएसपी से किसान भाई उसमें अधिक से अधिक किस फसल को ग्रो कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे देश की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी गेहूं की बड़ी मात्रा है, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: अब हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे चने और जौ की फसलों पर बढ़ी एमएसपी को लेकर, क्योंकि सरकार का भी फोकस है जो हमारी मिलेट्स हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, उसमें जौ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जौ की अगर हम बात करें तो 136 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और चने में 83 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, जो कि हमारे खाने पीने में बड़े महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में इनका इस्तेमाल होता है, तो इनकी मांग को और किसान भी इन फसलों को लेकर, उपजाने को लेकर प्रोत्साहित हो, कितना जरूरी है इन फसलों पर एमएसपी का बढ़ना?
0: देखिए, मतलब जैसा आपने बताया भी और सरकार दलहन को प्रोत्साहित तो कर ही रही है, उसके अलावा जो फसलें जिसका उत्पादन कम होता है उसको भी एमएसपी के माध्यम से उसको बढ़ावा देने का प्रयास रहता है। जैसे दलहन के लिए अभी मैंने बताया कि दलहन मिशन चल रहा है और उसकी एमएसपी भी अधिक रखी गई है बाकी फसलों की तुलना में। इसकी वजह से जैसे आपने चने का जिक्र किया तो इससे प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। मैं जस्ट आपको आंकड़े बताऊं, 2024-25 में जो चने का प्रोडक्शन 111 लाख मैट्रिक टन हुआ था, जो 2025-26 में बढ़कर 125 लाख मैट्रिक टन हो गया है। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, एमएसपी अनाउंस होती है जो, और प्रोत्साहन के जो हमारे स्कीम्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे पल्सेज मिशन है, इससे दलहन की प्रोडक्शन बढ़ाने में निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर उसका असर पड़ रहा है। जैसे आपने बार्ली का जिक्र किया तो बार्ली में हमारा जितना रिक्वायरमेंट है देश में उतना उत्पादन नहीं होता है
1: जी।
0: हमारी इम्पोर्ट पे निर्भरता है और इस निर्भरता को कम करने का एकमात्र माध्यम यह है कि आप अधिक से अधिक उस फसल को प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में बार्ली का एमएसपी 136 रुपए बढ़ाया गया है, जो 58% मार्जिन के साथ फिक्स किया गया है।
1: जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो हमें 2018-19 का केंद्रीय बजट की सरकार की वो प्रतिबद्धता याद आती है, जब सरकार ने ये तय किया था कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो फसलों का 1.5 गुना स्वीकृत मंजूर होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो सरकार की जो ये प्रतिबद्धता थी और उसको लगातार सरकार ने पूरा भी किया है, आप कैसे देखते हैं सरकार की इस कमिटमेंट को? और जिस तरह से हमेशा ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में हमने देखा है कि समय समय पर एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की जाती रही है समय की मांग के हिसाब से, और साथ में जो किसानों की आय है उसको लेकर कैसे इससे स्टेबिलिटी आई है, स्थायित्व आया है कि लगातार किसानों को उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है उसको न सिर्फ बरकरार रखा गया है बल्कि बढ़ाया भी गया है।
0: जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था 2018-19 में, 1 फरवरी 2018 को अनाउंसमेंट हुआ था कि एमएसपी अब जो फिक्स होगी वो कम से कम लागत मूल्य पर 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स होगी। उसके बाद से जितनी एमएसपी फिक्स हुई है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की गई है। मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी का काफी जिक्र होता है, उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था कि भाई जो एमएसपी फिक्स होती है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ होनी चाहिए। तो उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है और इससे आप देख सकते हैं कि लगातार उसके बाद से एमएसपी में काफी वृद्धि हुई है और प्रोक्योरमेंट खरीदारी भी बढ़ी है और जो एमएसपी का पैसा किसान के खाते में जाता है उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। इससे किसान की इनकम को बढ़ाने में काफी मदद मिली है।
1: बिल्कुल। और जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये फैसले आए हैं रबी फसलों को लेकर, तो जैसे किसान अपनी हमेशा योजना तैयार करते हैं कि कौन सी फसल की बुआई करनी है, तो अब रबी फसलों को लेकर ये जो पूरा आंकड़ा हमारे सामने आया है कि किन फसलों पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसानों को कितनी सहायता होती है ऐसे निर्णयों से कि अब रबी फसलों की बुआई से पहले वो अपनी योजना बना सकें।
0: भारत सरकार हर साल 4 बार एमएसपी अनाउंस करती है, एक खरीफ की, दूसरी रबी की, उसके बाद कोपरा और जूट की एमएसपी अनाउंस होती है। जो एमएसपी अनाउंस होती है उस सीजन से पहले की जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि खरीफ की एमएसपी इस साल मई में अनाउंस हो गई थी खरीफ सीजन से पहले, रबी की एमएसपी 30 सितंबर को अनाउंस हो गई है। हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर से रबी स्टार्ट होता है, तो एमएसपी जो सरकार अनाउंस करती है वो सीजन स्टार्ट होने से पहले करती है। इससे क्या होता है कि किसान भाई हमारे अपने फसल के बारे में सही फैसला ले पाते हैं कि किस फसल को हम ज्यादा प्राथमिकता दें, किसी को कम दें, किसको प्राथमिकता देने से उनको अधिक लाभ मिलेगा। इससे किसान को अपना डिसीजन लेने में काफी मदद मिलती है।
1: अब जैसे हम एमएसपी की ही बात करें तो जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो खाद्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेकर लगातार उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है कभी कभार महंगाई की वजह से या दूसरी कई वजहों से, चाहे वो आटा हो, दाल हो, लेकिन ये कितना जरूरी है कि किसानों को पहले ही उसकी गारंटी मिल जाए उसकी फसल की। जैसे गेहूं को लेकर ही हम अगर उदाहरण लें तो गेहूं की 25 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसान किस तरह से आश्वस्त रहता है अपनी फसल के उत्पादन को लेकर एमएसपी की वजह से कि उसको उसके फसल का मूल्य पहले ही मिल रहा है, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सकें।
0: जैसा कि मैंने बताया कि एमएसपी सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस हो जाता है, तो उसमें किसान अपनी फसल के बारे में उचित फैसला पहले ही कर लेते हैं। जहां तक गेहूं का आपने जिक्र किया है, तो गेहूं का प्रोडक्शन हमारा लगातार बढ़ रहा है और इससे इसमें हमारी खरीदारी भी काफी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो किसान को अपनी फसल का, खासकर गेहूं का, उचित मूल्य भी इनको मिल रहा है और फूड सिक्योरिटी भी हमारे देश की इंश्योर हो रही है। और एक और चीज आपने पूछा कि इससे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो एमएसपी अनाउंस होती है मार्केट में एक बेंचमार्क प्राइस फिक्स हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: उससे क्या होता है कि आप देखेंगे इन सारी जो एमएसपी की फसलें हैं उनका मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास ही रहता है। अभी हम लोगों ने गेहूं और मैं पैडी की बात करूं, उसमें धान की बात करूं, इसका पिछले 10 साल का हम लोगों ने डेटा को एनालाइज किया था और हम लोगों ने देखा कि जो एमएसपी है उसी के आसपास ही उसका मार्केट प्राइस भी है, बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो इससे क्या होता है जो एमएसपी अनाउंस होती है और खास करके गेहूं और धान की, तो इसमें मार्केट प्राइस भी स्टेबलाइज होता है।
1: अब सरकार का जैसे कि आपने भी बताया कि ध्यान फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर है, गेहूं चावल के अलावा तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर एमएसपी पर सरकार का ध्यान है और उनके प्रोडक्शन और उनके प्रोत्साहन पर सरकार फोकस कर रही है, तो हमारे देश में जो एक क्रॉप साइकिल है या हिंदी में कहें फसल चक्र है या जो हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता है, तो उसकी बेहतरी के लिए कितना जरूरी है कि जो दूसरी फसलें हैं उनकी तरफ किसान रुख करें और एक वैकल्पिक फसलों के तौर पर अपने खेतों में उनको उपजाएं, तो कितना जरूरी है तिलहन दलहन जैसी फसलों के उत्पादन को लेकर ये प्रोत्साहन।
0: निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है कि आप अपने खेत में एक ही फसल को आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, उगाएंगे, तो उसका असर उसकी जमीन की उर्वरकता पे भी पड़ता है, वहां पर फर्टिलिटी भी काफी उसकी डिस्टर्ब होती है, तो एक उसमें चक्र बना रहना चाहिए जैसे कि आपने जिक्र किया। और ये चक्र हमारे देश में नेचुरली बन रहा है, आप देख लें कि गेहूं और धान के अलावा जो एमएसपी बढ़ रही है हमारी दलहन और तिलहन की, इससे किसान भाई को प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो दलहन तिलहन की खेती भी वो ज्यादा से ज्यादा करें और वो कर भी रहे हैं। और इन दो फसलों दलहन और तिलहन की हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता भी है, इससे क्या होता है कि जो अभी आपने जिक्र किया कि उसकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो जब अलग अलग फसल हमारे किसान भाई ग्रो करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बैलेंस बना रहेगा। जो बार बार अपना एक जिक्र होता है कि भाई उसका ऐसा कुछ ना हो कि ऐसी फसल ही आप ग्रो करते जाएं कि उसकी फर्टिलिटी ही बिल्कुल खराब हो जाए, तो जब ये चक्र बना रहेगा तो फर्टिलिटी भी उसकी बैलेंस रहेगी।
1: अगर हम जो सरकारी खरीद की बात करें गेहूं की फसल को खासतौर पर अगर हम लें, तो हमारे पास बड़े बेहतरीन आंकड़े हैं। जैसे 2004 से 14 के बीच में अगर गेहूं की सरकारी

0: खरीद को हम देखें तो ये जो लगभग पहले इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% से ज्यादा है, तो आप कैसे देखते हैं कि जो सरकारी खरीद बढ़ती है जब किसी फसल की, तो उसमें सरकार का जो प्रोत्साहन दिया जाता है खासतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उसकी बढ़ोतरी का वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है?
1: देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में खरीदारी में क्या असर पड़ा, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में गेहूं की खरीदारी 22 करोड़ 54 लाख मैट्रिक टन हुई थी, जो 2014 से 26 के बीच में बढ़कर के 37 करोड़ 15 लाख मैट्रिक टन हो गया है। दलहन की बात करें तो 4 से 14 के बीच में 6 लाख 29 हजार मैट्रिक टन था, जो बढ़ करके 2 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन हो गया है, 35 गुने की वृद्धि हुई है। इससे आप साफ देख सकते हैं कि जो खरीदारी है हमारी दलहन की पिछले 10 सालों में काफी बढ़ी है।
0: बिल्कुल।
1: और तिलहन की बात करें तो 2004 से 14 के बीच में 47 लाख 75 हजार मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी और 14 से 26 के बीच में 1 करोड़ 58 लाख मैट्रिक टन की हुई है, 3.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो तिलहन का में भी खरीदारी हमारी काफी हुई है, तो इन दोनों फसलों को, दलहन और तिलहन को, हमारी एमएसपी के माध्यम से काफी बढ़ावा मिल रहा है और खरीदारी भी हो रही है।
0: बिल्कुल। तो अगर किसानों के फसलों के उपजाने के को लेकर उनके कॉन्फिडेंस को देखें तो वो कितना बढ़ा है इससे, क्योंकि आपने जैसा कि आंकड़े भी शेयर किए, और जब आंकड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को उसका सीधा लाभ भी उनके आर्थिक मोर्चे पर भी होता ही है, तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब किसानों का इन अलग अलग तरह की फसलों को उपजाने में?
1: देखिए, इसमें कुछ आंकड़े जो अभी आपके पास हमने रखे दलहन और तिलहन की, तो काफी खरीदारी, इससे साफ साफ दिख रहा है कि इन फसलों की तरफ हमारे किसान भाई का झुकाव भी हो रहा है और इसकी सरकार खरीदारी भी कर रही है। जहां तक विश्वास की बात करें तो मेरा अपना मानना है कि एमएसपी अनाउंसमेंट की प्रतीक्षा किसान भी करते हैं और सरकार की भी प्राथमिकता रहती है कि वो सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दें, जिससे किसान को हमारी एमएसपी के बारे में जानकारी रहे और अपने फसलों के बारे में सही वो डिसीजन ले सकें। निश्चित तौर पे किसान का भरोसा तो एमएसपी पर है और प्रोक्योरमेंट भी काफी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ रहा है।
0: तो अगर हम किसानों के आर्थिक लाभ की बात कर ही रहे हैं तो गेहूं किसानों की अगर मैं बात करूं, आपने भी एक आंकड़ा शेयर किया था कि कैसे 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक इजाफा हुआ है किसानों, गेहूं किसानों की जो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और उसका आर्थिक लाभ जो किसानों को मिला है, तो आंकड़ा ये है कि 256 लाख करोड़ रुपए से लेकर ये बढ़कर 731 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में, यानी हम कहें तो दोगुने से भी ज्यादा का एक आर्थिक लाभ किसानों को सीधा मिला है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा आंकड़ा है?
1: जो दो आंकड़े आपने रखे हैं, इनफैक्ट पहला आंकड़ा आपने 2004 से 14 के बीच का था और दूसरा आंकड़ा 2014 से 26 के बीच का था, तो इसमें जो वृद्धि हुई है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो तीन गुने की वृद्धि हुई है। तो तीन गुना लाभ हमारे किसान को मिला है और ये उनके अकाउंट में गया है, तो उनके इनकम को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है। इसी संदर्भ में मैं आपको दो और आंकड़े बताना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में दलहन खरीदारी में 1900 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाते में हुआ था और वहीं 14 से 26 के बीच में देखें तो 1,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और ये 65 गुने ज्यादा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि दलहन की जो खरीदारी हुई वो भी ज्यादा हुई है और क्योंकि एमएसपी लगातार बढ़ रही है इसलिए उसका लाभ भी हमारे किसान भाई को अच्छा मिल रहा है। इसी संदर्भ में मैं तिलहन का जिक्र करूं।
0: बिल्कुल।
1: तो 2004 से 14 के बीच में 9000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान भाई को हुआ था और वहीं 14 से 26 के बीच में 86000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, तो 9.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो ये सारे जो भुगतान हो रहे हैं इससे किसान को लाभ मिल रहा है और उससे किसान की इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिल रही है।
0: बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर गेहूं, चावल, ये गेहूं के अलावा जो 6 बड़ी रबी फसलें हैं इनमें भी आंकड़े को हम देखें तो 265 लाख से बढ़कर 831 लाख का ये हमारे पास आंकड़ा है। ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं ये किस तरह से आप इन्हें देखते हैं और कैसे जो एक पूरा तंत्र है, कृषि तंत्र है, उसमें जो खासतौर पर ये बात सरकार की ओर से कही जाती रही है कि किसानों को जो आर्थिक आय है या उनका जो इनकम है उसमें किसानों को प्रोत्साहन मिले और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो, तो किस तरह से ये पूरा होता हुआ दिख रहा है और ये लगातार प्रक्रिया जारी है?
1: जैसा कि अभी हमने बताया कि इसके दो बिंदु हैं जिसके जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो 2018-19 में जब अनाउंसमेंट हुआ था बजट में कि एमएसपी कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की जाएगी, उसके बाद क्या हुआ है कि एमएसपी कभी भी 50% कब पे तो फिक्स हुई नहीं है, इससे क्या होता है एमएसपी में काफी

0: बढ़ोतरी हुई है। पहले क्या था कि कुछ फसलों की 2018-19 से पहले की बात करें तो कुछ फसलों की MSP जो फिक्स होती थी वो लागत मूल्य पर 50% नहीं भी मिलता था। MSP में एक तो लगातार वृद्धि हो रही है और जो खरीदारी हो रही है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। ये सारे और जो अमाउंट पैसा जा रहा है अकाउंट हमारे किसान के खाते में जा रहा है पहले। अब आप एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल
0: अभी जो MSP का पैसा है वो किसान के खाते में जा रहा है, वो आधार से लिंक किया हुआ है,
2: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के,
0: हाँ, DBT के थ्रू जा रहा है। तो इसमें अब बिल्कुल किसान को डायरेक्टली उसका फायदा मिल रहा है। तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ है।
2: एक प्रश्न हम अपने श्रोताओं की समझ के लिए, जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उसका तय करने का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या इसका आधार यही है कि जैसे किसानों की लगातार बढ़ती हुई बीज की, खाद की, मशीनरी की या जो मजदूरी या श्रम की लागत है वो जैसे जैसे बढ़ती है तो किसानों को उसी तरह से उस आधार पर उसका लाभ दिया जाता है, तो कैसे तय होता है MSP?
0: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये अभी हम लोगों ने काफी जिक्र किया कि MSP लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ फिक्स ही जाती है। तो जो लागत मूल्य है उसमें जो उसके कंपोनेंट है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो किसान उस फसल को उगाने में जो भी खर्च करता है वो सारे खर्च इसमें जोड़े जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जो लेबर हायर किया किसान ने, जितना खर्च किया उस फसल को उगाने में उसको काउंट किया जाता है। यदि किसान ने अपना वो लेबर अपने घर से यूज किया, घर के लोगों ने श्रम दिया हुआ है, उसका भी इम्प्यूटेड वैल्यू जो अपना लेबर कॉस्ट है वो भी ऐड किया जाता है। यदि मशीनरी किसान ने हायर किया है उसका खर्चा भी ऐड होता है। यदि मशीनरी खुद की है तो उसका खर्चा भी उसमें ऐड होता है। और सीड्स पे जो खर्च हो रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में जो खर्च हो रहा है, फर्टिलाइजर पे खर्च हो रहा है, ये सारे खर्चे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़े जाते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई किसान जमीन लीज पे लिया हुआ है,
2: जी जी,
0: तो उसका खर्चा बहुत आता है।
2: बिल्कुल।
0: तो यदि कोई किसान लीज पर लेकर खेती कर रहा है तो उसमें जो लीज का कॉस्ट होता है वो भी उसमें ऐड किया जाता है। और इरिगेशन है, बाकी जो कंपोनेंट मैंने बताया वो तो सारे खर्चे जोड़े ही जाते हैं इसमें।
2: और जैसे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, क्योंकि अगर किसी के पास बड़ी जमीन है तो उसमें से तो अगर ज्यादा फसल की पैदावार होती है तो उसका एक एवरेज कॉस्ट निकल जाता है, लेकिन जो खासतौर पर छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनको अगर MSP मिलता है तो उनके लिए कितनी बड़ी गारंटी होती है, कैसे उनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन होता है?
0: मैं थोड़ी प्रक्रिया और आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग इसका आंकड़ा इकट्ठा होता है, इसमें हम लोग गांव में जो प्लॉट्स होते हैं तो उसमें तीन कैटेगरी में प्लॉट्स डिवाइडेड होते हैं जिससे कि डेटा इकट्ठा होता है। पहला कैटेगरी है कि एक हेक्टेयर से कम वाले प्लॉट कौन कौन से हैं, एक से दो हेक्टेयर वाले प्लॉट कौन कौन से हैं और दो हेक्टेयर से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं। तो जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं वो तीनों कैटेगरी से होते हैं। तो इसमें जो एक हेक्टेयर से कम वाले जो कैटेगरी है इसमें हमारे छोटे किसान में जो खर्च हो रहे हैं वो सारे उसमें काउंट हो जाते हैं। और जो MSP है उसका लाभ हर किसान लेता ही है, जैसा कि आपको हम सबको मालूम है।
2: बिल्कुल। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब खेती का तरीका है वो एक तकनीकी तौर पर अब अलग होता जा रहा है, उन्नत और स्मार्ट खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर हमें खेती में बहुत सारे उपकरणों की भी जरूरत होती है, तो किसान अपनी लागत को पूरा कर सके, उपकरणों के खर्च को पूरा कर सके, ऐसे में लगातार जो उनको प्रोत्साहन है वो MSP के जरिए बढ़ोतरी के रूप में दिया जाता रहा है, वो भी क्या इनमें जोड़ा जाता है उनके खर्च को भी?
0: जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसान जो भी खर्च करते हैं वो सारा कॉस्ट उसमें जोड़ा जाता है। अभी आपने मशीनरी का जिक्र किया, मान ली कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आप उसको हायर करते हैं मार्केट से।
2: बिल्कुल।
0: तो जो आपका हायरिंग कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। मान ली आपके खुद का मशीनरी है उसको आप यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू भी उसमें ऐड किया जाता है। तो जो भी मशीनरी हमारा किसान यूज करते हैं उसका खर्च इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडेड रहता है।
2: तो अब कार्यक्रम में हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आखिर में हम आपसे यही समझना चाहेंगे अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए, जैसे ये फैसला रहा इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का और समय समय पर केंद्रीय कैबिनेट के फसलों के MSP को लेकर फैसले भी आते रहते हैं, कैसे हमारे देश का जो बफर स्टॉक है वो बिल्कुल स्थिर रहे, बढ़ोतरी होती रहे उसमें, और साथ में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होते रहे, किसानों की आय भी लगातार बढ़ती रहे। इन तीनों कंपोनेंट्स के हिसाब से एमएसपी का ये प्रोत्साहन कितना जरूरी है और सरकार इस ओर कितना ध्यान दे रही है?
0: देखिए, इसमें जहां तक फूड सिक्योरिटी की बात है, इसमें गेहूं और धान में तो हमें कोई इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
2: उसमें तो आत्मनिर्भर हैं हम पूरी तरह से।
0: और जिसमें हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है दलहन और तिलहन में, उसमें भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि एमएसपी में भी लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें जो भुगतान हुआ है वो भी काफी ज्यादा हुआ है, और हमारे पल्सेज मिशन भी चल रहे हैं और तिलहन मिशन भी चल रहे हैं, इनके माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इससे हम लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में हमारे किसान भाई इन सारी फसलों को प्राथमिकता देंगे, इसको अधिक से अधिक इसका उत्पादन करेंगे और बढ़ी हुई एमएसपी का उनका लाभ मिलेगा, जिससे उनका इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी और देश को भी इन फसलों पे आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी।
2: बिल्कुल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में जुड़े। और केंद्रीय कैबिनेट का जो हाल ही में रबी की फसलों को लेकर एमएसपी की जो मंजूरी है, और साथ में किस तरह से लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोत्साहन और बढ़ोतरी के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर दिया जाता रहा है और उसमें लगातार और बढ़ोतरी होती जा रही है, इस पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को इस चर्चा के माध्यम से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।

शस्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अहर्ता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। जापान के आईजी नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारत 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the apex court in the national capital over alleged irregularities in the special intensive revision SIR of electoral rules. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file their petition amid protests demanding the resignation of the chief election commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the Kerala Pradesh Congress Committee. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. During the hearing of another case, the Supreme Court today ruled that individuals converting from Hinduism to Islam or other non-Hindu religions cannot automatically claim reservation benefits under the backward class category. Dismissing the Tamil Nadu government's plea against a Madras High Court verdict, the top court held that social backwardness suffered an antecedent caste cannot be carried forward after conversion. While hearing another case, the apex court today sought replies from the centre and the National Medical Commission on a plea seeking greater transparency in the answer key and response disclosure process for NEET PG 2026. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision SSR of electoral rolls with 1st of January next year as the qualifying date. These states and union territories are Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. The government has mandated caller name display service for telecom users from the 1st of next month. The Department of Telecommunications DOT has directed all telecom service providers to introduce the calling name presentation service across all service areas from 1st of November. Under the service, the name of the caller as recorded in the subscriber database of the originating telecom service provider will be displayed on the recipient's phone along with the caller's number. In the case of international calls from unsaved numbers, the display will show international call. The service will be provided to all users without requiring a separate request. Prime Minister Narendra Modi today expressed confidence that India is poised to emerge as a global sporting powerhouse. Mr. Modi made the remarks while interacting in New Delhi with members of the Indian contingent that participated in the 2026 Asian Games concluded in Japan earlier this month. He described the recent Asian Games as memorable for India, highlighting the outstanding performances of Indian athletes across several sporting disciplines. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्वीकरण को अपरिवर्तनीय बताते हुए मजबूती और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया। इलिनॉय में हिंदू मंदिर पर हमले की नाकाम कोशिश के बाद भारत ने अमेरिका से भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से 34 बच्चों और एक शिक्षक की मौत और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद मोरे ने लास वेगास में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता, लेकिन इससे निपटने के लिए अधिक लचीली और मजबूत व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक ऐसी पहल बताया जो क्षेत्रीय संपर्क को लेकर सोच को पहले से ही प्रभावित कर रही है। अबूधाबी में रायसीना मिडिल ईस्ट कार्यक्रम में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रतिस्पर्धा तेज हुई है, परिवहन और संपर्क के नए अवरोध सामने आए हैं और अपने लाभ का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कार्यक्रम से अलग डॉक्टर जयशंकर ने युवा भारतीय प्रौद्योगिकी उद्यमियों और स्टार्टअप संस्थापकों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बातचीत को रोचक बताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी बड़े लक्ष्य तय करती है और साहस के साथ आगे बढ़ती है। डॉक्टर जयशंकर 14 से 16 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। भारत ने अमेरिका के इलिनॉय में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की कथित खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू विरोधी तथा नस्लवादी प्रकृति के साथ भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने संदिग्ध की गिरफ्तारी सहित अमरीकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अमेरिका में नस्लीय शत्रुता और भारत विरोधी नफरत को लेकर बढ़ती चिंताओं को और गंभीर बनाती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने सतर्कता बढ़ाने, नफरत से प्रेरित हिंसा के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने और भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि अमरीकी अधिकारी मामले की गहन जाँच करेंगे, जिम्मेदार लोगों को न्याय की कटघरे में लाएंगे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। सरकार ने आज बताया कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब 51 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में यह निर्यात 45 अरब 73 करोड़ डॉलर था। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सितंबर 2026 में भारत का कुल निर्यात लगभग 80 अरब 75 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। ये सितंबर 2025 की तुलना में 10.99% की वृद्धि है। वहीं सितंबर 2026 में कुल आयात करीब 94 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 8.19% अधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत का कुल निर्यात 476 अरब 20 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 13.84% की वृद्धि दर्ज की गई। सुपर्णा और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के पेशावर में आज एक विद्यालय की छत गिरने से 34 विद्यार्थियों और एक शिक्षक की मौत हो गई। पेशावर के पुलिस प्रमुख मियां सईद ने बताया कि यह हादसा शहर के घनी आबादी वाले इलाके दीर कॉलोनी में हुआ। पुलिस के अनुसार 3 मंजिला इमारत की छत का निर्माण ठीक से नहीं किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति से जुड़े चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय पर अत्यधिक चयनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि कुछ देशों में विरोध प्रदर्शनों पर कार्यालय

की प्रतिक्रिया दोहरे मापदंड को दर्शाती है जिसमें बहुपक्षीय संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनूद स्वरूप ने ये बात कही। श्री स्वरूप ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और मानवाधिकार उच्चायुक्त के विस्तृत बयानों का उल्लेख किया। इन बयानों में सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों से जुड़े मामलों में हुई हत्याओं की तत्काल गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सुलभ कराने पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और स्थानीय लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक राजनीतिक संवाद शुरू करने का आह्वान किया गया। यूक्रेन ने आज रूस के तेल शोधन संयंत्रों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा प्रणालियों ने तेल शोधन संयंत्र पर हमला करने वाली यूक्रेन की 4 फ्लेमिंगो मिसाइलों और 69 ड्रोन को मार गिराया। हालांकि ड्रोन के मलबे से तेल शोधन संयंत्र में आग लग गई। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से ठुकराया गया ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर अस्थायी युद्ध विराम अब समाप्त हो गया है। जिद्दा में भारत की महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि वह सऊदी अरब में उड़ान सेवाओं में व्यवधानों से प्रभावित भारतीय नागरिकों विशेषकर उमरा यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहा है। अमेरिका के लास वेगास में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में विश्वजीत को जॉर्जिया के कोबा कारोमिजिन से हार का सामना करना पड़ा। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्वीकरण को अपरिवर्तनीय बताते हुए मजबूती और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया। इलिनॉय में हिंदू मंदिर पर हमले की नाकाम कोशिश के बाद भारत ने अमेरिका से भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से 34 बच्चों और एक शिक्षक की मौत और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज सजाएंगे एक ऐसी महफिल जहां बातें होंगी प्यार की, जिंदगी की और उन छोटे छोटे एहसासों की जो कभी चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं तो कभी हमारी आंखों को नम कर जाते हैं। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। आज की इस महफिल में हम बिताएंगे कुछ खूबसूरत से लम्हे जो बस दिन भर की थकान को थोड़ा सा कम कर देंगे। चाय की आखिरी घूंट ले लीजिए और अपने दिल के दरवाजे को थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि आज बातें होंगी प्यार, जिंदगी और मोहब्बत की। तो लीजिए, मैं आपको फूल भेज रहा हूं, कबूल कीजिएगा।

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते हुए लगता है कि काश वक्त यहीं ठहर जाए। और हमारी जिंदगी में भी तो कुछ पल ऐसे ही होते हैं जिन्हें हम बार बार जीना चाहते हैं। तो चलिए इसी खूबसूरत एहसास को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और सदाबहार गीत। ये लीजिए वो गीत आप।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
4: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
3: वही तो,

0: अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
1: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: दोस्तों हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है? दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों एक बात बताइए, क्या हमने कभी किसी अपने से कहा है कि अच्छा लगता है तुम्हारा साथ होना, बिना किसी खास वजह के, बिना किसी त्योहार के, बिना किसी ओकेजन के, बस यूं ही? हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला जानता तो है कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन

दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाता है जिसके आने के बाद छोटी छोटी सी चीजें भी खास लगने लगती हैं। वही रास्ते, वही शामें, वही बारिश, वही मौसम, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो जाता है या बदल जाता है। शायद प्यार दुनिया को नहीं बदलता, बस हमारी दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना देता है, ठीक इस गीत की तरह।

इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जिंदगी में प्यार बना रहे, रिश्तों में अपनापन बना रहे और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आए। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आज की इस महफिल में मेरे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने

0: पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varun Astra heavyweight torpedoes worth over 1,500 crore rupees was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defense manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the Apex Court in the national capital over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file the petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the Kerala Pradesh Congress Committee. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. During the hearing of another case, the Supreme Court today ruled that in

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Shagun Chopra with my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है शगुन।
0: Yes, benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 2% का उछाल। सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की तेजी। निफ्टी 23,000 अंक के आसपास बंद हुआ। देश का उत्पाद निर्यात इस वर्ष सितंबर में 23% की बढ़त के साथ 44.4 अरब डॉलर बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11% उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक यानी 1.66% की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार का प्रदर्शन आज मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended higher today. The Sensex surged 1,534 points or 2.11% to close at 74,316.

0: The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. The mid-cap 100 index dropped nearly 0.4% and the small-cap 100 index shed 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी दर्ज की। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा 4.6% ऊपर आया, आईसीआईसीआई बैंक 4.2% के लाभ में रहा और रिलायंस में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इसके विपरीत बीईएल और ट्रेंट में 0.6% की गिरावट आई, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.1% से ज्यादा नीचे आ गया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended in the positive note. Among the top gainers, top 10 banks climbed 2.3%, private banks advanced over 1.8%, and IT jumped 1.5%. In contrast, capital goods dropped over 2.4%, power slipped more than 1.8%, and PSU banks dipped 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,668 companies declined, 1,720 advanced and 203 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एकेबी, आज के मार्केट की हम बात करें तो सेंसेक्स में हमने देखा लगभग 1,500 अंक से अधिक का उछाल आया, निफ्टी भी 23,000 के आसपास पहुंच करके बंद हुआ। कई दिनों बाद ये आंकड़े हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रहे हैं, तो इन तेजी के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, घरेलू कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, या फिर इसे बाजार में एक मजबूत वापसी का संकेत माना जा सकता है?
2: देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बाजार में मजबूती आने का ये संकेत है। ये जो आज का जो उछाल आपने देखा है, इसको हमें बारीकी से देखना है। इस उछाल में के पीछे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक सेंटर्ड रैली है, इसमें अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है
1: जी।
2: तो ये रैली सिर्फ फोकस्ड है लार्ज कैप स्टॉक में, ये रैली सिर्फ फोकस्ड है आईटी सेक्टर में, ये रैली फोकस्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। आपको मालूम होगा कि कल सरकार ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया था कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका। सो उसी का एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो Q2 जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी उछाल आया है, और उसी के कारण हम ये देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में आपका जो बढ़त आज आपको हासिल हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बढ़ोतरी हमें पिछले कई महीनों में दिखी, वो आज वो काफ़ी गिरावट में आई। उसका कारण भी ये है कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज क्योंकि उस लेवल में, और दूसरी बात यह है कि जो रुपया जो है और रुपए में थोड़ी मजबूती आई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीशन से, उससे भी जो मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती आई है। पर अगर आप ये समझे कि आज की जो मजबूती आप देखी ये कोई अगले दिनों का संकेत है, ये मैं नहीं मानूंगा। ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी भी चलती रहेगी, और ये एक रिकवरी फेज है, और रिकवरी फेज का कारण जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग में और लार्ज कैप स्टॉक में जो एक रिकवरी और Q2 अर्निंग्स की जो एक मजबूती है वो दर्शाती है।
0: सर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स दे फेस प्रेशर डिस्पाइट द रैली इन द मार्केट। So, and I have two questions for you.
2: Sure.
0: Both of them I'll question right now only. So, does this imply that investors are concentrating their capital only in select large cap companies? First one. And what signal should retail investors take from this particular divergence?
2: So, I think what the investors are doing is they are pulling their money out of the small and the mid cap stocks, because the small and the mid cap stocks had already appreciated to a level where profit booking was possible. Mm. So they are pulling their money out, and they are also reinvesting in the large cap stocks and taking positions and keeping their powder dry, because we

0: are entering into a major big IPO phase. And when you are entering into a major IPO phase, like the Jio, Reliance Jio IPO is going to hit the markets very soon. It will be one of the largest IPOs. So that IPO would mean that the domestic investors are gearing up for that position. So I think the mid-cap and the small-cap profit booking has led to the surplus, which is going into the large-cap, and the large-cap is being positioned as a preparatory step for investing in the new IPOs that are coming.
1: AKB, आज IT और banking shares ने market को काफी सहारा दिया. आपने भी IT shares का जिक्र किया है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में काफी कमजोरी देखी जा रही. तो इन्हीं sectors में बाजार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ऐसा phase आपको आपको लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली जो व्यापक हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी और सभी चीजों में आगे एक जैसा माहौल देखने को मिलेगा?
0: आपने एक बहुत सही प्रश्न किया है. मुझे लगता है कि जो IT सेक्टर की जो स्ट्रेंथ जो है, बहुत क्वार्टर के बाद AI की जो चपेट IT सेक्टर में आई थी, उसको उसके ऊपर जो इंडियन IT सेक्टर की जो बायोसी जो रेजिलियंस जो है उसको दर्शा रहा है. और बहुत क्वार्टर के बाद जो Q2 अर्निंग्स जो आ रही है, सब IT कंपनीज की Q2 अर्निंग्स में बहुत बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि IT सेक्टर को हमें ट्रैक करना पड़ेगा और किस तरह से हम आगे IT सेक्टर को देखेंगे, उसको हमें ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर रहेगा मैं समझता हूँ.
2: Also, Mr. Bhattacharya, PSU bank performance. I mean, what's your opinion about PSU bank performances nowadays? What's
0: well, I think what's happening is that the PSU banks have done very well since the prompt credit reaction plan was put in place by the Reserve Bank of India in 2017. For the next 3-4 years, the PSU banks have done very well in reducing their gross non-performing assets. Even their net non-performing assets have come to a very, very comfortable level. And IDBI Bank, which is also considered a public sector bank, has reached a point where it could get a reasonable premium on the prevailing market price to be sold to a foreign investor. So I think public sector banks have done well. They are seeing credit visibility. The interest margin, the net in the margin NIM, net income interest margin, is still very strong as comparable with the private sector banks. So I think public sector banks are doing reasonably well.
2: Now shifting our focus to Tech Mahindra result. Tech Mahindra today reported its financial results for the second quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue increased by 15.6% on an annual basis to 16,180 crore rupees. The firm's net profit rose by nearly 33% to 1,585 crore rupees year over year. The board also approved an interim dividend of 15 rupees per share.
1: चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 14 अक्टूबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 13.21% बढ़कर 13,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है. आयकर विभाग द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार रिफंड में अधिक तेजी देखी गई. पिछले साल के 2,13,000 करोड़ रुपए से 24.22% बढ़कर ये 2,65,000 करोड़ रुपए हुआ. इस अवधि के दौरान प्रतिभूति लेन देन कर STT संग्रह में 51% से अधिक का उछाल आया और ये 46,840 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. एक ही में जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं मौजूदा व्यवस्था में, ऐसा आपको लगता है कि तमाम चीजें बदल रही, खासतौर पर जब हम कर संग्रह की बात करते हैं, सरकार नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही, नए तरीके लेकर के आ रही, इससे काफी आंकड़ों में तेजी आई, बढ़ोतरी आई है और नई चीजें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं?
0: देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो टैक्स कलेक्शंस जो केंद्रीय सरकार करती है, उस टैक्स कलेक्शन में जो एक बायोसी हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी सराहनीय है. और सबसे बड़ी बात जो है कि जो अगर आप नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो वृद्धि दर जो है, ये ना कि सिर्फ कॉरपोरेशन टैक्स से हुई है बल्कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स से भी हुई है. इसका मतलब ये जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी जो है वो जब टैक्स बेस जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. और मैं यही मानता हूँ कि अगर यही ट्रेंड अगले छह

0: महीने में बरकरार रहे तो सरकार की जो जो ग्रोथ रेट जो बजट में दिखने को आया था वो ग्रोथ रेट का लक्ष्य वो पूरा करके उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। और जैसे हमने अभी भी कहा कि जो IDBI बैंक की जो विनिवेश से जो पैसा जो आएगा करीबन 32,000 करोड़, उससे भी काफ़ी सरकार के खजाने को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सरकार की जो वित्तीय जो घाटा का जो एक चैलेंज हर साल में आता है, मुझे लगता है कि इस साल हालांकि वैश्विक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, पर उसको उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस बार जो केंद्रीय सरकार की जो पब्लिक फाइनेंस जो है, जो वित्तीय घाटा जो है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए कोई ज़्यादा असुविधा नहीं होगी।
1: सितंबर में भारत में कुल श्रम बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार इनसे रोजगार संकेतकों में सुधार प्रदर्शित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। कुल श्रम बाल भागीदारी दर बढ़कर 55.5% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पिछले साल के मुकाबले मामूली गिरावट आई है। महिलाओं की भागीदारी में पिछले साल के मुकाबले सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अक्टूबर 2025 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 52.7% हुआ है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात अक्टूबर 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी में सुधार देखा गया। कुल बेरोजगारी दर पिछले साल सितंबर के मुकाबले 0.25% अंक घटकर 5% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर गिरकर 4.2% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 6.8% पर लगभग स्थिर है। एकेबी सितंबर में जिस तरह हम आंकड़े ये देख रहे हैं, 5% रह गई है, रोजगार के मोर्चे पर भी सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं, इन आंकड़ों से आपको क्या नजर आता है, कैसी परिस्थिति इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से?
0: ये जो डेटा जो पॉइंट जो आपने अभी बताया है, उसमें ये लगता है कि दो चीज मुझे साफ नजर आ रही है। एक तो है बेरोजगारी दर जो है उसमें घाटा हुआ है, वो एक इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरी बात उससे भी ज़्यादा बेहतर अच्छी खबर है ये है कि जो वुमन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, उसमें हमें इंक्रीज दिखी है। और तीसरी बात है कि जो रूरल लेबर फोर्स जो है उसमें अर्बन से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ हमारी जो जॉब सिचुएशन जो है उसके लिए एक अच्छा एक इंडिकेटर है, सिग्नल है इकोनॉमी के लिए, और हमें इसको ट्रैक करना चाहिए।
2: एंड सर, जस्ट टू ऐड देयर, शुड दिस बी व्यूड एज जेन्युइन इंप्रूवमेंट इन विमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस?
0: वेल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड। देयर इज अ डेफिनेशनल चेंज इन द वे वी आर काउंटिंग वुमन लेबर पार्टिसिपेशन। द हाउस होल्ड वर्क दैट वुमन डू दैट इज ऑल्सो नाउ बी इंक्लूडेड इन द जॉब्स दैट बीन क्रिएटेड। सो टू great extent it may not be reflective of organized sector employment, but it may be reflective more of the unorganized sector, the household sector employment that people engage in,
2: especially women. I mean,
0: especially women,
2: right. Now we'll be reflecting on the country's merchandise exports, which rose over 23% to $44.4 billion in September this year, as compared to $36.08 a year ago. According to the data released by the Commerce and Industry Ministry, the growth in merchandise exports was driven by electronics goods, petroleum products, organic and inorganic chemicals, engineering goods, cotton yarn, handloom products, among others. Merchandise trade deficit narrowed to over $30 billion from $33 billion in September last year. India's overall exports, including merchandise and services, grew 10.99% to an estimated $80.75 billion from $72.76 billion a year ago. So, Mr. Bhattacharya, how do you see the 23% growth in exports and keeping the current dynamic geopolitical scenario in view?
0: Well, it's a very welcome sign. 23% growth has coming on top of 19% growth in August. When you're talking about growth, you are not talking about it is mainly

0: with the merchandise goods exports. And what happens is that when the rupee depreciates, the Indian exports' competitiveness gets a boost. And even though at certain level people are a little worried about the way the rupee has depreciated in the last few months, but what we have seen is a positive impact of that rupee depreciation in the export sector, where our merchandise goods exports, after several months of tepid performance, have done very well with a double-digit growth rate being seen in the last few months. Hmm. And the numbers that you have just now shown is actually confirming that how a rupee that reflects its actual strength through depreciation is actually helping the competitiveness of India's exporters. And that means also that the MSME sector, which accounts for a large segment of exports, they are creating more jobs, so which is also a fact which has been confirmed by the employment data that was just read out.
1: So overall, it's a good news, right?
0: Yeah.
1: We're staying with the Commerce and Industry Ministry only. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today expressed confidence that India will remain among the fastest growing large economies over the next 20 to 25 years, supported by its youthful population, also demographic dividend, large domestic market and entrepreneurial drive. He made these remarks while addressing the inauguration of the SRCC Centenary Conclave on Pathways to Viksit Bharat in New Delhi. Speaking on free trade agreements, the minister stated that the US bilateral trade agreement's first tranche has been finalized.
2: The US bilateral trade agreement first tranche has been finalized. It's going through the final contours, the legal drafting, and we hope to be able to finalize that soon and operationalize that once we get comparable advantage or competitive advantage over our peer countries.
1: Mr. Bhattacharya, how do you view this particular development?
0: Well, I think it's a very positive development, because only a few days ago, the impression was that the India-US trade deal may have reached a plateau and not further movement will take place. But what the minister just now said suggests that progress has been made, and India and US, the world's two large economies, will probably sign an agreement sooner than later.
3: AKP, अगर इंडिया के उत्पाद निर्यात की हम बात करें तो अमेरिका को लेकर के लगभग 51 अरब डॉलर अप्रैल से सितंबर के महीने में इस वर्ष बढ़ोतरी हम देख रहे हैं. एक तरफ हम समझौते की बात कर रहे हैं और निर्यात भी हमारा बढ़ रहा है. ये परिस्थितियां इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए अगर देखें, कैसी नजर आती हैं आपको?
0: देखिए, इसका मतलब यही है कि जो विश्व की जो दो बड़ी बड़ी अर्थनीतियों में से भारत और यूएस हैं, और भारत की जो एक्सपोर्ट्स जो डिमांड यूएस से आती है भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए, वो ऐसे सेक्टर से आती है उसकी जो भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है, जो प्रतिस्पर्धिता जो है, उसमें अभी तक कोई आंच पहुंची नहीं है. और आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त जो टैरिफ जो है अभी भी काफी वस्तुओं के ऊपर सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का ही टैरिफ लगा हुआ है. कोई ज्यादा टैरिफ अभी तक आया नहीं है, और उसी का कारण यह है. और रुपया डिप्रिशिएट होने के बाद भारतीय जो निर्यात जो करते हैं उनके लिए एक बहुत एक पॉजिटिव साइन है.
1: Now we'll reflect on the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. U.S. Ambassador to India Sergio Goyal has described India as an unmatched market for American companies, and he was speaking at this Bloomberg New Economy Forum today in New Delhi. Mr. Goyal highlighted the growing cooperation between the two countries across sectors. This included defense, IT and trade. Mr. Goyal also underlined that India is well positioned for AI and technology development on its own soil, adding that partnerships with leading American companies would be mutually beneficial. He expressed confidence that India and the US would conclude a trade deal, saying the two sides had made substantial progress despite the complexity of the negotiations. Meanwhile, Ambassador Goyal said that the US President Donald Trump is expected to make a decision within the next 10 days on sanctions provisions that could affect countries buying Russian oil and gas.
4: We have ongoing discussion on that. So the sanction options that Congress passed, they're not targeted at any individual country. It just happens that India does fall in one of those buckets, along with a lot of other countries. The goal is not to punish anyone. The goal is to try to bring an end to this war. I do think the president will make a determination on that over the next 10 days.
1: The National Payments Corporation of India, NPCI, has postponed the implementation of the merchant discount rate, MDR, on select person-to-merchant UPI transactions. MDR, which was earlier scheduled to come into effect from today, will now be implemented immediately after Diwali. NPCI has said that the implementation date will be notified separately.
3: एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली. चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स करीब 7.6% लुढ़क गया. जापान का निक्केई 4.9% नीचे आ गया. एकेबी, आज कई दिनों बाद हमने साउथ कोरिया के इंडेक्स में तेजी देखी है और ये तेजी भी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते नजर आई. हालांकि एक तरफ आईटी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन चिप सेक्टर नेगेटिव खबर लेकर गया, जबकि कुछ समय पहले तक लगभग दोनों एक ही वे में पैरेलल चलते थे.
0: देखिए, जो मार्केट में जो चिप सेक्टर की जो ट्रबल्स जो हैं, चैलेंजेस हैं, वो अभी कहीं नहीं है. और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अभी भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल मामला है ये, और जो अगर आप बारीकी से देखें तो साउथ कोरिया कहें या जर्मनी कहें या यूनाइटेड किंगडम की जो स्टॉक मार्केट को देखें, तो वो उनके इकोनॉमी की जो जो जो दुर्बलता है उसको रिफ्लेक्ट दर्शाती हैं. हालांकि अगर आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन जो उन्होंने अपग्रेड किया है, उसी के लिए भी थोड़ा बहुत जो भारत में जो स्टॉक मार्केट ने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसका भी कारण एक है. और इनकी जो एशियन और बाकी एशियन और यूरोपियन मार्केट में जो ग्रोथ की जो आउटलुक उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रही है, उसके लिए भी उनके स्टॉक मार्केट में ये धीमापन दिख रहा है.
3: ब्रिटेन के लिहाज से एक अच्छी खबर वहां पर ये देखने को मिली कि वहां जीडीपी मासिक आधार पर 0.1% की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे समय जब अमेरिका की स्थितियां ब्रिटेन और यूरोप को लेकर काफी तेजी से बदल रही है, तो ब्रिटेन के लिए कितनी अच्छी खबर इसे माना जा सकता है.
0: इतने बहुत महीने बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, दुर्बलता जो थी, उसके बाद ये रिकवरी हुई है. मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक इकोनॉमी के एक बाउंस बैक वो है, और इसमें हम ज़्यादा कोई रीडिंग नहीं करना चाहिए.
1: And global crude oil prices, they eased today. Brent crude was trading 1.7% down at $104.21 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.2% down at $94.95 per barrel at the time when we were writing the report.
3: So, AKB, crude oil par aapke kya opinion honge?
0: क्रूड ऑयल में तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दाम थोड़े घटते हैं तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उसके लिए यह बहुत बड़ी अच्छी खबर है. ये स्टेबिलिटी आएगी और हमारी ऑयल कंपनीज की जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है उसमें भी अच्छा एक प्रदर्शन कर सकती है. तो पर स्टॉक मार्केट की तरह क्रूड ऑयल प्राइस के भी वॉलेटाइल है, ये ऊपर नीचे जा रही हैं. इस वक्त इनका जो लेवल जो है वो अभी भी हमारे देश के लिए उतना अच्छा नहीं है. इसको और भी नीचे आना चाहिए अगर हमारी इकोनॉमी का पूरा फायदा उठा सके.
3: और श्रोताओं, भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% गिरकर 1,45,942 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं चांदी की कीमत 2.6% लुढ़क कर 2,08,275 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई. एकेबी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: नमस्कार, धन्यवाद.
1: And now before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1,500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline. And that's it in this particular edition of Market Mantra. For now, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से नगमे के साथ, जिसे आवाज दी है मुकेश ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी। इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालत्सी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GZ-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AM बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GZ-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। भारत और दक्षिण कोरिया पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। सियोल स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत गौरांगलाल दास ने वहां की नेशनल असेंबली की पर्यावरण, जलवायु, ऊर्जा और श्रम समिति के अध्यक्ष किम जंग हू से मुलाकात की। इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना, पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर तलाशना है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज

0: निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "The development of Ladakh remains a key priority for the center."
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a centre of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varunastra heavyweight torpedoes worth over 1,500 crore rupees was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defense manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the Apex Court in the national capital. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file their petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision SSR of electoral rolls with 1st January next year as the qualifying date. These states and union territories are Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. Delhi Chief Minister Rekha Gupta launched a project to install 1 lakh smart LED street lights under the Seva Sankalp Abhiyan. Beginning at the Andrews Ganj bus stop, the initiative will modernize street lighting across various assembly constituencies in Delhi. The project marks a significant step towards addressing dark spots across the capital, enhancing women's safety and ensuring safer movement on roads. Under the project, around 1 lakh street lights across Delhi will be replaced with smart LED lights. The Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, IRCTC, has signed a strategic memorandum of understanding.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त और आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और साथ हूं मैं जयती। कभी कभी क्या होता है, हम सभी के साथ अक्सर ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि किसी अनजाने रास्ते से गुजरते हुए कोई जानी पहचानी खुशबू मिल जाती है। हम ठिठकते नहीं, बस हमारे कदम कुछ धीमे हो जाते हैं। लगता है जैसे कोई बीते दिनों का कोई प्यारा सा हिस्सा पास से गुजर गया हो या बिना बताए हमारे करीब चला आया हो। वो खुशबू किसी फूल की हो सकती है, किसी पुराने इत्र की, या घर में पकती किसी बहुत ही खुशबूदार मिठाई की जो हमारी पसंद की हो। उसके साथ लौट आता है, सिर्फ खुशबू नहीं लौटती, उसके साथ लौटता है किसी का हंसना, किसी का पास बैठना, किसी का छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना। और प्यार जो होता है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि प्यार हमेशा बहुत बड़ी बातों में नहीं मिलता, प्यार अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं छुपा होता है, और वो किसी परिचित सी खुशबू में भी छुपा होता है, और हम उसे पहचान कर मन ही मन याद करके मुस्कुराने लग जाते हैं, या फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलने लग जाते हैं। और अगला गीत सुनते हैं फिल्म कॉलेज।

हम सभी के जीवन में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे किसी ने दिन भर की थकान के बीच चुपके से कोई प्यारी सी बात कह दी हो। उन नामों में न जाने कितनी मुलाकातें होती हैं, कितनी अधूरी बातें, कितने अनकहे वादे। कभी किसी भीड़ में अगर वही नाम सुनाई दे जाए तो पल भर को लगता है जैसे किसी ने हमें हौले से पुकारा हो। हम पलट कर देखते हैं और फिर खुद ब खुद मुस्कुरा देते हैं। कितना अजीब है ना कि कुछ लोग हमसे बहुत दूर होते हैं और फिर भी हमारे भीतर अपनी जगह कभी खाली नहीं होने देते। उनका नाम लेने भर से या सोचने भर से किसी अपनेपन की खुशबू आने लगती है और दिल में उस एक संबोधन जो घर बना लेता है, वो एक संबोधन, वो बार बार न जाने कितनी बार अपने आप के साथ जीने लग जाता है। हमें उसकी आदत हो जाती है कि हम जब दिन भर की थकन के बाद खाली बैठते हैं या घर लौटते हैं तो वो एक नाम जो हमारे भीतर हमारे साथ चलता रहता है, हम कुछ वक्त चुपचाप उस एक संबोधन के साथ गुजार लेते हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है बॉयफ्रेंड।

दिल्ली में जब बारिश होती है ना तो एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन भरबस याद आ जाती है और वो लाइन है कि फिराक की बारिश मलाल का मौसम, फिराक की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। जी हाँ जनाब, ये जो बारिश में जब दिल्ली भीग जाती है तो शहर बड़ा कमाल का लगता है और ऐसे में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो बाहर की बूंदों के साथ भीतर भी कुछ यादों को अपने साथ ले आती हैं। कोई पुरानी मुलाकात, कोई अधूरी बातचीत या फिर किसी का हंसते हुए विदा लेना। हम चाह कर भी हर याद को वापस नहीं बुलाते, लेकिन कुछ यादें अपना रास्ता खुद खोजते हुए हम तक पहुंच जाती हैं। फिर हम किसी पुराने संदेश को पढ़ते हैं, किसी तस्वीर पर नजर डालते हैं और बीते हुए दिनों की एक झलक से हम अंदर तक भीग जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर याद हमें उदास ही करे। कुछ यादें हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हैं, कुछ यादें हमें बताने आती हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कुछ कितना सुंदर, कितना मीठा घटा था। हर कहानी का साथ बने रहना जरूरी नहीं, कुछ लोगों का हमारी दुनिया में आना ही हमारी पुरानी दुनिया को पहले से अधिक खूबसूरत बना देता है। इसलिए इन यादों का होना भी बहुत जरूरी है। और अगला गीत, फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर, आवाज है शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

चांद ने फेर ली नजर अपनी, चांद ने फेर ली नजर अपनी, अब मेरे रतजगों का क्या होगा, अब मेरे रतजगों का क्या होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है मनमौजी।

रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर जाएगा। धूप और छांव मुसल्लम मगर अपने हद में, वक्त पाबंद नहीं है कि ठहर जाएगा। रोशनी में है चरागों के तले तारिकी, रोशनी में है चरागों के तले तारिकी, हम समझते थे कि माहौल सवर जाएगा। रफ्ता रफ्ता दिले बेताब ठहर जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरी नजरों का असर जाएगा।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है 9211। आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दान हनु खालत्सी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांव में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AMBA रासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने का आगाज करते हैं एक बहुत सुंदर गीत के साथ। फिल्म का नाम है गाइड और आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। ये जो दिल्ली है ना, बारिश में भीगी हुई है और बारिश में भीगी हुई दिल्ली और ये बरसात दोनों ही हमें बता रहे हैं कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता करवट लेना शुरू कर चुका है। और मौसम जब करवट लेता है तो सबसे पहले किसी छोटे से एहसास में पता चलता है, जैसे सुबह की हवा थोड़ी ठंडी लगने लगती है और अलमारी में रखे गर्म कपड़ों की याद आने लगती है। चाय का स्वाद अदरक के साथ मिलकर कुछ और अच्छा लगने लगता है और शाम को घर लौटने की इच्छा भी बढ़ जाती है। सर्दियों का अपना एक अपनापन होता है। गर्म शॉल, मूंगफली, धूप में बैठने की छोटी सी खुशी और रसोई से आती गर्म खाने की महक। इस मौसम में रिश्ते जैसे भी हों, पास बैठना चाहते हैं। किसी के हाथ में चाय थमा देना, किसी के लिए स्वेटर निकाल कर रख देना या बस पूछ लेना, ठंड तो नहीं लग रही। कितना प्यारा होता है किसी की परवाह का इतनी साधारण सी छोटी छोटी बातों में दिखाई देना। और अगला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। बारिश के रंग में रंगी हुई दिल्ली, या यूं कहें कि भीगी हुई दिल्ली, बहुत सारी पुरानी बातों को रफ्ता रफ्ता करके करीब ला रही है और यादों को तरोताजा कर रही है। ठीक वैसे ही दिल्ली की जो शाम होती है ना, वो अपने भीतर बहुत सारी कहानियों को समेट कर आती है। सड़कें अपनी रफ्तार में, रोशनियां अपनी चमक में, और भीड़ अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ती रहती है। इन्हीं सबके बीच कभी कभी मन चाहता है कि कोई खास शख्स इसी शहर में होता, किसी दिन बिना योजना के मिल लेते, किसी नुक्कड़ पर चाय पीते और बेवजह की बातों में कुछ घंटे यूं ही बिता देते। फिर लौटते हुए कोई ये नहीं पूछता कि आज की जो मुलाकात हुई उसका हासिल क्या रहा, क्यों मिले, क्योंकि कुछ मुलाकातें किसी परिणाम के लिए नहीं होती, वो तो बस यूं ही हो जाती हैं जनाब। वे बस मन को खुश करने के लिए, कुछ यादों को ताजा करने के लिए होती हैं। दूरी का अपना ही एक गणित है, अपनी मजबूरियां हैं, मगर चाहत कभी एक सीधी सी बात कहती है जो बहुत लंबी लंबी बातें

बहुत सारे फिलॉसफी, जीवन के बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को चाहत नहीं मानती। चाहत तो बस हौले से मन के दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, काश आज तुम यहीं होते, काश आज तुम यहीं होते।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब गीत सुहाने में जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जीने की राह और आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

फिर जब कभी बारिश आए ना, तो बारिश को ऐसे भी जी कर देखिएगा कि बारिश वाली शाम की बस में एक सीट खिड़की के पास मिल जाए तो सफर अपने आप खूबसूरत हो जाता है। शीशे पर

पानी की लकीरें दौड़ती रहती हैं और बाहर दुकानों के बोर्ड धुंधले पड़ जाते हैं। एक बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े बादलों को गिनने की कोशिश करती है और पीछे बैठे बुजुर्ग बार बार अपनी छतरी संभालते हैं। कोई छात्र फोन पर घर पहुंचने की खबर देता है तो कोई महिला अपने बैग में बची हुई मिठाई संभाल कर रखती है। अलग अलग मंजिलों के ये यात्री कुछ किलोमीटर तक एक ही कहानी का हिस्सा बने रहते हैं और फिर एक एक करके उतरते जाते हैं और बस अगली कहानी की ओर चल पड़ती है। और अगला गीत फिल्म आई मिलन की बेला से, आवाज है मोहम्मद रफी की।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आप ये मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। तो छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालत से ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AM बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुद्दुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता रीमा नानावटी को शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हिलेरी रोडम क्लिंटन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा की निदेशक रीमा नानावटी को यह पुरस्कार अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी में प्रदान किया। रीमा नानावटी ने भूकंप से प्रभावित ग्रामीण महिलाओं के जीवन और रोजगार को फिर से बेहतर बनाने में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अवतार।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आज हम पुरानी यादों को तरोताजा कर रहे हैं। एक किताब के बीच सूखा हुआ फूल मिलना किसी पुराने पत्र के मिलने जैसा है। कभी वह फूल ताजा रहा होगा, किसी ने बड़े जतन से उसे चुना होगा, और फिर किताब के पन्नों के बीच उसे सुरक्षित रख दिया होगा। वर्षों बाद रंग फीका पड़ चुका है, पंखुड़ियां नाजुक हो गई हैं, लेकिन उसे देखकर सवाल उठता है, किस अवसर पर दिया गया था यह फूल, किसके हाथ से आया था, कौन सा मौसम था। इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन उस फूल ने अपना काम कर दिया। उसने साबित कर दिया कि कुछ पल बीत कर भी हमारे भीतर अपनी जगह बनाए रहते हैं और यादों को तरोताजा करने का काम करते रहते हैं। अगला गीत, फिल्म का नाम है जुर्म, आवाज है कुमार शानू और साधना सरगम की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, रात सुरमई, और आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अनामिका और आवाज है लता मंगेशकर की।

ऐसा अध्याय जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी जुड़ता ही है। जी हाँ, शहर में आने वाला जो व्यक्ति होता है, जब वो अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर की तरफ अपने सपनों को पंख देने के लिए पहुंचता है, तो जो पहली बार अपना छोटा सा कमरा सजाता है, तो उसमें सामान बहुत कम होता है पर उम्मीदें बहुत ज्यादा। एक मेज, दो कुर्सियां, कुछ किताबें और दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर। खिड़की के बाहर देखा तो अनजाना शहर और अंदर अपने भविष्य की योजनाएं। पहली रात नींद बहुत जल्दी नहीं आती, हर आवाज नहीं लगती है। फिर धीरे धीरे वही कमरा घर जैसा लगने लगता है। मेज पर चाय का कप अपनी जगह बना लेता है, कपड़ों के लिए कोना तय हो जाता है और दरवाजा खोलते ही अजनबी शहर थोड़ा सा अपना दिखाई देने लगता है। घर हमेशा तैयार नहीं मिलता, कभी कभी उसे अपने हाथों से बनाया भी जाता है। और अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है आशिकी।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था अपनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये सम्मेलन उत्तरदायी, पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 18 और तीसरा मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani। द न्यूज़ रेड बाय अभिनीत शुक्ला।

पैनल और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही। और आज के इस शो में मैं रहूंगा पंकज आपके साथ। तो दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। तो शुरुआत करते हैं बुलंदी मूवी के इस गाने के साथ और दो गानों के आप मजे लीजिए और फिर मैं आपसे मिलता हूं।

मुमताज जी और किशोर दा की आवाज में कस्मे वादे मूवी का ये गाना आरडी बर्मन का संगीत और गुलशन बावरा के बोल थे। पूरे दिन के शोर शराबे के बाद ये सुकून भरी रात है, इनफैक्ट हल्की ठंडी रात है और कल तो बारिश भी हुई है दिल्ली में, तो उससे तो और भी मौसम ठंडा हो गया है। और अभी मैं जब ऑफिस में था तो वाकई मुझे ठंड लग रही थी, तो इसका मतलब ये है कि हाँ ऑफिशियली ठंड आ चुकी है। मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और शो का नाम है हमराही। रात के समय की खूबसूरती अलग होती है, उस पर पुराने ड्यूएट्स गानों का मजा जो है वो चार चांद लगा देता है। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तो इन गानों को सुनिए और गानों की हसीन दुनिया में मेरे साथ खो जाइए।

मूवी का नाम आखिरी इंसाफ, अमित कपूर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना था। और ये जो रात के 3:32 वाला जो टाइम है, ये वो पल होता है जब हमें वो इंसान याद आता है जो हमसे दूर होता है। और जिंदगी हमें ऐसे कई बार मोड़ पर खड़ा करती है जहां पसंदीदा शख्स को पाना जो है बड़ा मुश्किल सा लगता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है हमराही। लेकिन उसे पाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए ताकि इस बात की ग्लानि ना रहे कि आपने कोशिश नहीं की। कोशिश करेंगे तो हो सकता है ऊपर वाला मेहरबान होकर उस शख्स को आपकी जिंदगी में भेज दे। ट्राई तो हमेशा करना ही चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो टाइम से पहले अगर मिल जाए तो अच्छी बात है।

मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। और ये फीलिंग तभी आती है जब इंसान उस अपने पसंदीदा इंसान के जो है गले लगता है, और गले लगने के बाद ही वो गर्माहट महसूस होती है, वो प्यार, वो अपनापन महसूस होता है। पता है, अपने पसंद के इंसान से जब हम गले मिलते हैं और उसके देर तक गले जब लगे रहते हैं ना, वो एक अलग ही लेवल का सुकून होता है। और गले मिलने से दिल को बहुत अच्छा लगता है, और जिंदगी भी तभी अच्छी लगती है जब आपके साथ आपकी पसंद का साथी हो। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ। शो का नाम हमराही है, और जितनी भी फिल्म्स हैं उनमें, ज्यादातर फिल्में जो हैं उनमें अपने पसंदीदा शख्स को पाने की ही जिद दिखाई देती है, और जब वो मिल जाते हैं फिर दोनों हीरो हीरोइन जो है वो गले मिलते हैं। तो और आपने वो मूवी भी देखी होगी जादू की झप्पी, जिसमें संजय दत्त है। तो मतलब गले मिलना वाकई एक बहुत कमाल की चीज है। तो जब भी मौका मिले तो हमें गले लगना चाहिए, और इससे प्यार बढ़ता है।

मौसम बड़ा ठंडा है। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी भाई, वाकई सही में बाहर निकल के अगर आप देखेंगे तो ठंडा तो है। अच्छा वैसे ये ना त्योहारों के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत से लोग है ना भगवान से अपना मन साथी हमराही पाने की

प्रार्थना करते हैं। और वैसे भी किसी इंसान को पाना कितना मुश्किल होता है ना, खासकर जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ सपने देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी उसके साथ ऐसी बनेगी आगे, और जब वो इंसान जो है जब थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं घूमता रहे, मतलब वो लाइन पर ना आए, कह सकते हैं कि जब वो काबू में ना आए, तब और ऐसा लगता है कि पता नहीं इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की सेटिंग बैठेगी या नहीं, ये मिलेगा या नहीं, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाकी बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको उनका पसंदीदा लाइफ पार्टनर मिल जाता है। मैं पंकज अगले घंटे सुबह 4:10 पर आपसे दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट शो अरुणिमा में। अभी इस गाने का आप मजा लीजिए और सुबह 4 आप सुनेंगे हिंदी और इंग्लिश में समाचार। अभी के लिए ये वाला गाना और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हम

0: विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के जहाज INS समर्थक को बेड़े में शामिल करने के समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति केरलम के कोझिकोड में नवरात्रि सर्गोत्सवम 2026 का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था अपनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 18 और तीसरा मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। T20 श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरला और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation five major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "The development of Ladakh remains a key priority of the centre."
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और अब आप सुनेंगे ये वाला शो जिसका नाम है अरुणिमा। इस शो को आप हर रोज सुनते हैं, तो हर रोज की तरह ही इस शो को जो है आप सुनेंगे, लेकिन आज इस शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तो गानों का ऐसी मजा लीजिए और शुरुआत करते हैं अभी तो जी लें फिल्म के इस गाने।

रोशन का संगीत, लता जी की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल और चित्रलेखा फिल्म का ये गाना। ये गाना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी सीख है जिसमें स्वीकार भाव है। संसार में रहकर किस किस से बच बच कर जिंदगी भर भागते रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है अरुणिमा। तो इन दो गीतों के बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूं और शुक्रवार की ये सुबह है और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि के दिनों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह से हमारे ऊपर जो है माता रानी की कृपा बनी रहे और देश में सुख शांति समृद्धि खूब हो। अभी आप सुनिए रजिया सुल्तान मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना लता जी की आवाज में, और इस गान दो गानों के बाद मैं आपसे फिर

सुबह के 4:30 और 30 सेकंड हुए हैं और इस समय जो है माहौल मतलब मौसम जो है एकदम अंधेरा अंधेरा सा है और ऐसे टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी के गाने सुनना वो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। सीआईडी फिल्म का ये गाना था शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में, ओपी नैयर का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के लिरिक्स थे। सोचिए दुनिया से प्यार और भरोसा अगर खत्म हो जाए तो कैसे हालत बनेंगे, मतलब बिना प्यार के तो सर्वाइव करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है और दिलों में निस्वार्थ प्रेम को जो है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सिर्फ होना ही नहीं उसको बांटना भी जरूरी है। और कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि हम तो भाई सामने वाले को बहुत प्यार दे रहे हैं लेकिन दूसरा हमें प्यार नहीं दे रहा। आई नो कि हमें भी प्यार की जरूरत होती है, हम भी इंसान हैं, लेकिन इसी में ही निस्वार्थ, इसी चीज को निस्वार्थ कहते हैं कि बस आप प्रेम दीजिए और फिर सामने वाला दे ना दे वो अलग बात है, हमारा काम है कि भाई हम इंसानियत का परिचय दें। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है अरुणिमा और यही प्यार जो है इंसान को आगे जाके जो है उसको खिलने पर जो है वो तैयार करता है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जब आपको प्यार मिलता है तो इंसान ग्लो और ग्रो दोनों करता है।

1956 की मूवी सीआईडी का ये गाना था और ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इस समय हमारी दिल्ली जो है शहर में पूरी एकदम धूम मची हुई है त्योहार की और मंदिरों की सजावट देखने लायक है। और इन दिनों से पता है हम अपने मन को पवित्र करने के संकल्प जरूर लें कि हमारे मन में कभी भी किसी के लिए कोई बुरे भाव ना आए। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है अरुणिमा। मन अगर बिगड़ा तो कर्म में बदल कर वो सब खराब कर देता है। और जब हमारे मन में दूसरों के लिए प्यार पैदा होता है, उनके लिए आदर सम्मान, और जब हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं तो सच में एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है और हमारे कर्म अच्छे बनते हैं। और जब कर्म अच्छे बन जाएंगे तो फिर उसके परिणाम हमेशा अच्छे ही आएंगे।

आप गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे हो और सामने ठंडी हवा एकदम गाड़ी के अंदर आ रही हो और ये वाला गाना चल रहा हो और हल्की हल्की बारिश हो रही हो, तो बहुत ही मजा आता है। और इस टाइम तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी के जो गाने हैं वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आज शुक्रवार यानी जो है एक हफ्ते का पांचवा दिन है और यानी कल को दो दिन का वीकेंड। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि भाई जिंदगी एक है और वो भी अनसर्टन है, अनिश्चित है। खुशी और तन मन के सुख के लिए ना वीकेंड पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर पल का मजा लेना चाहिए। जो भी सामने खुशी का मौका आए उसे फटाफट लपक कर जिंदगी को जी लेना चाहिए। अब मैं पंकज अगले घंटे आपसे भोर सुहानी शो में मिलूंगा। अभी इन गानों का मजा लीजिए और उसके बाद सुबह 5 बजे से सुबह 5:10 तक आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में न्यूज और उसके बाद फिर भोर सुहानी शो शुरू होगा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड सुनते रहिए। मैं हूं पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सकलैन अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के जहाज INS समर्थक को बेड़े में शामिल करने के समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति केरलम के

0: कोड में नवरात्रि सर्गोत्सवम 2026 का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की, कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई हैं। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "The development of Ladakh remains a key priority for the centre."
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said, "A centre of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh." Prime Minister Narendra Modi expressed confidence that India is poised to emerge as a global sporting powerhouse. Mr. Modi made the remarks while interacting in New Delhi with members of the Indian contingent that participated in the 2026 Asian Games concluded in Japan earlier this month. He described the recent Asian Games as memorable for India. The Ministry of Defence yesterday signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varuna's heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract

सुबह के 5:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं पंकज आपके साथ। अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं। लता जी की आवाज में बेमिसाल मूवी का ये गाना, इससे शुरुआत करते हैं।

मासूम फिल्म से भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना था। आर डी बर्मन का म्यूजिक और गुलजार के बोल थे। 16 अक्टूबर फ्राइडे मॉर्निंग नवरात्रि के ये शुभ दिनों की आपको ढेरों बधाइयां। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है भोर सुहानी। और अभी नवरात्र की वजह से कई लोगों ने जो है अभी दिल्ली वाला स्पाइसी खाना जो है वो बंद किया हुआ है, लेकिन खाने के शौकीन तो हम दिल्ली वाले हैं ही, और व्रत की थाली में भी जो बढ़िया पकवान हम ऑर्डर कर देते हैं तो बाकी तो ये सब हंसी मजाक की बातें हैं। लेकिन हाँ, ये जो है दिन बहुत अच्छे हैं, बड़े पवित्र दिन है, और इन दिनों का जो है खूब मजा लेना चाहिए और मन को भी बहुत साफ रखना चाहिए। अभी के लिए आपके मन को खुश करने के लिए ये दो गाने मैं प्ले करने वाला हूँ, मतलब एक तो कर ही दिया है, तो आप इन दो गानों का मजा लीजिए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ।